सनाओ ज्ञान है आसन चढ़ो धर्म भनक कर गयो भगत सिंह सर लड़ो भय निर्भर अटल मन सबक गुरु ने जाग लो काम क्रोध लोभ मोह अपत

एक मन पुरख ने अंजन ध्याओ, गुर प्रसाद हर गुण सद गाओ, गुम गावत मन हो।

अबला से अब गत गयो इस भेंटे दार गिरना चमते कल सहारता।

नाम रे निरंजन उर धरया। हर नाम रसक गोविंद गुण गाहते, चाहत तत समत सरे। कब कल ठकर हर दास तने, गुरु राम दास सर अबर भरे। छूटत परवा अमेव अमरा तत, अमृत सरोवर सद भरया। ते पीरे संत करे मन मज्जन, उपजनो सेवा करिया। तिन भव निवार अनभय पद दीना, शब्द मात्र ते उधर धरे। कल कर्ण छकुल हर दास तने, गुरु राम दास सर अवर भरे। सतगुरु मत गुड़।

निरञ्जन खरेलह। सतगुरु दयाल हर नाम दिलाया, इस पर साधवस पंच करे। कर कर ठाकुर हरदास तनी, गुरु राम दास सर अभर भरे। अनुभव अनुमान अकल लेव लागी, पारस भेटिया सहज घरे। सतगुर प्रसाद परम पद पाया, भगत भाए भंडार भरे। मेटिया जन मंत्र मरण भव, भागा चित लागा संतोख सरे। कब कल ठकुर हरदास तने, गुरु रामदास सर अवर भरी।

प्रेम भरत परवासी तुम पुबल न होते सतगुर शब्द अथाओ अम्यो धारा रसगुत्ते मत माता संग

सतगुरु नाम एक निव मन जपे दृत जन दुख पास पौकत हो जियो तारण करण छिन मात्र जाको दृष्ट धारे शब्द हृदय विचारे काम क्रोध खोए जियो जीवन शब्द दाता अगम जा

आवे। गुरमुख ध्यान दुरमत मैल धोवे जियो। सतगुण नाम एक लिव मन जते, दृतन जन दुख पाप।

साध मुन जन सुर नर जाती सबद सार एक लेव लाई है। सुन जाने को तेरा अपारे निर्भव निरंकारे अकथ कथन हारे तुझे बुझाई है।

नाम सो अपार सार दीनो गुरुद धरे नल तौ पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुभाष जास सिमरत अंतरे जाके दे

सर पाँव ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सकल खनिस सूर दिन सैल करो फल फूल दियो सुर नर सपत सम

काठो सीखन सतगुर कियो दुख दर्द तिन के गए। सतगुरु चरण जिन परसिया ते पश प्रेत।

दास भट बेनत कहे, जो गुरु नाम हृदय में धरे सो जन्म मरण दोते रहे। गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर सच बिचारे गुर करे मन मेरे, गुर कर शब्द सुपन।

अरण समृत कलयुग सुनत समाज शब्द जिस केरे। सुन दुखन नाश सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस्त तैने रे। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाए परे रे। जोहर बुध हृदय सिद चाहती गुरु गुरे गुर कर मन मेरे। गुरु मुख देख गरु सुख पायो उठी जो प्यास प्यो सेवन की बंसत सिद को विद मिलायो। पूरन भवन ठौर बसोरसे बासन शिव जो दंज सधायो। गोविंद वाल गोविंद पुरी समजलन तीर विवास बनायो। गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख दे गुरु सुख पायो। समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अघन हरो निसबासुर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भांडरो। भन दास आस जगत गुरु की पारत भेत परस करो। रामदास गुरु हर

सो प्राणियों शब्द हर हर जपे नाम नवनिध आपे रसन ऐनित रसे सत कर जानियों सुनु प्रेम रंग पाइए गुरमुखे ध्याइए अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियों वचन गुर हृदय धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत उत

गुरु जप सत कर अगम गुण जान निधान हर मन धरो ध्यान ऐस करो बचन गुरु हृदय धर सुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुरु सिख करो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भव जपे प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रम तजो नाम गुरु मुख भजो गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप सत कर।

उदत गुर गहर गमीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लेवलाये सुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरते शब्द गुर ध्याये अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुरु बिमल सर संत।

गुर मिल समुन जन रे तरे नार दाद सन काल हर गुरु मुखे तरे एक नाम लग तजो रस अन।

अत गुरु गुरु सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारण तरण। संसार अगम सागर सुलहा हर नाम गुरु मुख पाया। जग जन्म मरण भगाए आई ही परतीत ही आई जिन जन के।

का ब्रह्म भरम शुभ छुटकार, अवलोका ब्रह्म भरम सब छुटकार, दिव्य दृष्टि कारण करण सतगुरु गुरु सेव अलख गत जाकी, श्री राम दास तारण तरण। परताप सदा गुर का घट घट परदास भया

नान करें प्रभात शुद्ध मन गुरु पूजा दिज सहित करन। कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपे ध्यान धरन। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद बरन। सतगुरु गुरु सेव अलख

तिन तरयो समुद्र रुद्र थिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा। कुंडली सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन

ओंदरियों बले छलन सबल मलन भंग फलन कान कुर कलंक बजी डंक चढ़ दल रविंदनियों राम रवण दुर्त दवण सकल भवन।

गुरु सत जियो गुर के आमाने निज निधाने सच जान मंत्र एह नित बासुर स्वयान लहे परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन स्यों तार धो होमे का फल काट साध संग रत जियो देहगे ते सने चित बिलास जगत एओ चरण कमल सदा सेओ दृढ़ता कर मत दियो नाम सार ही धार तजनिकार मन

ही पाता। गुरमुख संगत सवे विचारो, वाओ वाओ का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहा, अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मा विक रुद्रा दिखे, काल का काल निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाए परमार्थ, सतसंगत से ती मन खचना। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत

गुर समरथ गए किरिया धूप बुद्ध समत समारन को उन धम दूजा फैरंत सदा अग पुंज तुरंग निवारन को मथुरा जन जान कहीं जे सासु और कछु न विचारन को हर नाम बहुत बड़ो कल ने भव सागर पारे उतारन को संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस

ध्यान धरे फिरत सगल जुग कभू को पावे आत्म परगास को। वेद बाणी सहत ग्रंथ जस गावे जाको शिव मुन गहना सजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप गदा झूठ भेख किए फिरत उदास को। सोतन सतगुण सुख भाए कृपा।

अंतर जगत तेज तुम चय लोक प्रजा से देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभते अल्प मोजो कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप थप्यो थिर

जाके बसीस धर्यो गुर हथे। तीन भवन भरपूर रहो सोई, अपन सरस क्यों ना जगत कोई। आपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे, असुरे नर गण गंधर्व को जंत फिरे। अविनाशी अचल अजौनी, संभो पुरखो तुम आपार परे। करण कारण समरथ सदा सो।

तन हर परम पद पायो। नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा खूब भगत हर के जुगणन, अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा और कबीर भणन, तिनको अवतार।

मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिटियो जो तिणन। बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिटियो जो खिणन। कर्म कर तो दर्श परस पारसन बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तैं हर परम पद पायो। जै सित सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन। जै सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जै सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जै सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुण बल भण मिल संगत धन धन करो। जै सतगुर लग प्रभ पाइए सो सतगुर सिमरो नरो। जिन शब्द कमाए

ज्ञान प्रगत उजियारो दुख दर्द अंधियार को नाशे। कब कीरत जो संत चरण मुन लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। ज्यों अंगद अंग संग नानक गुर त्यों गुरु अमरदास कै गुरु रामदास। जिन सतगुरु सेव पदार्थ पायो निसबासुर हर चरण निवास। सांते संगत सगन भाव

जै तिखत अत होए रहत मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानु तीनी भगत प्रेम लिवलाई। आते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद की

जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सो जस वखाण्यो भगत जोग को जतवार।

वेदन भर सहता भय बंजन पर पीर निवारण कल संहार तुए जस भगता कुल सोदी गुरु रामदास तन धर्म भुजा अर्जन हर भगता।

कहो मथुरा अमृत बैं मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धर्यो आद पुरख पर तथे लिखो अक्षर मस्तक धुरे प्रगट ज्योत जग मग

जिना वेल ना सूंबड़ी माया ठगे ठग मनमुख बन चलाइए ना मिलही वग सग आप सुलाए।

जह देखा कह एक है गुरमुख प्रगट होए। दुख निसारण शब्द है जे मन वसाए कोए, गुर कृपा ते मन वसै कर्म प्राप्त होए। नानक हो करते खप मोए कूहन लख असंख, सतगुर मिले सोबरे साचे शब्द अलंख। जिना सतगुर इक मन सेविया तिन जन लागो पाए, गुर शब्दी हर मन वसै माया की पुख जाए। से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाए, नानक होर पाप।

बौरस साल में सवार दी खटवस मीठे पाए। क्यों बाणी पगत सलाम दे हर नामे चित लाए। मन तन तन आगे राखिया सिर वेचिया गुर आगे जाए। तै पगती पगत बहु लोच दे।

तुत पासे हर गुण गाए, तन तन कर जुग नानका जे चले सतगुरु भाए। सतगुरु ना सेवियो शब्द ना रखियो उधार, तिग तिना का जीविया तित आए संसार। गुरमति पौ

0: नाम रतन प्रकाशिया मन तन निर्मल होए। नाम हीन नक्ते फिरे बिन नावे बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सकै कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर कै शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे भंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार।
1: गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़या दसवें आकाश, तिथे ऊंग न पुख है हर अमृत नाम सुखवास। नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रगास। काम क्रोध का चोलड़ा सब गल आए पाए, एक उपजे एक बिनस जाए हुक्मे आवे जाए। जम्मन मरण न चुकई रंग लगा दूजे भाए, बंधन बंद भवायन करना कछु न जाए। जिनको कृपा धारियन तिना सतगुरु मिलिया आए, सतगुरु मिले उल्टी भई मर जीव्या सह सुवाए। नानक भक्ति रतिया हर हर नाम समाए, मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई। कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए न पाई, पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय।

पुत कलत मोह हेत है अंत बेली को न सिखाए सतगुरु सेवे सो सुख पाए नाम वसै मन आई नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाई मनमुख नाम ना चेतनी बिन नाम है दुख रोए आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए हों मैं अंतर मैल है शब्द ना काढ़े तोए नानक बिन नावे मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए मनमुख बोले अंगले तिसमें अग्नि का वास बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करे प्रगास ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुरु वचन ना करे विसास ज्ञानिया अंदर गुरु शब्द है नित हर लिव सदा विकास हर ज्ञानिया की रखदा

आए बिख का मारण हर नाम है गुर गरुड़ शब्द मुख पाए जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए मिल सतगुरु निर्मल होया बिख हो मैं।

सतगुरु पुरख निर्वैर है नित हिरदय हर लिवलाए निर्वैर नाल वैर रचाएंदा अपने कर लूकी लाए अंतर क्रोध अहंकार है अंदिन जले सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल नित पौंक दे बिखा दे दूजे भाए बिख माया कारण परम दे फिर कर कर पत गवाए बेसवा के रे पूत ज्यो पिता नाम तिस जाए हर हर नाम न चेतनी करते आप खुआए हर गुरुमुख कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए जन

या दोहागणी आवण जान मोयास, गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास, हर हर नाम उर्धारया हर हृदय कमल प्रगास, सतगुर सेवन आपना हो सद बलिहारी तास, नानक तिन मुख उजले जिन अंतर नाम प्रगास, शब्द मरे सोई जन सिजे बिन शब्द मुक्त न होई, पेख करे बहु कर्म विगुते पाए दूजे परज विगोई, नानक बिन सतगुरु नाव ना पाईए जेसो लोचे कोई, हर का नाव अत वड ऊंचा ऊंची हु ऊंचा होई, अपड़ कोई न सके जेसो लोचे कोई, मुख संजम हच्छा ना होवई कर पेख पवे सब कोई, गुर की पौड़ी जाय चढ़े कर्म प्राप्त होई, अंतर आय वसे गुर शब्द विचारे कोई, नानक शब्द मरे मन मानिए साचे साची सोए, माया मोह दुख सागर है बिख दुत्तर तरे आना जाए, मेरा मेरा कर दे पच मोए हों मैं करत विहाय, मन मुखा उरवार न पार है अध विच रहे लपटाए, जो तुर लिखिया सो कमावना करना कछु न जाए, गुरमति ज्ञान रतन मन वसे सब देखिया ब्रह्म सुवाए, नानक सतगुर बोझे वट पागी चढ़े ते फौजल पार लंगाए, बिन सतगुर दाता को नहीं जो हर नाम दे आधार, गुर कृपा ते नाव मन वसे सदा रहे उर्धार, तिसना बुझे तिप्त होए हर के नाए प्यार, नानक गुरमुख पाईए हर अपनी कृपा धार, बिन शब्द जगत बर लिया कहना कछु न जाए, हर रखे से उबरे शब्द रहे लिव लाए, नानक करता सब कित जानदा जिन रखी बनत बनाए, होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण, बिख माया मोह न मिटई विच होमे आवन जान, सतगुर मिले मल उतरी हर जपया पुरख सुजान, जिना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सतगुरबान, माया मोह बहु चित्व दे बहु आशा लोभ विकार, मन मुख अस्थिर नाथी है मर बिनस जाए खिनवार, वड पाग होवे सतगुर मिले होमे तजै विकार, हर नामा जब सुख पाया जन नानक शब्द विचार, बिन सतगुरु भगत न होवे नाम।

मन आवन जान ना सुजई ना सुजै दरबार, माया मोह पलेटिया अंतर अज्ञान गुवार। तब नर्थ पा जा गया सिर डंड लगा बहु पार, गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार। नानक आप ओह उदरे सब कुटंब तरे परवार, शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस्त्रा पे, हर दरगे गुर शब्द जापे बिन शब्दे मुआ है सब कोए, मन मुख मुआ अपना जन्म खोए, हर नाम न चेते अंत दुख रोए, नानक करता करे सो होए, गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान, सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ज्ञान, ओए सदा आनंद विवेक रहे दुख सुख एक समान, तिना नदरी इको आया सब आत्म राम पहचान, मन मुख बालक बिरद समान है जिना अंतर हर सुरत नाही, विच हो मैं कर्म कमाव दे सब धर्म राय कह जाही, गुरमुख अच्छे निर्मले गुर कह शब्द सुवाए, ओना मैल पतंग ना लग गई जे चलन सतगुर भाए, मन मुख झूठ ना उतरे जे सो तोवन पाए, नानक गुरमुख मेलिया।

जग हरियावल होए, सब दे सदा बसंत है, जित तन मन हरिया होए, नानक नाम ना विसरे, जिन सिरिया सब कोए, नानक तिना बसंत है, जिना गुरमुख वस्या मन सोए, हर उठे मन तन परफड़े, सब जग हरिया होए, वडड़े चाल चलुंबड़े, नावड़ा लिये किस, नाव लिये परमेश्वर है, पन्नन करण समरथ, हर हट भी तू तू करे, बोले पल्ली बाण, साहिब सदा हदूर है, क्या उच्ची करे पुकार, जिन जगत उपाय हर रंग किया, तिसे विट्टो कुर्बान, आप छोड़े ता सो मिले, सच्चा यो विचार, हों मैं फिक्का बोलना, बुझ न सका कार, वन त्रिण त्रिभुवन तुझे त्याईंदा, अंजन सदा विहान, बिन सतगुर किने न पाया, कर सके विचार, नदर करें जी आपनी, ता आपे लहे सवार, नानक गुरमुख जिनी त्याया, आए से परवान, जोग ना पगवी कपड़ी, जोग ना महले वेश, नानक कर बैठिया जोग पाये, सतगुर कह उपदेश, चारे कुंडा जे पवे, बेद पड़े जुग चार, नानक साचा फेटे हर मन वसे, पावे मोह द्वार, नानक हुकम वरते खसम का, मत पवी फिरे चल चित, मनमुख सौ कर दोस्ती, सुख के पुछे मित, गुरमुख सौ कर दोस्ती, सतगुर सौ लाए चित, जम्मन मरण का मूल कटिए, तां सुख होवी मित, पुलिया आप समझाए थी।

बिन दर्शन क्यों त्रिप्रिय है, नानक मिले सुभाए गुरुमुख ए मन रहसी है। जिना प्री प्यार क्यों जीवन फिर बहारे, जासो देखन अपना नानक जीवन भी हरे। जिना गुरुमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चै लाया, राती अतै डे हो नानक प्रेम समाया। गुरुमुख सच्ची आस की जित प्रीतम सच्चा पाई है, अंदर रहे आनंद नानक सहज समाई है। सच्चा प्रेम प्यार गुर पूरे ते पाई है, कबहू न होवे पंग नानक हर गुण गाई है। जिना अंदर सच्चा ने हो क्यों जीवन फिरी विहुनिया, गुरमुख मेले आप नानक चिरी विछुनिया। जिनको प्रेम प्यार सौ आप पहलाया, कर्म कर नानक लेहो मिलाए मैं जाचक दीजे नाम हर। गुरमुख हस है गुरमुख रोवे, जे गुरमुख करे साई भगत होवे। गुरमुख होवे सो करे विचार, गुरमुख नानक पावे पार। जिना अंदर नाम ने

गुर कै शब्द अरा दिए नाम रंग बैराग जीते पंच बैराया नानक सफल मारू एह राग जामू इक ता लख तौ जिती पिनने दर कितड़े बामन बिरथा गयो जनम जिन की तो सो विसरे थोरठ थोर पीजिए कबू न फीका होए नानक राम नाम गुण गाये दरगह निर्मल सोए जो प्रभ रखे आप तिन कोई न मारे अंदर नाम निदान सदा गुण सारे एका टेप अगम मन तन प्रभ धारे लगा रंग अपार को न उतारे गुरमुख हर गुण गाए सहज सुख सारे नानक नाम निधान हृदय उरहारे करे सो चंगा मान दुई गणत लाहे अपनी नजर निहाल आपे लहो लाए जन देहो मति उपदेश विच्चों परम जाए जो सुर लिखिया लेख सोई सब कमाए सब कष्ट दे वस दूजी नाही जाए नानक सुख आनंद भये सब की मन रजाए गुर पूरा जिन सिमरिया से भय निहाल नानक नाम आराधना कारज आवे रास पापी कर्म कमाव दे कर दे हाय हाय नानक ज्यो मथन माधानिया क्यों मथे धर्म राय नाम से आए साजना जन्म पदार्थ जीत नानक धर्म ऐसे चवें कीतो पवन पुनीत खुबड़ी कुठाए मिठी जलन कुमंत्रिया।

सुतड़े असंख माया चूकी कारणे नानक से जगन जे रसना नाम उचारणे मृग तिसना पेख भुलने बुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच आराध्या नानक मंगतन पब पतित उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरख अपार जिसे उदारे नानका सो सिमरे सृजनहार दूजी छोड़ कुआटड़ी इक सोचित लाए दूजे पावी नानका वहन लुड़ंदड़ी जाए ते हटड़े बाजार सौदा करन मन जारिया सच वखर जिनी लद्या से सचड़े पासार पंखा प्रेम ना जाने पूली सिरे गवार नानक हर बिसराय कै पौंदे नरकंधार माया मनो नावी सिरे मांगे दम्मा दम सो प्रभ चितना आवई नानक नहीं करम चिचर मूल न थुड़ी दो जिचर आप किरपाल शब्द अखुट बाबा नानका खाए खर तन माल खंब विकांदड़े जे लहा किन्ना सावी तोल तन जड़ाई अपने लहा सुख जन टोल।

نانک اے بد ہر پجو ایک من ہوئے ایک چت تیرت برت

जिसका सब आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होय उधारो। के वस्त जी नह जाई, नित नित रख उधारो, तम संसार चरण लग।

अला राग एक संग पंच बरंगन संग अला पै आठो नंदन प्रथम राग पैर होवे कर ही पंच रागनी संग उचर ही प्रथम पैर ही बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पांचों नारी पंचम हरख दिशा सुनावे।

दुतिया माल कौशक आलापे संग रागनी पांचों थापे गोंड करी अरदेव गंधारी गंधारी सिहुती उचारी तनासरी ए पांचों गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशक उभारा खौखट औ पौरा नद गाये अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचना

सुरमानंद पास करियाए चंद्रबिम मंगलन सोहाए सरसबान आओ आए बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पटमंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कांगरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग में गावे पांचों संग बिरंगन ला।

हुक्म लेख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई, नान

आई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा बिन पाने के नाए करी जेते सिरठ उपाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नौ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवे ता वात ना पुछे के कीता अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सुजे जे तिस गुण कोई करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया तत धवल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहे ना सकै काल नानक।

पछताए। कागज कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह कर्म विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुत हुए मन बुद्ध, मन्ने सग

दरियाओ कुदरत कमण कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई पली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख योग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पखसार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल भख खाहे।

अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए।

एक वार जो तुद पावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन दे पानी धोते उतरस खे।

अंतरगत तीरथ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोई। बिन गुण कीते भगत ना होए, स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ। सत सुहाण सदा मन चाओ, कमण सो वेला वखत कमण, कमण थित कमण वार, कमण से रुती माह कमण, जित होवा आकार। वेल न पाइया पंडती।

जान करता सिर ठीक को साजी, आपे जाने सोई किव कर आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आखण।

आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना कमाए केते मंगह जोद अपार केतियां गणत

अमोल तोल अमोल परवान, अमोल बख्शीश अमोल निशान, अमोल कर्म अमोल परमान, अमूलो मुल आख्या न जाए, आख आख रहे लिब लाए, आख है वेद पाठ पुराण, आख है पढ़े करह वखियान, आख है बर्मे आख है इंद, आख है गोपी तै गोविंद, आख है ईश्वरी आख है सिद्ध, आख है केते कीते बुद्ध, आख है दानव आख है देव, आख है सुर नर मुन जन सेव, केते आख है आखन पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, केते कीते होर करे ता आख ना सकह केई के, जेवड़ पावे तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए।

देवतियां दर नाले गावे हैं सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गावे हैं वीर करारी गावन पंडित पंडर खीसर जुग जुग वेदा नाले गावे हैं मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावे हैं जोध महाबल सू।

आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत अदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग वजोग दुहकार चलावह लेखे आवह भाग अदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन केले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै।

आद अनिल अनाद अनाहक जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए पंडार जो किस पाया सो एकावार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सया देश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी पौ लख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एक राहे पत पवड़िया चढ़िया हुए।

पै जाए धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आख हो कर्म। केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बर में काड़त करिय है।

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड इथे नाद बलोद कोड आनंद सर्म खंड की वाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सिद्धा की सुध

पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुदर तेरा केहा सो कर केहा जित बह सर्व संभाले वाजे तेरे नाथ।

उठी। गावन तुदनो वीर करारी, गावन तुदनो पंडित पन्नर कीसर, जुग जुग वेदा नाली। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन, सुरग माछ पाए आली। गावन तुदनो रतन उपाए तेरे, अठ सठ तीरथ नाली। गावन तुदनो जोध महाबल सूरा, गावन तुदनो खानी चारी। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे। से तुदनो गावन जो तुद पावन, रत्ते तेरे भगत रसाले।

सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन पपाई कर कर देखे कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह सहा पत साहिब नानक रहन रजा।

मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया, तुदे मिन सिद्धि किने ना पाईया, कर्म मिले ना ही ठाक रहाईया।

बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करहु गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरण।

खाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर सरन संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास, राग गुजरी महला पंजवां, काहे रे मन चितम है उद्दम जा।

सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता, हुए न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया, उडे उड़ आवे सह कोसा, तिस पासे बचरे शरिया, तिन कवन खलावे कवन चगावे, मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमय अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुध जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्याव

तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुझ जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूती जमती फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन

रहाउ साकतः रस साधना जानिया इन अंतर हो मैं कंडाही ज्यों ज्यों चल है चुभे दुख पावे जमकाल सह सिर डंडाही हर जन हर हर नाम सुमानी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम।

अगर चंदन लीप आवै चाऊ मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवै नाउ हर बिन जियो जल बल जाऊ मैं अपना गुरपूछ देखिया अवर नाही थाऊ रहाऊ धरती ता हीरे लाल जड़ती

सिद्ध हुआ सिद्ध लाई रिद आखा आउ गुपत प्रगट हुए बैसा लोक राखे पाव मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाउ सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाऊ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाऊ मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाउ श्री राग महला पहला।

अस जित बोले पत पाईए सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूर्ख मन अजान जो तिस भावे है से भले होर के कहन बखान तिन मत तिन पत तिन धन पल्लै जिन हिरदै रहिया।

जित सेवियां सुख पाईए तेरी दरगाह चले मान रहाओ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा नाम सुने है वखाण है जेतड़ी हों तिन बलिहार है जाऊं ता मन खीवा जानिए जा महली पाए थाऊं नाऊ नीर चंगियाईयां

तिसमिन सब अपवित्र है जीता पहनन खान होर गल्ला सब कूड़िया तुद भावे परवान श्री राग महल पहला जाल मोह कस मस कर

आओ, घर मंदर खुशी नाम की, नदर तेरी परवार, हुक्म सोई तुद भावसी, होर आखण बहुत अपार, नाम

रहाउ। पूज लगे पीर आखिए सब मिले संसार, नाउ सदाए अपना होवे सिद्ध सुमार। जां पत लेखे ना पवे सभा पूज खुआर, जिनको सतगुरु था।

रहाउ प्रभ हर मंदर सोहना तिस मेहमान कलाल मोती हीरा निर्मला कंचन कोटरी साल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुलहा हर नाम गुर सर सागर बोहितो गुर तीरथ दरियाओ जे तिस भावे उजली सत सर नावन जाओ पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास पूरे थान सुहावन पूरे आस निरास नानक पूरा जे मिले क्यों घट है गुणतास श्री राग महला पहला आप ओ भैने गल मिले अंक सहेलड़िया मिलकै करह कहानियां समरत कंत किया साचे साहिब सब गुण औगण सब असहा करता सब को तेरे जोर एक शब्द बिचारी है जा तू ता क्या होर रहाओ जाए पुछो सुहागणी

जाए। जो तिस भाणा सो थीऐ अवर ना करना जाए। गुरमुख वस्त वे साहीऐ सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणंजिया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास। श्री राग महल पहला धात मिलै फुन धात कौ, सिफती सिफत समाए। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिलै संतोखिया हर जप एक पाए। भाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाई मुक्त पदार्थ तेन। रहाओ ऊचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाई है दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार, त्रिविद कर्म कमाई है आस अंदेसा होए। क्यों गुर बिन त्रिकुटी छुट सी सहज मिले है सुख होए। निज कार महल पछाणी है नदर करे मल धोए, बिन गुर मैल ना उतरे बिन हर क्यों घर वास। एको शब्द विचारी है अवर त्यागे आस। नानक देख दिखाई है हौसा।

है दरगाह झूठ खुआर रहाउ आप सुजान ना भुले सच्चा वड किरसान पहला धरती साधक सच नाम दे दान नौनिद उपजै नाम एक कर्म पवे निशान गुर को जान ना जाने क्या तिस चज अचार अंधलै नाम वसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान ना चुकई

दिन सरात गुरमुख हर धन जान सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ सेविया सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाई है गुर निंदा पचै पचान परमे पूला दुख कणु जम मार करै खुलहान मनमुख सुख ना पाई है गुरमुख सुख सुभान ऐसै धंद पटाई है सच लिखत परवान हर सज्जन गुर सेवदा गुर करनी परदा।

जिस हर मन वसै तिस मेले गुर संयोग काया कामन जी करी भोगे भोगण हार इस स्यों नेहो ना की जई जो दिसै चलन हार गुरमुख रवह सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल परगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुर मीत कर सच पाव है दरगाह जाए। श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाई है तुलिए पूरे तोल कीमत किने ना पाई है रिद मानक मूल अमोल पाई रे हर हीरा गुरमाहे सत संगत सत गुर पाई है अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाई है गुर परगास ज्यों अगन मरै जल पाए त्यों तृष्णा दासन दास जम जंदार न लगई इउं भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ न पावई सच रते सच पाए साकत सच न

मन मानक निर्मूल है। राम नाम पत पाई, मिल सत संगत हर पाई है। गुरमुख हर लिव लाई, आप गया सुख पाया। मिल सल लै सलन समाई, जिन हर हर नाम ना चेतियो सो अवगुण आवे जाई। जिस सत गुरु पुरख ना भेटियो सो भौ जल।

गुर मिल पाओ जन लंगिया दरगाह पात परवान नानक ते मुख उजले धुनि उपजै शब्द निशान श्री राग महला पहला वणज करहो वणजारिहो वखर लिहो संभाल तैसी वस्त वसाही है जैसी निबह नाल अगे साहु सुजान है लैसी वस्त संभाल भाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर लै चलो सहु देखै पति आए रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों किन्ना सुख होए खोटै वणज वणंजै।

तीज कर्मा करो सलल अपाव सारिंग पानी मन किरसान हर हृदय जमाए लै इं पावस पद निर्वाणी काहे गर्भस मूड़े माया।

दुष्ट किरखा करे इन तज आत्मै हुए त्याई जप तप संयम होहे जब राखे कमल बिगसै मद आश्रमाई बीस सप्ताह रो बासरो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सारे दस अठार में अपरंपरो चीनै कह नानक इव एक तारे गिरी राग महला पहला कर तीजा अमल कर धरती बीज शब्दो कार

को रह ना परिये पाई, सोई काजी जिन आप तजिया, एक नाम किया आधारू, है पी हो सी जाए न जासी, सच्चा सिर जन हारू, पांच वक्त निवाज गुजार।

दास सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए परगास रहाओ गुर कै शब्द मन जीतिया गत मुक्त करै मह पाए हर का नाम त्याई है सत संगत मेल मिलाए जे लख इस्तरियां भोग करहै नव खंड राज कमाए बिन सतगुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे हर हार कंठ जिन्नी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिन्ना पिछै रिद सिद्ध फिरै ओना तिल ना कमाए।

ब्राह्मणी सच घट प्रगट होए अंतर जिसकै सच वसै सच्चे सच्ची सोए सच मिले से ना बिछड़ है तिन निज घर वासा होए मेरे राम मैं हर बिन अवर ना कोए सतगुर सच प्रभ निर्मला

भाई को ना मिले फिर आवे जाय, सब मह एक वर्त दा एको रहिया समाय। जिसनो आप दयाल हुई सो गुरमुख नाम समाय। पढ़ पढ़ पंडित जोत की वाद करह विचार, मत बुद्ध भवी ना बुझई अंतर लोभ विकार। लख चौरासी भरम दे भ्रम भ्रम हुए खुआर, पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार।

पाई। पारस परसी है पारस हुई, ज्योति ज्योत सुमाई। जिनको पूर्व लिखिया तिन सत गुर मिलिया आई। मन भुखा भुखा मत करह, मत तू करह पुकार। लख चौरासी जिन सिरी, सब सह दे आधार। निरप

से निर्मले हौ सद बनिहार जास हृदय जिनकै हर वसै इत घट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याए तुर मस्तक जिनको लिखिया ते गुरमुख रहे लिव लाए रहाओ हर संत हो देखो नदर कर निकट वसै भरपूर गुरमत जिन्नी पछाणिया से देख है सदा हदूर जिन गुण तिन सद मन वसै औगणवंतिया दूर मनमुख गुण तै बाहरे बिन नावे मरदे झूर जिन शब्द गुरु सुन मन्या तिन मन त्याया हर सोए अन दिन भगती रत्या मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंभ का बिन सजाए दुख रोए जिस अंदर नाम परगास है ओह सदा सदा थिर होए एहो जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम ना चेतै लिव लाए पग खिसै रहना नहीं आगै ठौर ना पाए ओह वेला हथ ना आवई अंत गया पछताए जिस नदर करे सो उभरै हर सीती लिव लाए देखा देखी सब करे मनमुख बूझ ना पाए जिन गुरमुख हिरदा सुध है सेव पई तिन थाए हर गुण गावे हैं हर नित पढ़ हैं हर गुण गाए समाए नानक तिनकी बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिव लाए श्री राग महला तीजा जिन्नी एक मन नाम त्याया गुरमती विचार तिनके मुख सद उजले।

समाए, तिनका जन्म सफल है, जो चल है सतगुरु पाई, कुल उधार है अपना, धन जणेंदी माए, हर हर नाम त्याई है, जिसनो कृपा करे रजाए, जिन्नी गुरमुख नाम त्याया, विचो हो आप गुआई, वे अंदर हो बाहर हो निर्मले,

या हर भगता हर तन रास है, गुरपूछ कर है वापार, हर नाम सलाहन सदा सदा, वखर हर नाम आधार, गुरपूर हर नाम दृढ़ाया, हर भगता अतुट भंडार, भाई रे इस मन को समझाए, ए मन आलस क्या करह, गुरमुख नाम त्याय रहाओ, हर भगत हर का प्यार है, जे गुरमुख करे विचार, पाखंड भगत ना होवे, दुबदा बोल खुआर, सो जन रलाया ना रले, जिस अंतर विवेक विचार, सो सेवक हर आखी है, जो हर राख है उरतार, मन तन सौंपे आगे तरे, हो मैं विचो मार, तन गुरमुख सो

अहनस पूर रही नित आसा, सतगुर सेव मोह परजल, घर ही माहे उदासा रहाउ, गुरमुख कर्म कमावे बिगसै, हर बैराग आनंद, अन दिन भगत करे दिन राती, हौ मैं मारनी चंद, वड्डे भाग सत संगत पाई, हर पाया सहज आनंद, सो साधु बैरागी सोई, हिरदय नाम वसाए, अंतर लाग न तामस मूले, विचों आप गवाई, नाम निधान सतगुरु दिखालिया, हर रस पिया अगाए, जिन किने पाया साध संगती, पूरे भाग बैराग, मनमुख फिर है ना जान है सतगुर, हम मैं अंदर लाग, नानक शब्द रते हर नाम रंगाए, बिन पै के ही लाग, श्री राग महला तीजा, घर ही सौदा पाई है, अंतर सब वथ होए, खिन खिन नाम संभाली है, गुरमुख पावे कोई, नाम निधान अखुट है, वडभाग प्राप्त होए, मेरे मन ताज निंदा हौ मैं अहंकार, हर जीव सदा त्याए तू, गुरमुख एकंकार रहाउ, गुरमुखा के मुख उजले, गुर शब्दी बीचार, हलत पलत सुख पाएंदे, जप जप हृदय मुरार, घर ही विच महल पाया, गुर शब्दी बीचार, सतगुरु तेजो मोह फेर है, मथे तिन काले, अन दिन दुख कमाव दे, नित जो हे जम जाले, सुपने सुख ना देखनी, बहु चिंता पर जाले, सबना का दाता एक है, आपे बख्श करे, कहना किसु ना जावई, जिस पावे तिस दे, नानक गुरमुख पाई है, आपे जाने सोए, श्री राग महला तीजा, सच्चा साहिब सेवी है, सच वडियाई दे, गुर प्रसादी मन वसै, हौ मैं दूर करे।

पाय लाहा हर हर नाम मिले सहजी नाम समाय बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुर लोड लहु जिदू पाईए सच सोए असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मलावा होए श्री राग महला तीजा अमृत छोड़ बिख्या लोवाणी सेवा करह विडाणी अपना धर्म गवावह बूझह नाही अन दिन दुख विहानी मनमुख अंध ना चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा भजो हर सरनाई गुर का शब्द अंतर वसे ता हर विसर ना जाई रहाओ एहो शरीर माया का पुतला विच हूं मैं दुष्टि पाई आवण जाना जम्मण मरना मनमुख पत गुआई सतगुर सेव सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मलाई सतगुर की सेवा अत सुखाली जो इच्छे सो फल पाई जात सत ताप पवित शरीरा हर हर मन वसाई सदा आनंद रहै दिन राती मिल प्रीतम सुख पाई जो सतगुर की शरणागति हऊं तिनकै बल जाऊं दर सच्चै सच्ची वडियाई सहजे सच समाओ नानक नदरी पाईए गुरमुख मेल मलाओ श्री राग महला तीजा मनमुख कर्म कमावणी ज्यों दुहागण तन शिंगार सीजै कंत ना आवई नित नित होए खुआर पिरका महल ना पावई ना दिसै घर बार भाई रे एक मन नाम त्याए संता संगत मिल रहे जप राम नाम सुख पाए रहाओ गुरमुख सदा सुहागणी पिर राखिया उर धार मिठा बोलह निव चलह सेजै रवै पतार सोभावंती सुहागणी जिन गुर का हित अपार पूरे भाग सतगुर मिले जा भागै का उदो होए अंतर हो दुख भ्रम कटिए सुख प्राप्त होए गुर कै भाणे जो चले दुख ना पावे कोई गुर के भाणे विच अमृत है सहजे पावे कोई जिन्ना प्राप्त तिन पिया हूं मैं विचों खोए नानक गुरमुख नाम त्याई है।

फिरे। गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचै सब कोई रहाऊ।

अंते हुए सखाई, अपने मनचित कह कहाई, बिन गुर आप ना जाई। हर जीव दाता भगत वच्छल है, कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सुत दे प्रभ आपे, गुरमुख दे वडियाई। श्री राग महला तीजा, तन जननी जिन जाया, तन पिता प्रधान, सतगुर सेव सुख पाया। विचों गया गुमान, दर सेवन संत जन खड़े, पायन गुणी निदान। मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए, गुर का शब्द मन वसै, मन तन निर्मल हो।

दे, गुरमुख बूझे कोए बिन बूझे कर्म कमावणे, जन्म पदार्थ खोए रहाओ, जिन्नी चाखिया तिन्नी साध पाया, बिन चाखे भरम भुलाए, अमृत साचा नाम है कहना कछु ना जाए, पीवत हूं प्रमाण भया पूरा शब्द समाए, आपे दे ता पाई है

कमाए। जात सत संयम नाम है, विण नाम है निर्मल ना होए। पूरे भाग नाम मन वसै, शब्द मिलावा होए। नानक सहजे ही रंग वरतदा।

गुवाई, मनमुख कर्म कमावनी, दरगाह मिले सजाई, मन रे दूजा भाव चुकाए, अंतर तेरे हर वसै, गुर सेवा सुख पाई, रहाऊ सच बाणी सच शब्द है, जां सच धरे प्यार।

अगली मनवा रज्जा सहज सुपाई गुर का शब्द अमृत है जित पीते तिख जाय इहो मन साचा सच रत्ता सच्चे रहया समाय आखण वेखण बोलना शब्दे रहया समाय बाणी वजी चहु जुगी सचो सच सुनाय हम मैं मेरा रह गया सच्चा लया मलाय तिनको महल हदूर है जो सच रहे लिवलाय नदरी नाम ते आई है विन कर्मा पाया ना जाय पूरे भाग सत संगत लह सतगुर भेटै जिसे आय अन दिन नामे रत्या दुख बिखिया विचों जाय नानक शब्द मलावड़ा नामे नाम समाय श्री राग महला तीजा अपना भौ तिन पायुन जिन गुर का शब्द बीचार सत संगति सदा मिल रही सच्चे के गुण सार दुबधा मैल चुकाइयन हर राखिया उर तार।

शब्द सवारन हार रहाव सत्य शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मलाय अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाय ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाय जिनको पूर्व लिखिया सतगुर पेटिया तिन आय बिन नावे सब डुमणी दूजे पाए खवाय तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाय परम पुलाना अंदोला फिर आवे जाय नदर करी।

होना पाईऐ गुर बीचार रहाउ मनमुख कंत ना पछाणे तिन क्यों रहण विहाय गर्भ अटियां तृष्णा जलह दुख पाव है दूजै पाय शब्द रतियां सुहागनी तिन विचों हों मैं जाय सदा पिर राव है अपना तिना सुखे सुख विहाय ज्ञान विहूणी पिर मुतिया पिर मना पाया जाय अज्ञान मती अंधेर है बिन पिर देखे भुख ना जाय आव हो मिल हो सहेली हो मैं पिर देहो मलाय पूरे भाग सत गुर मिले पिर पाया सच समाय से सहिया सुहागनी जिनको नदर करे खसम पछाण है अपना तन मन आगे दे घर वर पाया अपना हम मैं दूर करे नानक सोभा वंतियां सुहागनी अन दिन भगत करे श्री राग महला तीजा एक पिर रावह अपना।

आई अन दिन रावहे फिरे अपना सहजी सच समाई रहाउ शब्द रतिया सुहागणी सच्चा शब्द शिंगार हर वर पाइन घर अपने गुर कै हित प्यार सेज सुहावी हर रंग रवे भगत भरे भंडार सो प्रभ प्रीतम मन वसै जे सब सह दे आधार फिर सलाह ने अपना तिनकै हों सद।

सोई गुरमुख बाणी ब्रह्म है शब्द मिलावा होय नानक नाम संभाल तू जित सेवे है सुख होय श्री राग महला तीजा जग हों मैं मैल दुख पाया मल लागी दूजे पाए मल हों मैं धोती किवें ना उतरे जे सो तीरथ नहाए।

का निर्मल हुए मनमुख हर हर कर थके मैल ना सकी धोए रहाव मन मैल भगत ना होवे नाम ना पाया जाय मनमुख मैले मैले मोए जासन पत गुआय गुर प्रसादी मन वसै मल हऊ मैं जाए समाय ज्यों अंधेरै दीपक बाली है त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाय हम किया हम करहेंगे हम मूर्ख गावार करने वाला विसरिया दूजे पाए प्यार माया जेवड दुख नहीं सब भव थके संसार गुरमती सुख पाई है सच नाम उरतार जिसनो मेले सो मिले हौ तिस बलिहारै जाऊं ए मन भगती रत्या सच बाणी निज थां मन रत्ते जिहवा रत्ती हर गुण सच्चे गाव नानक नाम ना विसरै सच्चे माहि समाव श्री राग महला चौथा घर पहला मैं मन तन बिरहो अत अगला क्यों प्रीतम मिले घर आए जा देखा प्रभ अपना प्रभ देखे दुख जाए जाए पुछा तिन सजना प्रभ कित बिद मिले मलाए मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोए हम मूर्ख मुग्ध शरणागति कर कृपा मेले हर सोए रहाओ सतगुरु दाता हर नाम का प्रभ आप मलावे सोए सतगुर हर प्रभ बुझिया गुर जीवड अवर ना कोए हम गुर सरनाई टह पवा कर दया मेले प्रभ सोए मन हठ किने ना पाया कर अपाव थके सब कोए सहस सियाणप कर रहे मन कोरै रंग ना होए कूड़ कपट किने ना

खेल मलाई। हो सतगुर बिट्टो वारिया जिन हर प्रभ दी याद खाई। रहाओ हुए नमाणी तह पवा पूरे सतगुर पास। निमाणिया गुरमान है गुर सतगुर करे सबास। हौ गुर सालाहे न रजू मैं मेले हर प्रभ पास। सतगुर नो सबको लोचदा जेता जगत सब कोए। बिन भागा दर्शन ना थी भाग हीन बहर होए। जो हर प्रभ पाणा सो थिया तुर लिखिया ना मिटे कोए। आपे सतगुर आप हर आपे मेल मलाए। आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए। सब जग जीवन जग आप है नानक जल जल है समाए। श्री राग महला चौथा रस अमृत नाम रस अत भला। कित बिद मिले रस खाई जाए पुछो हो सोहागनी। तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए। ओए वे परवाह ना बोलनी हो मल मल तुआ तिन पाए। पाई रे मिल सज्जन हर गुण सार। सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्डै हो मैं मार। रहाओ गुरमुखियां सुहागनी तिन दया पई मन आए। सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए। से वड भागी वड जानी है जिन हर रस खादा गुर पाए। एहो हर रस वण तिन सबत है भाग हीन नहीं खाए। बिन सतगुर पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिललाए। ओए सतगुर आगे ना निमह ओना अंतर क्रोध बलाए। हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए। आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए। सब तन मन हरिया होया नानक हर वस्या मन सोए। श्री राग महला चौथा दिन स चढ़ै फिर आथवै रैन सबाई जाए। आव कटै नर ना बुझै नित मूसा लाज टुकाए। गुड़ मिठा माया पसरिया मनमुख लग माखी पचै पचाए। भाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए। पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोए ना होए। रहाओ गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए। उन्नी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए। गुरमुख दरगाह मनी है हर आप लए गल लाए। गुरमुखा नो पंथ प्रगटा दर ठाक ना कोई पाए। हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए। अनहद धुनी दर वज दे दर सच्चै सोभा पाए। जिन्नी गुरमुख नाम सलाहया तिन्ना सब को कह सबास। तिनकी संगत दे प्रभ मैं जाचक की अरदास। नानक भाग वड्डे तिन्ना गुरमुखा जिन अंतर नाम परगास। श्री राग महला पंजवा कर पहला क्या तू रत्ता देख कै पुत्र कलत्र शिंगार। रस भोग है खुशियां करह मान है रंग अपार। बहुत करह परमाईसी वरत है हुए अपार। करता चेतना आवई मन मुख अंध गुवार। मेरे मन सुख दाता हर सोए गुर प्रसादी पाईए कर्म प्राप्त होए। रहाओ कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक। हैवर गैवर बहु रंगे किए रथ अथाक। किस ही चेतना पावे बिसरिया सब साक। सिरजनहार पुलाया विण नावै ना पाक। लेंदा बद दुआए तू माया करह एकत। जिसनो तू पतिया एंदा सो सन तुझै अनित। अहंकार करह अहंकारिया व्यापिया मन की मत। इन प्रभ आप पुलाया
ना तिस जात ना पत, सतगुरु पुरख मलाया, इको सज्जन सोए, हर जन का राखा एक है, क्या मानस हों मैं रोए, जो हर जन पावे सो करे, दर फेर ना

पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परिया हुक्म चलाए निसंग होए वरतै अपरिया सब को बस गत कर लयोन बिन नावै खाक रलिया कोट ते तीस सेवका सिद्ध साधक दर खरिया ग्रंबारी वड साहबी सब नानक सुपन थिया श्री राग महला पंजवां भलके उठ पपोलिया बिन बुझे मुगद अजान सो प्रभ चित ना आयु छूटैगी बेबान सतगुर सेती चित लाए सदा सदा रंग मान प्राणी तू आया लाहा लैन लगा कित कफकड़ी सब मुकदी चली रैन रहाउ कुदम करे पस पंखी।

जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया होए मथ मेरे मन एक सस्यों चित लाए एक

माया का रंग सब फिक्का जातु बिनस निदान जा कै हृदय हर वसै सो पूरा प्रदान साधु की हो रेणुका अपना आप त्याग अपार सियाणप सगल छड गुर की चरणी लाग तिसह प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होए भाग तिसह प्राप्त भाई हो जिस देवे प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिनसै होमै ताप नानक कौ गुर भेटिया बिनसे सगल संताप श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखन हार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार।

गुरपूरा आराध नित एकस की लिव लाग रहाउ इको भाई मित एक इको मात पिता एकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनोह न विसरै जिन सब किस वस कीता कर इको बाहर इको थान थलंतर आप जी जंत सब जिन किए आठ पहर तिस जाप एकस सेती रत्या ना हुवी सोग संताप पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोय जियो पिंड सब तिसका जो तिस भावै सो होय गुरपूरै पूरा भया जप नानक सच्चा सोए श्री राग महला पंजवा जिन्ना सतगुर सिंह चित लाया से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल हुए किन उपजै मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम मन मेरे एको नाम त्याए सर्व सुखा सुख उपजह दरगाह पैंदा जाए रहाउ जन्म मरण का पाओ गया पाओ भगत गोपाल साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल जन्म मरण की मल कटी है गुरदर्शन देख निहाल थान थनंतर रव रहया पार ब्रह्म प्रभ सोए सबना दाता एक है दूजा नाही कोई किस सरनाई छुट्टी है कीता लोड़े सो होए जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान तिनकी शोभा निर्मली प्रगट भई जहान जिन्नी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान श्री राग महला पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख वसिया मन आय अंतर ज्योत परगासिया एक सस्यों निवलाय मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाय गुण गोविंद नित गावणी निर्मल साचै नाय मेरे मन गुर शब्दी सुख होय गुरपूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोई रहाउ मन कियां इच्छा पूरियां पाया नाम निदान अंतर जामी सदा संग करने हार पछान गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभमान पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरवान सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार आठ पहर गुणसार दी रत्ती रंग अपार पार ब्रह्म सुख सागरु नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवा पूरा सतगुरु जी मिले पाईए शब्द निदान कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिए लागै सहज ध्यान मेरे मन प्रभ सरनाई पाए हर बिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाव कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगती सच्चा शब्द वसाह कर सेवा सुख सागर है सिर शाह पातशाह चरण कमल का आसरा दूजा नाही थाव मैं धर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाऊ नीमाणिया प्रभ मान तू तेरे संग समाऊ हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद जी प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद
श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच सियो मरे न आवे जाय ना वे छोड़िया विछड़े सब मह रहिया समाय दीन दर्द दुख भंजना सेवक कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुर मेलाया माय पाई रे मीत करहो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोय रहाउ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निश्चल तिस दरबार जो मंगिया सोई पाई है निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरह मन तन होवै शांत एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत गुण निधान नवतन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराधी है दिन विसरो नहीं रात जिनको पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तन मन तन अर्पी सबो सगल वारी है एह जिंद देखै सुनै हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद किरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवा मन तन धन जिन प्रभ दिया रखिया सहज सवार सर्ब कला कर थापिया अंतर ज्योत अपार सदा सदा प्रभ सिमरी है अंतर रख उरतार मेरे मन हर बिन अवर ना कोय प्रभ सरनाई सदा रहो दुख ना व्यापै कोय रहाउ रतन पदार्थ मानका सोयना रूपा खाक मात पिता सुत बंध पा कूड़े सबे साक गिनकी तात सह ना जानी मन मुख पास न पाक अंतर बाहर रव रहया तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहया अंतर हों मैं कूर भगती नाम विहूनिया आवह वंजह पूर राख लिहो प्रभ करन हार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम भया नानक नाम ना विसरौ कर अपनी हर मया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर धन मेरा राज रूप मैं देस सुत दारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेस हर नाम हृदय ना वसई कार्ज कितै ना लेख मेरे मन हर हर नाम त्याए कर संगत नित साधकी गुर चरणी चित लाए रहाउ नाम निधान त्याई है मस्तक होए भाग कार्ज सब सुवारी है गुर की चरणी लाग हों मैं रोग भ्रम कटी है ना आवे ना जाग कर संगत तू साध की अठ सठ तीर्थ नाओ जियो प्राण मन तन हरि साचा इहो सुआउ एथे मिलह वडाइया दरगह पावह थाउ करे कराए आप प्रभ सब किस तिस ही हाथ मारिया पे जीवाल दा अंतर बाहर साथ नानक प्रभ शरणागती सर्व कटा के नाथ श्री राग महला पंजवा शरण पए प्रभ आपने गुरु हुआ कृपाल सतगुर कै अपदेसे बिनसे सर्व जंज

प्रभ अपनी एक निमख ना मनो वसार रहाउ गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्थार सहजे सिफती रत्या भवजल उतरे पार तीर्थ वर्त लख संजमा पाइय साधु।

अस बिन सच्चे सब कूड़ है, अंते हुए बनास रहाउ। साहिब मेरा निर्मला तिस बिन रहन ना जाय, मेरे मन तन भुख अति अगली, कोई आण मलावे माय। चारे कुंडा भालिया सह बिन अवर ना जाय, तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार। सतगुरु दाता नाम का पूरा जिस भंडार, सदा

सदा सदा आराधी है। एहा मातव सेख मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख। श्री राग महला पंजवां संत जन हो।

हर जानो हर लिव उदरी, नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवां, कर दूजा गोयल आया गोयली, क्या

सारी किसह त्याग मन मेरे सर्ब को आधार। गुर के चरण मन मह त्याई छोड़ सगल सियाणपा साच शब्द लिव लाए रहाओ। दुख कलेश ना पौ ब्यापै गुरमंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुरबिन तरयो ना कोई। देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहि हौं तिनकै बलिहार ने जे गुर की पैरी पाहि। साध संगत मन वसै साच हर का नाऊं सेवड भागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवां संच हर धन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार। जिन तो साज सवारिया हर सिमर होए उदार। जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिनह दिया हृदय का आधार। रहाओ काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार। पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार।

जिस दे प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटिया सगल

मान अभमान मंद ही सो सेवक नाही, तात समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही, कहन कहावन एहु कीर्त करला, कथन

बलिहारन तुस दिता अमृत नाम रहाओ जिन तू सेविया पाओ कर से पुरख सुजान तिन्ना पिछे छुटी है जिन अंदर नाम निदान गुरजेवड दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान आए से परवान है जिन गुर मिले।

हर हर नाम संभाल, साधु संगत मन वसै, पूरन हो ऐ काल रहाउ। गुर समरथ अपार गुर, वडभागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला, गुर जीवड़ अवर ना कोई, गुर करता गुर करनहार।

सास ग्रहास न विसर सफल मूरत गुरे आप गुर जीवड़े अवर ना दिसई आठ पहर किस जाप।

हौ सद बलिहार जाऊं सा धन रंड ना बैसई जे सतगुर माही समाय फिर री सालू नौ तनु साचो मरै ना जाय नित रवै सोहागनी।

दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पेर पुरख ना जानी साचे गुर कै हित प्यार निस अंधारी सुतिए क्यों पिर बिन रैन विहाय अंक जलो तन जालियो मन धन जल बल जाय जा धन कंत ना राविया ता बिरथा जो बन जाय सेजै कंत मेहलड़ी सूती बूझ ना पाए हौ सुती पिर जागना किस को पूछो जाय सतगुर मेली पै वसी नानक प्रेम सखाए श्री राग महला पहला आपे गुण आपे कथै आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचो मान महत तू आपे देवन हार हर जियो तू करता करतार ज्यों पावे।

शब्द पछाणिए साच रते गुरवाक तित तन मैल ना लगई सच कर जिस ओताक नदर करे सच पाई है।

रहाउ। सब जग बांधु काल को बिन गुर काल अपार, सच रते से उबरी दुबदहा छोड़ विकार। हौ किन कै बलिहार न दर सचै सत्यार, सी चाने ज्यो पंखियां जाली बदक हाथ। गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ, बिन नावे चुन सुटी है कोई ना संगी साथ। सचो सच्चा आखी है सच्चे सच्चा थान, जिन्नी सच्चा मन्या इन मन सच ध्यान। मन मुख सूचे जानी है गुरमुख जिन्ना ज्ञान। सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मलाए, साजन मिले सुख पाया जमदूत मोए बिख खाए। नावै अंदर हौ वसा नाओ वसै मन आए, बाज गुरु गोबार है बिन शब्द बूझ ना पाए। गुरमति परगास हुई सच।

हर वर नार सुहावनी मैं भावै प्रभ सोई नानक शब्द मलावड़ा ना वे छोड़ा होई श्री राग महला पहला जप तप संयम साधी तीरथ कीचै वास पुन दान चंगियाईया बिन साचे क्या तास

सोह प्रभ जानी है साचो साचे नाई सा तन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग महली महल बुलाई है सो पिर रावे रंग सच सुहागन सा भली।

ये फिरा बिन गुर बूझ ना पाऊं, नाम पूली जे फिरा फिर आऊं जाऊं, पुछ हो जाए पंधाऊआ चले चाकर होई, राजन जाने अपना दर कर ठाक ना होई, नानके को रव रहया दूजा अवर ना कोई, श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए, निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन बसै,

निर्मल जल नहाए निर्मल सा क्या एक तू होर मैल भरी सब जाए रहाओ हर का मंदर सोना किया करन हार राव सस दीप अनूप जोत त्रिभवन जोत अपार हाथ पटन गढ़।

प्रगत सब जानिए जे मन राखै ठाई ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय मलाए कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठहर ना पाईनी खरे खजाने पाए आस अंदेसा दूर कर यूं मल जाए समाए सुख को मांगे सब को दुख न मांगे कोई सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए सुख दुख सम कर जानिए शब्द भेद सुख होए वेद पकारे वाचिए वाणी ब्रह्म व्यास मुन जन सेवक साधिका नाम रते गुणतास सच रते से जिन गए हौ सद बलिहारे जास चहु जुग मैले मल भरे जिन मुख नाम ना होए भगती पाए विहूणिया मुँह काला पत खोए जिन्नी नाम वसारिया अवगण मुठी रोए खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए आप पछाण घर वसै हमें तृष्णा जाए नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए श्री राग महला पहला सुन मन भूले बावरे गुर की चरणी लाग हर जप नाम त्याए तू जम डर पै दुख भाग दुख घणो दुहागनी क्यों फिर रह सुहाग भाई रे अवर नाही मैं थाऊ मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाऊ रहाउ गुरमत पत साबास तिस तिस कै संग मलाऊ तिस बिन घड़ी ना जीव।

ज्यो कलर की पीत तब लग महल ना पाई है जब लग साच ना चीत शब्द रपै घर पाई है निर्वाणी पद नीत हौ गुर पूछो अपने गुर पुछ कार कमाऊ शब्द सला

शब्द रत्ते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सद सदा हर राख है उरतार सो क्यों मनहु विसारी है सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रह फिर मरे ना दूजी वार शब्द ही ते पाई है हर नामे लगे प्यार बिन शब्द जग भूला फिर मर जन्मे वारु वार सब सलाह है आपको वडो वडेरी होए गुर बिन आप ना चीनी है कहे सुने क्या होए ना

अतुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए व्यापारी बन जा रिया आए वजह लिखाए कार कमाव है सच की लाहा मिले रजाए पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तमाए गुरमुख तोल तोलाए सी सच तराजी तोल आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल कथन कहण ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाई है बिन हर भगत प्यार नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले पाईए रतन विचार मन दी जय गुरे अपने पाईए सर्ब प्यार मुक्त पदार्थ पाईए अवगण मेटन हार पाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए पूछो हो ब्रह्मे नारद वेद ब्यास कोई रहाओ ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोई सफलो बिरख हरियावला शाम कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर भंडार सोए गुर भंडार पाईए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संची है पूरे कर्म अपार सुख दाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार भवजल बिखमंड रावणो ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवान्य मलार सतगुर पै काबू हिथा नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरै दुख लागे सुख जाए।

ता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी है पाइये गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल कमले

अंतर रव रहया बख्शे भगत भंडार रहाव। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यों अधिको त्यों सुख कणो मन तन शांत शरीर। बिन जल घड़ी ना जीवै प्रभ जाने अब पीर। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सर पर थल हरियावली एक बूंद ना पवई के कर्म मिले सो पाई है।

खवे दुध कौ खफड़ ना दे पापी मेल वशुन्या सच वडे आई दे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सो जी ना पवे गुरमुख सदा हजूर मन

गुरमत हुए ता पाईऐ सच मिलै सुख होई सच्चा नेहो ना टुटई जे सतगुर भेटै सोई ज्ञान पदार्थ पाईऐ त्रिभवन सोजी होई निर्मल नाम ना विसरै

आई मनमुख सूझी ना पवै बिछड़ चोटा खाई नानक दर कर एक है अवर ना दूजी जाय श्री राग महला पहला मनमुख भुलै भलाई।

माया परम भलाई परम भुली दोहागणी ना फिर अंक समाय रहाउ भूली फिरै दसंतरी भूली ग्रह तज जाय भूली डूंगर थल चढ़ै पर मैं मन डोलाय तुरह विछुनी क्यों मिलै गर्भ मुठी बिल लाय बिछड़िया गुरमेल सी हर रस नाम प्यार साच सहज सोभा कणी हर गुण नाम आधार ज्यों पावे त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुली है भेखी बहुत अभमान तीरथ नाता क्या करे मन मह मैल गुमान गुर बिन किन समझाई है मन राजा सुनतान प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत्व विचार सा तान्या।

का चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया हूं मैं विचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए कर्म

मैं तुझ बिन अवर न पावई, तू पावह सुख होए रहाउ। नाम सलाही रंग सिउ, गुर कै शब्द संतोख। जो दिसै सो चलसी,

तड़ी गुरबिन बूझ ना होए नाम वडाई जे मिले सच रपे पत होए जो तुद पावे से पले खोटा खरा ना कोई गुर सरनाई छुट्टी है मनमुख खोटी रास अष्ट धात पातशाह की करिए शब्द विगास आपे परखे पारखू पवे खजाने रास तेरी कीमत ना पवे सब डिठी ठोक बजाए कहने हाथ ना लबई सच टिके पत पाए गुरमत तू सलाहना होर कीमत कहन ना जाए जित तन नाम ना पावई।

पूरा सतगुर रस मिलै गुर तारे हर नाउ रहाउ चलना चलना जे करी जाना चलन हार जो आया सो चल सी अमर सो गुर करतार पी सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार डर कर महला सोहने पक्के कोट हजार हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लख अपार किस ही नाल ना चलिया खप खप मुए असार सोयना रूपा संती है माल जाल जंजाल सब जग मह दो ही फेरी है बिन नामे सिरकाल पिंड पड़े जियो खेल सी बद फैली क्या हाल पुत्ता देख विगसी है नारी सेज पतार चोआ चंदन लाई है कापड़ रूप शिंगार खेहू खेर लाई है छोड़ चले घर बार महर मलूक कहाई है राजा राव के खान चौधरी राव सदाई है जल बलिए अभमान मन मुख नाम वसारिया ज्यों डब ददा कान हो मैं कर कर जाए सी जो आया जग माहे सब जग काजल कोठड़ी तन मन दे सुवाहे गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक तरिये सच नाम सिर छाह पातशाह मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन वेसाह मन मुख भोजन पच मोए गुरमुख तरे अथाह श्री राग महला पहला कर दूजा मकाम कर कर बैसना

तिसन हो आखी है जिस शेष ना हो वी लेख असमान धरती चल सी मुकाम ओही एक दिन रव चल निस सस चल।

अष्टपदियां। श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, गुरमुख कृपा करे भगत की जय, बिन गुर भगत ना होए, आपे आप मलाए बूझे, ता निर्मल होवे।

बिन सतगुरु को मग ना जाने अंधे ठहोर ना काई। हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। पे अड़ै जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया। अन दिन भगत करह दिन राती हम मैं मोह चुकाया। जिस स्यों राता तै सो हुए सच्चे सच समाया। आपे नदर करे पाहु लाए गुर शब्दी बीचार। सतगुर सेवे सहज उपजे हम मैं तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै सच रखिया उरतार। प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाई। नाम निधान हर मन वसै हम मैं दुख सब जाई। सतगुर शब्द सुनाया हम सद बलिहारै जाऊं। अपने मन चित कह कहाई बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत वशल सुख दाता कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सो

रहाउ। बिन सतगुर प्रतीत न आवई, नाम न लागो पाउ, सुपनह सुख न पावी, दुख मह सवै समाय। जे हर हर कीचै बहुत लोचियै, किरत न मेटिया जाय। हर का भाणा भगति मन्या, से भगत पए दर थाय। गुर शब्द दड़ावै रंग स्यों, बिन किरपा लया न जाय। जे सौ अमृत नीरियै, पी बिख फल लागै ताय। से जन सच्चे निर्मले, जिन सतगुर नाल प्यार। सतगुर का भाणा कमावंदे, बिख होमै तज बेकार। मन हठ कितै उपाय ना छूटियै, सिमरत शास्त्र सोधो हो जाय। मिल संगत साधु उभरे, गुर का शब्द कमाए। हर का नाम

गुर प्रसादी पाईए कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावड़ा सच चुगै गुर पाए। हर

गुर कै भाण जे चल है ता अन दिन राच है हर नाई रहाउ। पंखी बिरख सुहावड़े उड़ है चहो दिस जाहे, जेता उड़ है दुख घणे नित दाज है तै बिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचे सहज सुपाहे। साखा तीन नवारिया एक शब्द लिव लाए, अमृत फल हर एक है आपे देख आए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना शाम, तिन्ना पास ना बैसिए ओना घर ना ग्राम। कटिए तै नित जालिए ओना शब्द ना नाम, हुक्मे कर्म कमावणे पए किरत फराम। हुक्मे दर्शन देखना जह भी जह तह जाऊं, हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाऊं। हुक्म ना जान है बपड़े भूले फिर है गवार, मन हट कर्म कम

उदार सब नदरी कर्म कमावंदे नदरी बाहर ना कोए जैसी नदर कर देखे सच्चा कैसा ही को होए नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम त्याई है मनमुख बूझ ना पाई गुरमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आए सहजे ही सुख पाई है।

कह पाई। दैत पुत कर्म धर्म किस संजम ना पड़े, दूजा भाव ना जाने। सतगुर भेटे निर्मल हुआ, अन दिन नाम बखाने। एको पढ़े एको ना बूझे, दूजा अवर ना जाने। खट दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम पलाई,

पंडित पर पर वाद बखान है बिन गुर परम पलाई लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाई जा नाउ चेतै ता गत पाई जा सतगुर मेल मलाई सत संगत मह नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुपाई मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाई सत बलिहारी गुर अपने बिटो जे हर सीती चित लाई सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर सीती रंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर

पाए, पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके, भेखी परम पलाय, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाय। भाई रे गुर बिन सहज ना होए, शब्द ही ते सहज उपजे, हर पाया सच सोए रहाओ, सहजे गावया थाई पवे, बिन सहजे कथनी बाद, सहजे ही भगत उपजे, सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाद लगाई, सहजे ही गुण उचरे,

त्रै गुण भरम पलाय, पढ़िया गुणिया क्या कथिय, या मुंडो कुत्था जाय। चौथे पद में सहज है,

सहज मलाईसी शब्द मलावा हुई। बिन सहज सब अंध है माया मोह गुबार, सहज ही सूझी पई सच्चा शब्द अपार। आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार, सहजे अधिष्ट पछाणिय निरपौ।

सद निर्मल सहजे नाम समाते गुरमुख अमृत बाणी बोलह सब आत्म राम पछाणी एको सेवन एक आराध है।

पति उपजय सच्चे सच्चा नाम। जिन्नी हऊ मैं मार पछाणिया हऊ तिन बलिहारे जाऊं। मन मुख सच ना जा।

राम पछाणिया गुरमति निज घर वास सच वेखण सच बोलना तन मन सच्चा हुए सच्ची साखी उपदेश सच

करे ना किछ होवै काज कित आवै उस पार ब्रह्म ता निश्चल होवै राज जां को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रिस्त कटम पलिटिया।

ब्रह्म तन मन शीतल होए काम क्रोध मोहे वस किया किरपन लोभ प्यार चारे किलविख उन अग किए हुआ असुर संघार।

मुख सिमरत तरिया शास्त्र सिमरत वेद चार मोखागर बिचरी तपे तपी सर जोगिया तीरथ गमन करे खट कर्मा ते दुगणे पूजा करता नाए रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलख सिखदारिया रस भोगण बिसथार बाग सुहावे सोहणे चलै हुक्म अफार रंग तमाशे बहु विधि चाए लग रहिया चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाड अचारवंत सोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाइया साजन संग परीत लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत चेतना आयो पार ब्रह्म ता खड़ रसातल दीत काया रोग ना छिदर किस ना किस काड़ा सोग मृतना आवी चित तिस अहनस भोगै भोग सब किश कीतो ने अपना जिये ना संक धरिया चेतना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस भरिया कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवै साधु संग ज्यो ज्यो ओह वधाई है त्यों त्यों हर स्यों रंग दोहां स्नेहां का खसम आप

आया सिरे सिर तंदे लाया वेख कीता अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो प्रगट पहार है जापदा सब नावै नो प्रतापदा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कहो बल जाइए जित मिले परम गत पाइए सुर नार मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एहो जगत परम पलाया आपहु तुद खवाया प्रताप लगा दोहागणी भाग जिन्ना के नाए जियो दोहागणी क्या निशानिया खसम हो खुथियां फिर है निमानिया मैले वेस तिन्ना कामणी दुखी रहन विहाए जियो सुहागणी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कह अपनी आपे लए मलाए जियो हुक्म जिन्ना नु मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सहिया से सुहागणी जिन सह नाल प्यार जियो जिन्ना पाणे का रस आया तिन विचों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सब सह लए मलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचों अहंकरण चुकाया दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय समाणिया सुख सेवा अंदर रखे है अपनी नदर कर है निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिलिया नाम वखाणिए सतगुर बाज ना पायो सब थकी कर्म कमाए जियो हौ सतगुर बिटहु कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लए रलाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करतै आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो सब

मेरा गुण अवगन ना बिचारिया, रब अपना बिरद संवारिया, कंठ लाए कह रखियोन, लगे ना तत्ती वाऊ जियो, मैं मन तन प्रभु ते आया, जिए इच्छे अड़ा फल पाया, आहा पातशाह सिर कसम तू, जप नानक जीवै नाऊ जियो, तुदे आपे आप उपाया, दूजा खेल कर दिखलाया, सब सचो सच वर्तदा, जिस पावै तिसै बुझाई जियो, गुर प्रसादी पाया, तिथै माया मोह चकाया, कृपा करके अपनी आपे लए समाए जियो, गोपी नै गोवालिया, तुदे आपे गोए उठा लिया, हुक्मी भांडे साजिया, तू आपे भन सवार जियो, जिन सतगुर स्यों चित लाया, तिनी दूजा पाहु चुकाया, निर्मल जोत तिन प्राणिया, ओए चले जन्म सवार जियो, तेरिया सदा सदा चंगे आईया, मैं रात देह बड़े आईया, अन मंगिया दान देवना, कहो नानक सच संभाल जियो, श्री राग महला पंजवा, पै पाए मनाई सोए जियो, सतगुर पुरख मलाया, तिस जेवड़ अवन ना कोए जियो, रहाओ गुसाई मेहंडा इठड़ा, अम अबे थाम मिठड़ा, भैन भाई सब सजना, तुद जेहा ना ही कोए जियो, तेरा हुक्मे सामने आया, मैं सत का हल जो आया, नाऊ बीजन लगा आस कर, हर बोहल बख्श जमाए जियो, हाँ गुर मिले एक पछाण दा, दुईया कागल चेतना जान दा, हर इक तै कारे लायोन, ज्यो पावे तिवें नभाए जियो, तुसी भोगे हो पुंचो हो पाई हो, गुर दी बाण कवाए पैनाइयो, हाँ हो आ माहर पिंड दा, बाने आंदे पांज शरीक जियो, हाँ आया सामे ते हंडिया, पांज किरसान मुजेरे मेहंदिया, कन कोई कड ना हंगई, नानक बुट्टा को गगराऊं जियो, हों वारी कुमा जामदा, एक साहा तुद ते आएदा, उजड़ थे हो वसायो, हों तुद विट हो कुर्बान जियो, हर इत्थै नित ते आएदा, मन चिंदी सो फल पाएदा, सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो, मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा, नौ निद नाम निदान हर, मैं पल्ले बद्दा शिक जियो, मैं सुखी हूँ सुख पाया, गुरे अंतर शब्द वसाया, सतगुर पुरख विखा लिया, मस्तक तर कै हाथ जियो, मैं बद्दी सच धर्म साल है, गुर सिखा लहंदा पाल कै,

मन दड़ाया, सब मुक्त हुआ सह सारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो, सब सिष्ट सेवे दिन रात जियो, दे कान सुन हो अरदास जियो, फूक बजाए सब डिठियां, तुस आपे नयन छडाए जियो, हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा, पै कोई न किसै रयान दा, सब सुखाली बुठियां, इहो हुआ हले मीराज जियो।

आया सोई। गुरमुख नाम संभाल तू वणजारिया मित्रा, तेरा दरगाह बेली होए। गुरमुख नाम संभाल प्राणी, अंते हुए सखाई। एहो मोह माया तेरा संग ना चाले, झूठी प्रीत लगाई। सगली रैन गुदरी अंधियारी, सेव सतगुर चानण होए। कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, दिन नेड़े आया सोए। लिखिया आया गोविंद का वणजारिया मित्रा, उठ चले कमाणा साथ। एक रत्ती बिनवना देवनी वणजारिया मित्रा, ओनी तकड़े पाए हाथ। लिखिया आया पकड़ चलाया, मनमुख सदा दुहेले। जिन्नी पूरा सतगुर सेविया, से दरगाह सदा सुहेले। कर्म धरती शरीर जोग अंतर, जो बो ऐसो खात। कहो नानक भगत सोहै दरबारे, मनमुख सदा पवांत। श्री राग महला चौथा घर दूजा संत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मुंद यानी पेयड़ क्यों कर हर दर्शन पिखे, हर हर अपनी कृपा करे। गुरमुख सहोरड़ कम सिखे, सहोरड़ कम सिखे गुरमुख। हर हर सदा ते आए, सहिया विच फिरै सुहेली। हर दरगाह बहां लड़ाए, लेखा धर्म राय की बाकी। जप हर हर नाम किरखे, मुंद यानी पेयड़ गुरमुख हर दर्शन दिखे। व्याह हुआ मेरे बाबला, गुरमुखे हर पाया। अज्ञान अंधेरा कटिया, गुरज्ञान प्रचंड बलाया। बलिया गुरज्ञान अंधेरा पिनसिया, हर रतन पदार्थ लादा। हऊ मैं रोग गया दुख लाथा, आप आपै गुरमत खादा। अकाल मूर्त वर पाया अबनासी, ना कदे मरे ना जाया। व्याह हुआ मेरे बाबला, गुरमुखे हर पाया। हर सत सते मेरे बाबला, हर जन मिल जन सुहंदी। एव कड़ै हर जप सुहेली, विच सहुरड़ै खरी सुहंदी। सहुरड़ै विच खरी सोहंदी, जिन पेव कड़ै नाम संभालिया। सब सफल्यो जन्म तिन्ना दा गुरमुख, जिन्ना मन जिन पासा ढालिया। हर संत जना मिल कारज सोया, वर पाया पुरखे आनंदी। हर सत सत मेरे बाबला, हर जन मेल जन सुहंदी। हर प्रभ मेरे बाबला, हर देव हो नान मैं दाजो। हर कपड़ो हर सोभा देव हो, जित सवरै मेरा काजो। हर हर भगती काज सुहेला, गुर सत गुर दान दवाया। खंड वर पंड हर सोभा होई, एहो दान नार लैर लाया। होर मनमुख दाज जे रख दखल है, सो कूड़ अहंकार कच पाजो। हर प्रभ मेरे बाबला, हर देव हो दान मैं दाजो। हर राम राम मेरे बाबला, फिर मिल तन वेल वदंदी। हर जुगा जुगो जुग जुगा जुगो, सद पीढ़ी गुरु चलंदी। जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की, जिन्नी गुरमुख नाम ते आया। हर पुरख ना कब ही बिनसै जावे, नित देवै चढ़ै सो आया। नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सोहंदी। हर राम राम मेरे बाबला, फिर मिल तन वेल वदंदी। श्री राग महला पंजवा संत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन प्यारिया जियो मित्रा, गोविंद नाम संभाले। मन प्यारिया जी मित्रा, हर निबह तेरे नाले। संग सहाय हर नाम त्याय, बिरथा कोई ना जाए। मन चिंदे से फल पावे, चरण कमल चित लाए। जल थर पूर रहया बनवारी, घट घट नदर निहाले। नानक सिख दे मन प्रीतम, साध संग भ्रम जाले। मन प्यारिया जी।

तरा हर बिन झूठ पसारे मन प्यारिया जियो मित्रा दिख सागर संसारी चरण कमल कर बोहित करते सहसा दुख न व्यापे गुरपुरा भेटै वड भागी आठ पहर प्रभ जापे आदि जुगादी सेवक स्वामी भगता नाम आधारी नानक सिख दे मन प्रीतम बिनहार झूठ पसारी मन प्यारिया जियो मित्रा हर लदे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा हर दर निहचल मल्ली।

दुख मटाया, चित्र गुप्त का कागद फारिया, जमदूता कछु ना चली, नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लगे खेप सवली, मन प्यारिया जियो मित्रा, कर संता संग निवासो, मन प्यारिया जियो मित्रा, हर नाम जपत परगासो, सिमर स्वामी सुख गामी, इच सगली पुनिया, पुरबे कमाए श्री रंग पाए, हर मिले श्री वचुनिया, अंतर बाहर सरबत रविया, मन उपजिया विश्वासो, नानक सिख दे मन प्रीतम, कर संता संग निवासो, मन प्यारिया जियो मित्रा, हर प्रेम भगत मन लीना, मन प्यारिया जियो मित्रा, हर जल मेल जीवे मीना, हर पी आगाने अमृत बाने।

मन वांछत फल देत है स्वामी, जी की बिरथा सारी। नाथ के नाते सब कै साथे, जप जुए जन्म ना हारी है। नानक की बेनंती प्रभ पह, कृपा कर पव जल तारी है। दखना धूड़ी मजन साधखे, साई थिए कृपाल। लदे हब्बे थोकड़े, नानक हर तन माल। संत सुंदर स्वामी ता

आप मोहियो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए रिझाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोहया जियो हर कंठ लग सोहया दोख सब जोहया भगत लखियण कर वस पए मन सर्ब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुड़ ना माया होया कर गहलीने नानक प्रभ प्यारी संसार सागर नहीं।

नहि मरी। सतगुर दयाल कृपाल भेट तहरे, काम क्रोध लोभ मारिया। कथन न जाए अकथ स्वामी, सदकै जाए नानक वारिया। श्री राग महला चौथा वणजारा, एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद। हर हर उत्तम नाम है, जिन सिरिया सब कोए जियो। हर जी सबे प्रतपालदा, घट घट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है, तिस बिन अवर ना कोए। जो मोहे माया चित लाइंदे, से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम त्याया, हर अंत सखाई होए। मैं हर बिन अवर ना कोए। हर गुर सरनाई पाईऐ बणजारिया मित्रा, वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना विण पाईआ, हर किनै न पाया नाउ। विच हऊं मैं कर्म कमावंदे, ज्यों वेसवा पुत निनाउ। पिता जात तां होईऐ, गुर तुठा करे पसाउ। वड भागी गुर पाया, हर एनस लगा पाउ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया, हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ, गुर पूरे नाम दरड़ाया। हर मिलिया हर प्रभ नाओ रहाओ। जब लग जोबन सास है, तब लग नाम त्याए। चलदिया नाल हर चल सी, हर अंते लए छडाए। हों बलिहारी तिनको, जिन हर मन उठायाए। जिन्नी हर हर नाम ना चेत्यो, से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, जन नानक नाम त्याए। मन हर हर प्रीत लगाए, वड भागी गुर पाया। गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आप उपाएंदा, हर आपे देवैली। हर आपे भरम भलाएंदा, हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है, से विरले के ई के। हों बलिहारी तिनको, जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया, मन हर हर उठड़ाहे। मन हर हर जपन करे, हर गुर सरनाई भज पौ जिंदू। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ। घट घट रमैया मन वसै, क्यों पाईऐ कित भत। गुरपूरा सतगुर भेटीऐ, हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है, हर नामे ते गत मत। मैं हर हर नाम वसाहु है, हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम त्याया, रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्याहु हो हर प्रभ सत, गुर बचनी हर प्रभ जानिया। सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ। जिनको पूर्व लिखिया, से आए मिले गुर पास। सेवक पाए वणजारिया मित्रा, गुर हर हर नाम परगास। तन तन वणजवा पारिया, जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले, ते आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया, जिन्ना आप तुठा गुण तास। हर त्याव हो सास ग्रास, मन प्रीत लगी तिन्ना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रह रास रहाओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग की वार महला चौथा। सलोका नाल सलोक महला तीजा, रागां विच श्री राग है। जे सच तरे प्यार, सदा हर सच मन वसै। निःचल मत अपार, रतन अमोलक पाया। गुर का शब्द बीचार, जेवा सच्ची मन सच्चा। सच्चा शरीर अकार, नानक सच्चै सतगुर सेवै। सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब तात है, जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया, वेखण सुनण ना होए। सह देखे बिन प्रीत ना उपजै, अंधा क्या करे। नानक जिन अखी लीतियां, सोई सच्चा दे पौड़ी।
हर इको करता एक इको दीवान हर हर इक सैदा है अमर इको हर चित धर हर तिस बिन कोई नाही डर भ्रम भव दूर कर हर तिसै नो सलाहे जे तुद रखै बाहर कर हर जिसनो होए दयाल सो हर जप भव बिकम तर सलोक महला पहला दाती साहिब संदियां क्या चलै तिस नाल इक जा गंदे नाल हन इक ना सुतिया दे उठाल महला पहला सिदक सबूरी साधका सबर

आप न्याओ सच तां डरिया के तर जिन्ना नानक सच पछाणिया से सच रले तर। सलोक महला तीजा कलम जलो सण मसवाणिया कागद पी जल जाओ लिखण वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ नानक पूर्व लिखिया कमावना अवर ना करना जाए महला तीजा होर कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नावे को थिर नहीं पढ़ पढ़ हुए खुआर पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है जान्याओ है धर्म का हर की वड्याई वड्डी है जा फल है जी का हर की वड्याई वड्डी है जाना सुनी कहया चुगल का हर की वड्याई वड्डी है अपुछिया दान देव का। श्लोक महला तीजा हौ हौ करती सब मुई संपो किसै ना नाल दूजे पाए दुख पाया

तू आपे कमल अलिप्त है, सह थां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा, एक निमख करी कर ख्याल, हर तुदहो बाहर किस नहीं, गुर शब्दी वेख निहाल। सलोक महला तीजा, हुक्म न जाने बहुतारो है, अंदर धोखा नींद ना सोवे, जे तन खसम चले रजाई, दर कर सुबा महल बुलाई, नानक करमी एह मत पाई, गुर प्रसादी सच समाई। महला तीजा, मनमुख नाम विहूनिया, रंग कुसुम्बा देख ना भुल, इसका रंग दिन थोड़िया, सोचा इसदा मुल। दूजै लगे पच मोए, मूर्ख अंध गवार, बिष्टा अंदर कीट से, पै पचह वारो वार, नानक नाम रते से रंगले।

आपे रिजक संबाहया एक वल छल करके खाम दे मुह कूड कुसत तिनी ढाया तुद आपे पावै सुह करह तुद ओतै कम ओए लाया इकना सच बुझायोन तिना अतुट भंडार दिवाया हर चेत खाहे तिना सफल है अचेता हाथ तड़ाया। सलोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित बेद बखान है माया मोह सवाई दूजे पाए हर नाम वसारिया मन मूर्ख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कबहू ना चेतै जो देंदा रिजक संभाए जम का पाहा गलहू ना कटिया फिर फिर आवे जाए मनमुख किशु ना सूजे अंधोले पूर्व लिखिया कमाए पूरे भाग सतगुर मिले सुख दाता नाम वसै मन आए सुख मान है सुख पैनना सुखे सुख वेहाय नानक सो नाओ मनो ना विसारी है जित दर सच्चा सोभा पाए। महला तीजा। सतगुर सेव सुख पाया सच नाम गुण तास गुरमति आप पछाणिया राम नाम परगास सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास जियो पिंड सब तिसका सिफत करे अरदास सच्चा शब्द सलाहना सुखे सुख निवास जप तप संयम मने माहि बिन नावै त्रिग जीवास गुरमति नाव पाइयै मनमुख मोहि विनाश ज्यों भावै त्यों राख तू नानक तेरा दास पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब नारास सब तुदै पासु मंग दे नित कर अरदास जिस तू देहें तिस सब किश मिलै।

कर्म परापत होए, सत्य रत्ते गुर शब्द सियो, तिन सच्ची सदा लिव होए, नानक जिसनो मेले ना विछड़े, सहज समावै सोई महला तीजा, सो भगौती जो भगवंत जाने, गुर प्रसादी आप पछाणे, धावत राखै इकत घर आणे, जीवत मरे हर नाम बखाणे, ऐसा भगौती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए महला तीजा, अंतर कपट भगौती कहाए, पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए, पर निंदा करे अंतर मल लाए, बाहर मल धोवै मन की झूठ ना जाए, सत संग

पूर्व लिखिया सु मिटना न जाए, नानक बिन सतगुर सेवे मोख न पाए। पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से कर न सुवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त अगाही। सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन को हुआ कृपाल हर से।

रे नार गर्भ कुंडल जब आसत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मादना एहनस एक अज्ञान सोनागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडले आया तौ नरहर मनहु बिसारिया फिर पछताव हैगा मूड़िया तू कमन कमत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरै अनरादा रहाओ बाल बनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे प्यापै रस मिसमेद अमृत बिख चाखी तौ पंच प्रगट संतापै जप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम न ना अरादया उछलिया काम काल मत लागी तौ आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन्मत काम महाबिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख इहो मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तूले तौ भग मुख जन्म बगोया कुंडर केस कुसम ते धौले सपत पाताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल लाठी ता काम पव समाधानी ता ते बिखै भई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तौ पाछै पछताना निकुट्टी दे देख तुन उपजै मान करत नहीं बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कशु ना सूझै थाका तेज उड्या मन पंखी तारे आंगन ना सुखाई देनी कह सुनो रे भगत हो मरन मुक्त किन पाई श्री राग तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक

रविदास समदल समझावे को। राग माज चौपदी कर पहला महला चौथा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद, हर हर नाम मैं हर मन पाया, बड़ भागी हर नाम ते आया, गुरपुरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो, मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले, गुरपुरे हर नाम दड़ाया, हर निश्चल हर तन पल्ले जियो, हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मलावे मेरे प्राण जीवाया।

करहु प्रित पाला, मेरा मात पिता गुर सत गुर पूरा, गुर जल मेल कमल विगसै जियो, मैं बिन गुर देखे नींद ना आवै, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावै, हर हर दया करहु गुर मेलो, जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए, मिल सत संगत हर गुण गाए, जग भौजल

निर्मल हुआ, हर मार्ग चलत भ्रम सगला खोया, नाम निधान सतगुरु सुनाया, मिट गए सगले रोगा जीव, अंतर बाहर तेरी बाणी, तुद आप कथी तै आप बखानी, गुर कहया सब एको एको, अवर ना कोई होएगा जीव, अमृत रस हर गुर ते पिया, हर पैनन नाम भोजन थिया, नाम रंग नाम चोज तमाशे, नाउ नानक कीने भोगा जीव, माज महला पंजवा, सगल संतन पह वस्त एक मांगो, करूं बिनंती मान त्यागो, वार वार जाई लख वरिया, देहो संतन की तू राजीओ, तुम दाते तुम पुरख बधाते,

कीता, आत्मगर बिखम तिना ही जीता। तुम दाते तुम पुरख बधाते, तुद जेवड़ अवर ना सूरा जियो। रेन संतन की मेरा मुख लागी, दुर्मत बिनसी कुबुद अपागी। सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिन से पूरा जियो। माज महला पंजवां, विसर नाही ए बड़दाते। कर किरपा भगतन संग राते, दिन सरहण जियो तुद त्याई। एहो दान मोहे करना जियो, माटी अंधी सुरत समाई। सब किश दिया पली आ जाई, आनंद बनोद चोज तमाशे। तुद भावै सो होना जियो, जिस दा दिता सब किश लैना। शक्ति ही अमृत भोजन खाना, सेज सुखाली सीतल पवना। सहज केल रंग करना जियो, सा बुद्ध दीजै जित विसरह नाही। सा मत दीजै जित तुद त्याई, सास सास तेरे गुण गावा। ओट नानक गुर चरना जियो, माज महला पंजवां। सिफत सलाहन तेरा हुक्म रजाई, सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई। सोई जप जो प्रभ जियो पावै, भाणे पूर ज्ञाना जियो। अमृत नाम तेरा सोई गावै, जो साहिब तेरा मन पावै। तू संतन का संत तुम्हारी, संत साहिब मन माना जियो। तू संतन की करह प्रतपाला, संत खेल है तुम संग गोपाला।

जो तुद मन पानी इनकै संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त अगाना जीयो माज महला पंज।

आस प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो। यो बारक पी खीर अगावे ज्यो निर्धन धन देख सुख पावे। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यो हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यो अंधियार है दीपक परगासा परता चितवत पूर्ण आसा। मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा त्यो हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गजाया। हर हमरा हम हर के दासी नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बढ़ारन हरिया। अवर साध चख सगले देखे मन हर रस सब

अपरापत जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो जिन हर रस पाया सो तृप्त आगाना जिन हर साध पाया सो नाही डुलाना जिसह परापत हर हर नामा जिस मस्तक पागी था जियो हर एक सहाथ आया वरसाने बहुतेरे किस लग मुक्त भय कनेरे नाम निदाना गुरमुख पाई है कहो नानक विरली दीठा जियो माज महला पंजवा निद सिद रिद हर हर हर मेरे जन्म पदार्थ गहर गंभीर है।

तिस बलिहारी जिन रसना पणिया वार वार जाई तिस विटोह जो मन तन तुद आराधे जीओ तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले नैन निहाली तिस पुरख दयाले मन देवा तिसे अपने साजन जिन गुर मेल सो प्रभला दे जीओ सेवड भागी जिन तुम जाने सब कै मदे अलिपत निर्बाणी साध कै संग उन पौ जल तरिया सगल दूत उन साधे जी।

तेने तर परवान जिन्नी दर्शन पेखा से कर भले जिन्नी हर जस लेखा से चरण सहावे जो हर मार्ग चले हौ बाल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारी साध संग किन माही उदारी किल बिख काट हुआ मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो दोए कर जोड़ एक बिनो करीजै कर कृपा डुबदा पत्थर लीजै नानक कहो प्रभ भय कृपाला प्रभ नानक मन पाणा जियो।

मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो सुख भया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम बखाना जल थल नीर भरे सरस भर बिरता कोई ना जाए जियो दया धारी तिन सिरजनहारी जी जंत सगले प्रतपारी मेहरवान किरपाल दयाला सगले तृप्त अगाए जियो वन त्रिण त्रि पवन की तुन हरिया करनहार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसै आराधी मन की आस पुजाए जियो माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा

मेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए, सब किस कीता तेरा हुवै, नाही किस असाड़ा जियो, नाम त्याए महा सुख।

माज महला पंजवा जी प्राण प्रभ मन है अधारा भगत जीव है गुण गाए अपारा गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जीओ मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मटावे हास मनोरथ पूरन होवे टीटत गुर दरसाया जीओ अगम अगोचर किस मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्यावे है ज्ञानी खुदी मिटी चूका पुलावा गुरमन ही मह प्रगटाया जीओ आनंद मंगल कल्याण निदाना सुख सहज हर नाम बखाना कोई कृपाल स्वामी अपना नाव नानक कर मह आया जीओ माज महला पंजवा सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी तू प्रीतम ठाकुर अत पारी तुमरे कर्तव तुम ही जान हो तुमरी ओट गोपाला जीओ गुण गावत मन हरिया होवे कथा सुनत मल सगली खोवे।

तिह गुर प्रसाद मन तारू, तुमरी कृपा ते होए परगासा, सर्ब मया प्रतपाला जीव, सत सत सत प्रभ सोई।

मिल गावह गुण अगमय पारी, गावत सुनत सबे ही मुक्ति, सो त्याय जिन हम किए जियो, जन्म जन्म के किल बिख जावह।

आई। कर कृपा प्रभ भक्ति लाभ हो, सच नानक अमृत पिए जियो। माज महला पंजवां, पये कृपाल गोविंद गुसाई। मेघ वरसै सबनी थाई, दीन दयाल सदा कृपाला। ठांड पाई करतारी जियो, अपने जी जंत प्रित पारी। ज्यों बारक माता संभारी, दुख भंजन सुख सागर स्वामी। देत सगल आहारी जियो, जल थल पूर रहया मेहरवाना। सद बलिहार जाइय कुर्बाना, रैन दिन सतिस सदा त्यानी। जे खिन मह सगल उदारे जियो, राख लिए सगले प्रभ आपे। उतर गए सब सोग संतापे, नाम जपत मन तन हरियावल। प्रभ नानक नदर निहारे जियो। माज महला पंजवां, जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे।

सुख सहज धुन उपजी साधु संग निवासा जीओ लागी प्रीत ना तू कै मूले हर अंतर बाहर रहया पर पूरे सिमर सिमर सिमर गुण गावा काटी जम की फासा जीओ अमृत वरख है अनहद बाणी मन तन अंतर शांत समाणी तृप्त अगाए रहे जन तेरे सतगुर किया दिलासा जीओ जिसका साह तिस ते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मलाया आमन जान रहे वड भागी नानक पूर्ण आसा जीओ माज महला पंजवा मीह पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी वसाया गया कलेश पया सुख साचा हर हर नाम संभाली जीओ जिसके से तिन्ही प्रित पारी पार ब्रह्म प्रभ पये रखवारी सुनी बेनंती ठाकुर मेरे पूर्ण होई काली जीओ सर्ब जिया कहो देवनहारा गुर प्रसादी नदर निहारा जल थल महियल।

सगल मनोरथ पूरन होए, कदे ना होए दुखाला जीओ। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया, जल थल महियल दह दिस वरसाया। शांत भई बुझी सब तृष्णा, आनंद भया सब ठाई जीओ। सुख दाता दुख भंजन हारा।

तुद त्याई जीओ माज महला पंजवा सभी सुख पए प्रभ तुठे गुरपूरे के चरण मन उठे सहज समाध लगी लिव्य अंतर सोर

गुर के चरण वसे मन माही, अंगीकार किया तिन करतै, दुख का डेरा टाहया जीओ, मन पन वसया सच्चा सोई, बिखड़ा थान ना दिसै कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन हुए, एको स्वामी आहया जीओ, जो किछ करे सो आपे आपै, बुद्ध सियाणप किशु ना जापै, अपनिया संतां नू आप सहाई, प्रभ भरम भलावा लाहया जीओ, चरण कमल जन का आधारु, आठ पहर राम नाम वापारु, सहज आनंद गावह गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्ब समाहया जीओ, माज महला पंजवा, सो सच मंदर जित सच त्याई है, सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है, सा धरत सुहावी जित वस है हर जन, सच्चे नाम विटहो कुरबाणो जीओ, सच वडाई कीम न पाई, कुदरत कर्म न कहना जाई, त्याए त्याए जीव है जन तेरे, सच शब्द मन माणो जीओ, सच सलाहन वड भागी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है।

सुई नानक सच तिहाई साधही अंतर जामी जानो जीओ माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूरत सिमरत पल वंज है जीवन।

त्रिजय सागर कटिय जम की फासा जीव चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप अलख अपेवा काम क्रोध किल बिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जीव पूर्ण भाग भये जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वसया जिस अंतर परवान गिरस्त उदासा जीव माज महला पंजवा सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा भगती प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपिया।

ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर प्रभ सबना गल्ला जोगा जीओ छिन मह थाप उथापन हारा आप एकंती आप पसारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन दिथे लहन विजोगा जीओ अंचल लाए सब शिष्ट तराई अपना नाओ आप जपाई गुर गोहित पाया।

है आन दिन नित जागी बाहा पकड़ तिस स्वामी मेले जिस कह मस्तक लहना चरण कमल भगता मन बुठे बिन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित बांछ है नाम सच्चे का गहना उठत बैठत हर हर गाई है जिस सिमरत वार निह चल पाई है नानक कहो प्रभ होए दयाला तेरा कीता सहना राग माज अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

सुहावनिया मनमुख भूला ठौर ना पाई जमदर बद्दा चोटा खाई बिन नावे को संग ना साथी मुक्ते नाम त्यावनिया सागत कूड़े सच ना पावे

सब सुन्नी रोवै ताही अवगुण मुठी महल ना पाई अवगण गुण बखशावणिया पेई अड़ै जिन जाता प्यारा गुरमुख बूझै तत बीचारा आमन जाना ठाक रहाई सच्चै नाम समावणिया गुरमुख बूझै कथ कावै सच्चे ठाकुर साचो पावै नानक सच कह बेनंती सच मिलै गुण गावणिया माज महला।

माया मोह चुकावणिया हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बनिहारनिया गुरमती परगास हो आजी अन दिन हर गुण गावणिया रहाऊ।

भगत करावणिया इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साथ मिले ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणी।

निर्मल नाम ध्यानिया जीवन मरना सब तुदै ताई जिस बख्शे तिस दे वडियाई नानक नाम ध्याए सदा तू जमन मरन सवारनिया माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा बिन तकड़ी तो

तू आपे सच बुझा बनिया जिन सच जाता से सच समाणी हर गुण गावे सच वखाणी नानक नाम रते बैरागी

सदा नाली गुर प्रसादी को नदर निहाली मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा कर किरपा आप मनावणिया माया मोहे एहो जग सुत्ता।

लख चौरासी रिजक आप अपड़ाई नानक नाम त्याय सच राती जो तिस भावै सो कार करावणिया माज महला तीजा अंदर हीरा लाल बनाया गुर कै शब्द परख परखाया जिन सच पल्लै सच बखान है सच कसवट्टी लावणिया हो वारी जी ओ वारी गुर की बाणी मन वसावणिया अंजन माहि निरंजन पाया ज्योति ज्योत मलावणिया रहाव किस काया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अति अगम अपारा गुरमुख हो ऐसोई पाई आपे बख्श मलावणिया मेरा ठाकुर सच दृढ़ाई गुर प्रसादी सच चित लाई सचो सच वरतै सबनी थाई सच्चे सच समावणिया वे परवाह सच मेरा प्यारा किल विख अवगुण काटन हारा प्रेम प्रीत सदा त्याई भै भाए भगत दृढ़ावणिया तेरी भगत सच्ची जे

न कोई, खुद आपे सिरजी आपे गोई, तू आपे ही कड़ भन सवार है, नानक नाम सुहावणिया। माज महला तीजा, सब काटे आपे भोगण हारा, अलख वरतै अगम अपारा, गुर कै शब्द मेरा हर प्रभ त्याई है, सहजे सच समावणिया। हों वारी जीओ वारी, गुर शब्द मन वसावणिया, शब्द सूजै ता मन स्यों लूजै,

मन वसाई आंदिन सदा रह भय अंदर भय मार भरम चुकावणिया भरम चुकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजी गावणिया सिमरत शास्त्र वेद बखाणे भरमे भूला।

गुर कृपा ते हर निरपौ ध्याया बिख पौ जल शब्द तरावणिया रहाउ मन मुख मुग्ध करह चतुराई नाता धूता थाए ना पाई जिहा आया तेहा जासी कर अवगण पछो तावणिया मन मुख अंधे किशो ना सूझै मरन लखाए आए नहीं बूझै मन मुख कर्म करे नहीं पाए बिन नामे जन्म गवावणिया सच करनी शब्द है सार पूरा गुर पाईऐ मुख द्वार अन दिन बाणी शब्द सुनाई सच राते रंग रंगावणिया रसना हर रस राती।

मन अंतर दर सच्चै सो बा पावणिया। माज महला तीजा सतगुर सेवियां वड्डी वड्याई। हर जी अचिंत वसै मन आई। हर जी ओ सफले ओ बिरख है अमृत जिन पीता तिस तिखा लहावणिया। हों वारी जी ओ वारी सच संगत मेल मनावणिया। हर सत संगत आपे मेलै गुर शब्दी हर गुण गावणिया। रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया जिन हर का नाम मन वसाया। हर निर्मल हों मैं मैल गवाई दर सच्चै सो बा पावणिया। बिन गुर नाम ना पाया जाई सिद्ध साधक रहे बिन लाई। बिन गुर सेवे सुख ना होवी पूरै भाग गुर पावणिया। इहो मन आरसी कोई गुरमुख वेखै मूर्चा ना लागै जा हों मैं सुखै। अनहत बाणी निर्मल शब्द वजाई गुर शब्दी सच समावणिया। बिन सतगुर केहो

गुरमुख होवै सो इकस सिंहों निवलाए, दूजा भरम गुर शब्द जलाए। काया अंदर वणज करे वापारा, नाम निधान सच पावणिया। गुरमुख करनी हर कीरत सार, गुरमुख पाए मोख द्वार। आनंद रंग रत्ता गुण गावे, अंदर महल बुलावणिया। सतगुर दाता मिले मिलाया, पूरे भाग मन शब्द वसाया। नानक नाम मिले वडियाई, हर सच्चे के गुण गावणिया। माज महला तीजा, आप मंझाए ता सब किछ पाई। गुर शब्दी सच्ची लिवलाई, सच वणंजह सच संग्रह।

निर्मल बाणी शब्द बखाण है, सच्चे सेव सदा सुख पायन, नौ निद नाम मन वसावणिया, सुथान सुहाया जो हर मन पाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अन दिन हर सलाह है साचा, निर्मल नाद बजावणिया, मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूड़ कमावण दुख लागे पारा, परमे भूले फिरन दिन राती, मर जन्म है जन्म गवावणिया, सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर कै शब्द आधारा, नानक नाम मिले वडियाई, दुख सुख सम कर जाननिया, माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावै सब परम पलाणी, गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुर कोए ना पावणिया, हौ वारी जियो वारी, हर सेती चित लावणिया, हर सच्चा गुर भगती पाईऐ, सहजे मन वसावणिया, रहाउ सतगुर सेवे ता सब किश पाई, जेही मनसा कर लागै तेहा फल पाई, सतगुर दाता सबना वथू का, पूरे भाग मलावणिया, इहो मन मैला इक न त्याई, अंतर मैल लागी बहु दूजै पाई, तट तीरथ दसंतर भवै अहंकारी, होर वधेरै होमै मल लावणिया, सतगुर सेवे ता मल जाई, जीव तमरै हर स्यों चित लाई, हर निर्मल सच मैल न लागै, सच लागै मैल गवावणिया, बाज गुरु है अंध गुबारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा, बिस्टा के कीड़े बिस्टा कमा

रहाउ। पंडित पढ़ है साधना पाव है, दूजे भाई माया मन परमाव है, माया मोहे सब शुद्ध गुआई।

रात्रि भेद माया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके चौथे पद की सार ना पावणिया आपे रंगे रंग चढ़ाई से जन राते गुर शब्द रंगाई हर रंग चढ़िया अत अपारा हर रस रस गुण गावणिया गुरमुख रिद सिद सच संयम सोई गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई।

गुरमुख जात पत सब आपी, नानक गुरमुख नाम त्याई, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत पर लो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओ पत होवे। गुरमुख वरतै सब आपे सच्चा, गुरमुख अपाए समावणिया। हौ वारी जीओ वारी, गुरपूरा मन वसावणिया। गुर ते शांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया। रहाउ गुरमुख धरती गुरमुख पाणी, गुरमुख पवन बै संतरे।

हर पाई, हर सिओ सहज समावनिया रहाउ। पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया। बिन भागा गुर पाई है नाही, शब्द है मेल मलावनिया। गुरमुख अलिप्त रह संसारी, गुर कै तकिए नाम आधारी। गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावनिया। मनमुख अंधे सुध ना काई, आत्म घाती है जगत कसाई।

पावणिया। किस बाजहू सच्ची मैं होर न कोई, जिस लाई लय सो निर्मल होई। नानक नाम वसै घट अंतर, जिस देवै सो पावणिया। माज महला तीजा, अमृत नाम मन वसाई। हम मैं मेरा सब दुख गवाई।

अमृत शब्द अमृत हर बाणी सतगुरु सेविया हृदय समाणी नानक अमृत नाम सदा सुख दाता पी अमृत सब भुख लह जावणिया माज महला तीजा अमृत वरसै सहज सुपाई गुरमुख विरला कोई जन पाई अमृत पी सदा तृप्तासी कर कृपा तृष्णा बुझावे।

बुलाई। नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया। सबना उपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी। तुझते बाहर किस ना होवे, गुरमुख सोजी पावणिया। गुरमुख तत है बिचारा,

मन निश्चल निज कारवासा पावणिया गुरु कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह शब्द जलाया सचो सच्चा वेख सलाही गुर शब्दी सच पावणिया जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी हर नाम संभाल है से वड भागी सच्चा शब्द आप मलाई सत संगत सच गुण गावणिया लेखा पढ़िया जे लेखे विच होवे ओहो अगम अगोचर शब्द सुध होवे अन दिन सच शब्द सलाही होर कोई ना कीमत पावणिया पढ़ पढ़ था के शांत ना आई तृष्णा जाले सुध ना काई बिख विहाज है बिख मोह प्यासी कूड़ बोल बिख खावणिया गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरतै मन अंतर गुर प्रसादी पावणिया माज महला तीजा वर्ण रूप वरतह सब तेरे मर मर जमह फिर पवह कनेरे तू एको निकल अगम अपारा गुरमति बूझ बुझावणिया हौ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया किस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमति आप बुझ

सब थाई ज्योति ज्योत मलावणिया इसना अगन जलै संसारा लोभ अभिमान बहुत अहंकारा।

सच सलाही सब घट अंतर सचो सच सुहावनिया सच सलाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया पर पूरे गुर पर साधु सच नदरी आवे सच्चे ही सुख पावनिया सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निश्चल आवे ना जाए सच्चे लागे सो मन निर्मल गुरमति सच समावनिया सच सलाही अवर ना कोई जित सेवे सदा सुख होई।

निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहि समाणी, निर्मल बाणी हर सालाही, जप हर निर्मल मैल गवावणिया, हौ वारी जीओ वारी, सुखदाता मन वसावणिया, हर निर्मल गुर शब्द सलाही, शब्दो सुन तिसा मटावणिया, रहाउ निर्मल नाम वसिया मन आई, मन तन निर्मल माया मोह गुआई, निर्मल गुण गावै नित साचे की, निर्मल नाद बजावणिया, निर्मल अमृत गुर ते पाया, विचों आप मोआ तिथे मोह ना माया, निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल, निर्मल बाणी मन वसावणिया, जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवै, हौ मैं मैल गुर शब्दे धोवै, निर्मल वाजै अनहद धुन बाणी, दर सच्चै सोभा पावणिया, निर्मल ते सब निर्मल होवै, निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै, निर्मल नाम लगे बड़ भागी, निर्मल नाम सुहावणिया, सो निर्मल।

मैला खाई फिर मैल वधाई मनमुख मैल दुख पावनिया मैले निर्मल सब हुक्म सबाई सी निर्मल जो हर साची पाई नानक नाम वसै मन अंतर गुरमुख मैल चुकावनिया माज महला तीजा गोविंद उजल उजल हंसा मन बाणी निर्मल मेरी मनसा मन उजल सदा मुख सोह हत उजल नाम त्यावनिया हौ वारी जियो वारी गोविंद गुण गावनिया गोविंद गोविंद कह दिन राती गोविंद गुण शब्द सुनावनिया रहाओ गोविंद गावह सहज सुपहाई गुर कै भै उजल हौ मैं मल जाई सदा आनंद रह भगत करह दिन राती सुन गोविंद गुण गावनिया मनुआ नाचै भगत दिरड़ाई।

माया मोह इस मनहन चाई अंतर कपट दुख पावनिया गुरमुख भगत जा आप कराई तन मन राता सहज सुपाई वाणी वज्जै शब्द बजाई गुरमुख भगत थाए पावनिया बहु ताल पूरे बाजे बजाई ना को सुने ना मन वसाई माया कारण पिड़ बंद नाचै दूजे पाए दुख पावनिया जिस अंतर प्रीत लगै सो मुक्ता इंद्री वस सच संयम जुगता गुर कै शब्द सदा हर त्याई एहा भगत हर पावनिया गुरमुख भगत जुग चारे होई होरत भगत ना पाए कोई नानक नाम गुर भगती पाई गुर चरणी चित लावणिया माज महला तीजा सच्चा सेवी सच सालाही सच्चे नाही दुख कब ही नाही सुख दाता सेवन सुख पाइन गुरमत मन वसावणिया हौ वारी जीओ वारी सुख सहज समाद लगावणिया जो हर सेवह से सदा सोह सुबा सुत सुहावणिया रहाउ सब को तेरा भगत कहाई से भगत तेरे मन पहाई सच वाणी तुदै सालाहन रंग राते भगत करावणिया सब को सच्चे हर जियो तेरा गुरमुख मिलै ता चूकै फेरा जा तुद भावै ता नाही रचावै तू आपे नाउ जपावणिया गुरमती हर मन वसाया हरख सोग सब मोह गवाया इक सस्यों लिव लागी सदही हर नाम मन वसावणिया भगत रंग राते सदा तेरे चाई नौ निध नाम वसया मन आई पूरे भाग सतगुर पाया।

किसै मलाई, गुर शब्द मिलहै से विछड़ह नाही। सहजे सच समावणिया, तुझते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेखहै जानहै सोई।

माज महला तीजा आत्म राम परगास गुर ते होवे हौं मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे मन निर्मल अन दिन भगती राता भगत करे हर पावणिया हौं वारी जियो वारी आप भगत करन अवरा भगत करावणिया इन्ना भगत जना को सद नमस्कार कीजै जो अन दिन हर गुण गावणिया रहाओ आपे करता कारण कराई जित पावै तित कारै लाई पूरै भाग गुर सेवा होवै।

जानिया। बहु कर्म कमावे मुक्त ना पाई, देशांतर पवे दूजे पाई खुआई। बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्द है दुख पावनिया। तावत राख ठाक रहाई, गुर प्रसादी परम पद पाई। सतगुर आपे मेल मनाई, मिल प्रीतम सुख पावनिया। एक कूड़ लागे कूड़े फल पाई, दूजे पाए बिरथा जन्म गवाई। आप डूबे सगले कुल डूबे, कूड़ बोल बिख खावनिया। इस तन मह मन को गुरमुख देखे, भाई भगत जा हूं मैं सुख है। सिद्ध साधक मोल धारी रहे लिवलाई, तिन पी तन मह मन ना दिखावनिया। आप कराए करता सोई, होर के करे कीता क्या होई। नानक जिस नाम देवे सो लेवे, नामो मन वसावनिया। माज महला तीजा, इस गुफा में अखुट भंडारा। इस विच वसे हर अलख अपारा, आपे गुपत प्रगट है आपे। गुर शब्दियां पवियावनिया, हों वारी जियो वारी। अमृत नाम मन वसावनिया, अमृत नाम महारस मीठा। गुरमती अमृत पियावनिया, रहाओ। हूं मैं मार बजरक पाठ खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया। बिन शब्द नाम ना पाई कोई, गुर कृपा मन वसावनिया। गुर ज्ञान अंजन सच नेतरी पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। ज्योति ज्योत मिली मन मानिया, हर दर शोभा पावनिया। शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम ना लह बहुत बेगार दुख पाए। मन मुखे अंधे सूजे नाही, फिर घिर आए गुरमुख वत पावनिया। गुर प्रसादी सच्चा हर पाई, मन तन वेख हों मैं मैल जाई। बैस सुखान सद हर गुण गावे।

दिन राती गुरमति शब्द सुनावणिया बिन शब्द अंतर अनेरा ना वस्त लह ना चूकै फेरा सतगुर हाथ कुंजी होरत दर खुलै नाही गुर पूरै भाग मनावणिया गुपत प्रगट तू सबनी थाई गुर प्रसादी मिल सोजी पाई नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया। माज महला तीजा गुरमुख मिले मलाए आपे काल ना जो है दुख ना संतापे हउमै मार बंधन सब तोड़ै गुरमुख शब्द सुहावणिया। हउ वारी जियो वारी हर हर नाम सुहावणिया गुरमुख गावै गुरमुख नाचै हर सेती चित लावणिया। रहाउ गुरमुख जीवै मरै परवान आर जा ना सीजै शब्द पछाण गुरमुख मरै ना काल ना खाई गुरमुख सच समावणिया। गुरमुख हर दर सोभा पाई गुरमुख विचों आप गवाई आप तरै कुल सगले तारी गुरमुख जन्म सवारणिया। गुरमुख दुख कदे ना लगै शरीर गुरमुख हौ मैं चूकै पीर गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागै गुरमुख सहज समावणिया। गुरमुख नाम मिलै वडियाई गुरमुख गुण गावै सोभा पाई सदा आनंद रहै दिन राती गुरमुख शब्द करावणिया। गुरमुख आन दिन शब्दे राता गुरमुख जुग चारे है जाता गुरमुख गुण गावै सदा निर्मल शब्दे भगत करावणिया। बाज गुरु है अंध अंधारा

आपी शब्द गुर मन वसाई, शब्दे उपजै अमृत बाणी, गुरमुख आख सुनावणिया, आपी करता आपी भुगता,

हुई, जिस आप वखाले सो वेख कोई। नानक नाम वसै घट अंतर, आपे वेख विखालणिया। माज महला तीजा, मेरा प्रभ भरपूर रहिया सब थाई। गुर प्रसादी घर ही मह पाई, सदा सरेवी एक मन त्याई।

फेरा, जम्मण मरण ना चूकै फेरा, गुरमुख हो ऐसो हमें मारी, सचो सच त्यावणिया, काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दुही मिलकै सृष्ट उपाई, दुए मार जाए इकत घर आवे, गुरमत सहज समावणिया, कर ही माही दूजे पाए अनेरा, चानण होवे छोड़ै हमें मेरा, प्रगट शब्द है सुखदाता, अन दिन नाम त्यावणिया, अंतर जोत प्रगट पा सारा, गुरसाखी मिटिया अंधियारा, कमल विगास सदा सुख पाया, ज्योति जोत मलावणिया, अंदर महल रतनी भरे भंडारा।

कि नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावणिया माज महला तीजा हर आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द।

वारी सत सच्चा हृदय वसावणिया सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावणिया रहाउ आपे गुरदाता कर्म विधाता सेवक सेव है गुरमुख हर जाता अमृत नाम सदा जन सू है गुरमत हर रस पावणिया इस गुफा में एक थान सुहाया पूरे गुर हूं मैं परम चुकाया अन दिन नाम सलाहन रंग राती।

हर गुण गावे शब्द सुहाई, मिल प्रीतम सुख पावनिया, जम जा गाती दूजे भाई कर लाई, नाम भूले दे सजाई, तड़ी मोहत का लेखा लेवे, रतियों मासा तोल कढावनिया, पे अड़ै फिर चेते नाही, दूजे मुठी रोवे ताही, खरी क्वाले कुरूप कलखणी, सुपने फिर नहीं पावनिया, पे अड़ै फिर मन वसाया, पूरे गुर हदूर दिखाया, कामन फिर राख्या कंठ लाई, शब्दे फिर रावै सेज सुहावनिया।

पाड़ बोज मानव सावणिया गुरमुख पढ़ है हर नाम सलाह है दर सच है सूबा पावणिया रहाउ अलक अपेरो हर रहे आसमाई उपाय न किती पाया जाई कृपा करी ता सतगुर पीटे नदरी मेल मनावणिया दूजे पाए पड़े नहीं दूजे त्रेविद माया कारण लूजे त्रेविद बंधन टूटे है गुर शब्दी मुक्त करावणिया एहो मन चंचल वासना आवे दुबदा लागे दह दिस तावे बिख का कीड़ा बिख मै राता बिख ही माही पचावणिया हों हों करे तै आप जनाई बहु कर्म करे किस थाए ना पाई तुझते बाहर किशु ना हुए बख्शे शब्द सुहावणिया उपजे पचे हर बूजे नाही अन दिन दूजे पाए फराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश श्रृंगार बनाई मन मुख आंदे से कर

कै शब्द पुछाता, अन दिन भगत करे दिन राती, सहजे ही सुख पावनिया, सब मैं वरतै एको सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई, नानक नाम रते जन सोहै, कर किरपा आप मलावनिया, माज महला तीजा, मनमुख पढ़ै पंडित कहावै, दूजै पाए महा दुख पावै, बिख्या माते किस सूजै नाही, फिर जूनी आवनिया, हौ वारी जियो वारी, हौ मैं मार मनावनिया, गुर सेवा ते हर मन वसिया, हर रस सहज पी आवनिया, रहाउ वेद पढ़ै हर रस नहीं आया, वाद वखाणै मोहे माया, अज्ञान मत्ती सदा अंधियारा, गुरमुख बूझ हर गावनिया, अकथो कथियै शब्द सुहावै, गुरमती मन सच्चो पावै, सच्चो सच रवै दिन राती, इहो मन सच रंगावनिया, जो सच रत्ते तिन सच्चो पावै, आपे दे ना पछो तावै, गुर कै शब्द सदा सच जाता, मिल सच्चे सुख पावनिया, कूड़क सत किन्ना मैल ना लागै, गुर प्रसादी अन दिन जागै, निर्मल नाम वसै कट भीतर, ज्योति ज्योत मलावनिया, त्रै गुण पढ़ै हर तत ना जानै, मूलों भुले गुर शब्द ना पछाणै, मोह व्यापी किस सूजै नाही, गुर शब्दी हर पावनिया, वेद पकारै त्रिविध माया,

हर रस चख साध पावणिया, हर रस चख है से जन निर्मल, निर्मल नाम त्यावणिया रहाउ। सो निकर्मी जो शब्द बिचारी।

प्रीतम मेरे, तुद बिने अवरना कोई जाचा, गुर प्रसादी तू पावणिया, अगम अगोचर मित नहीं पाई, अपनी कृपा करह तू लह मलाई, पूरे गुर कै शब्द त्याई, शब्द सेव सुख पावणिया, रसना गुणवंते गुण गावे, नाम सलाहे सच्चे पावे, गुरमुख सदा रह रंग राती, मिल सच्चे सोभा पावणिया, मनमुख कर्म करे अहंकारी,

आप लिखत तुर पाई, नानक नाम मिले पौ भंजन, गुर शब्दी सुख पावणिया। माज महला पंजवा कर पहला, अंतर अलख न जाई लखिया, नाम रतन लै गुजा रखिया, अगम अगोचर सब ते उचा, गुर कै शब्द लखावणिया। हो वारी जियो वारी, कल मह नाम सुनावणिया, संत प्यारे सच्चै तारी, वडभागी दर्शन पावणिया। रहाउ साधक सिद्ध जिसै कहो फिरदे, ब्रह्मे इंद्र ध्यान हिरदे, कोड़ ते तीसा खोजै ता।

निवासी सबना कह मन पावनिया साचा साहिब गुरमुख जापै पूरे गुर कै शब्द सुझापै जिन पिया से त्रिपता से सच्चे सच अगामणिया तिस कर सहजा सोई सोहेला अणद बनोद करे सद केला सो तनवंता सो वड साहा।

रख मन तन पावणिया। तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावणिया। रहाव तेरा कीता जिस लागै मीठा, घट घट पार ब्रह्म तिन जन दीठा। थान थनंतर तू है तू है, इको एक वरतावणिया। सगल मनोरथ तू देवनहारा, भगती पाए परे पंडारा। दया तार राखे तुद से, पूरे कर्म समावणिया। अंधकूप ते कंडे चाड़े, कर किरपा दास नदर निहाले। गुण गावे है पूर्ण अबनासी, कह सुन तोट ना आवणिया। एथे उथे तू है रखवाला, मात गर्भ में है तुम ही पाला। माया अग्न ना पो है तिनको, रंग रते गुण गावणिया। क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली। तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर ना जानणिया। जिसको तू प्रभ पया सहाई,

ऊंच अथाह अपार अमोला, तू साचा साहेब दास तेरा गोला, तू मीरा साची ठकुराई, नानक बल बल जावणिया, माज महला पंजवा कर दूजा, नित नित दयो संभाली है, मूल ना मनहु विसारी है, रहाओ संता संगत पाई है, जित जम कह पंथ ना जाई है, तोसा हर का नाम लै, तेरे कुलह ना लागे गाल जियो, जो सिमरन दे साई है, नरक ना से पाई है, तत्ती वाओ ना लगई, जिन मन बुठा आए जियो, से सुंदर सोहने, साध संग जिन बहने,

जिसका निःचल ताम चेत गोविंद अरादिय होवे आनंद घणा संत जना मिल पाई है।

जन्म जाना जल तलमई अनपूरिया रविया विच बना सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिन्नी रावया सो प्रभु तिन्ना भाग मना।

तिसकै पाए लगा वैसाख तीरन क्यों वादियां जिन्ना प्रेम बशो हर साजन पुरख वसार कै लगी माया तो पुत्र कलत्तर ना संग तना हर अवनासी ओह पलच पलच सगली मुई झूठ तंदे मोह इक सहार के नाम बिन अगे लई है खोहे दयो विसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोई प्रीतम चरणी जो

पत होए। वैसाख सुहावा तां लगे जां संत भेटै हर सोए। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है,

मन लोचदा कर्म मिलावन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया हौ तिन कै सद बलिहार नानक हर जी मया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार भादोए परम पलानिया दूजे लगा हेत लख शिंगार बनाया कारज नाही केत जित दिन देह बिनससी तित वेलै कहसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसै ना देनी भेत छड खड़ोते खिनै माही जिन स्यों लगा हेत हाथ मरोड़ै तन कपे

दोष ना काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस ठहरू वह रोज कीता किशु ना हो गई

लाख बेरियां हर सज्जन अगम अगाह शरम पई नारायण नानक दर पैया पोख सोहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवाह माग मज्जन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान हर का नाम त्याए सुन सबना नो कर दान जन्म कर्म मल उत्तरे।

जी की बिरथा सुह सुनी हर समृत पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना का आधार ससुरै पेय तिस कंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम अगाध बोध किस अंत न पारावार सेवा सा तिस भाव सी संता की होए शार दीना नाथ दयाल देव पतत उदारण हार आदि जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई ना जाने को नाही तो ननहार मन तन अंतर वस रही नानक नहीं सुमार।

जिन रच रचिया तिसह ना जाने, अंधा अंध कमाई जां भजै तां ठीक कर होवै, घाड़त घड़ी ना जाई। नानक गुर बिन नाही पत, पत बिन पार ना पाई। महला दूजा, दिन दे काम हूं दिता चंगा, मन

कर्म कमावे सो चहो कुंडी जानिए, जो धर्म कमावे तिस धर्म नाउ होवे, पाप कमाणे पापी जानिए, तू आपे खेल करह सब करती, क्या दूजा आख बखाणिए, जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले, बिन ज्योति कोई किस करे हो दिखा सियाणी है, नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सुगड़ सुजानी है, पौड़ी तुदे आपे जगत अपाए कै, तुदे आपे तंदे लाया, मोह ठगौली पाए कै, तुदे आप हो जगत खोआया, जिसना अंदर अग्न है नह तिपतै भुखा त्याया, सहसा एहो संसार है मर जमै आया जाया, बिन सतगुर मोह ना टुटई, सब थके कर्म कमाया, गुरमति नाम त्याई है सुख रजा जां तुद पाया, कुल उधारे अपना धन जने दी माया, सोभा सुरत सुहावनी जिन हर सेती चित लाया, सलोक महला दूजा अखी बाजो वेखना, विन कन्ना सुनना पैरां बाजो चलना, विन हत्थां करना जीबै बाजो बोलना, इयों जीवत मरना नानक हुक्म पछाण कै, तौ खसमै मिलना महला दूजा, जिसै सुनिए जानिए साओ ना पाया जाय, रुहला टुंडा अंधला क्यों गल लगे ताई, भै के चरण तर भाव के

जिस लाभ लोभ अहंकारा नाउ पढ़िया नाउ बुझिया गुरमति विचारा गुरमति नाम तन खटिया भगती परे भंडारा।

साथ इस भाव सी नानक रखै लाज महला पहला हक पराया नानका उस सुअर उस गाय गुर पीर हा माता भरी जा मुरदार न खाए गली पिस्त ना जाइए छुट्टै सच कमाए मारन पाहे हराम मैं होए हलाल न जाए नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए महला पहला पंज निवाजा वक्त पंज पंजा पंजे नाम पहला सच हलाल दुए तीजा खैर खुदाई चौथी नीयत रास मन पंजवी सिफत सनाई करनी कलमा आख कै ता मुसलमान सदाई नानक जेते कूड़ियार कूड़ै कूड़ी पाए पौड़ी एक रतन पदार्थ वणज दी एक कच्चै दे वापारा सतगुर तुठै पाइयन अंदर रतन भंडारा बिन गुर किनै ना लद्या अंधे भौंक मोए कूड़ियारा मनमुख दूजै पच मोए ना बूझै विचारा एक सबाजो दूजा को नहीं किसे आगै करह पुकारा एक निरतन सदा भौंक दे एक ना भरे तुजारा बिन नावै होर धन नाही होर बिख्या सब छारा नानक आप कराए करे आप हुक्म सवारन हारा सलोक महला पहला मुसलमान कहावन मुश्किल जा हुए ता मुसलमान कहावै अवल औल दीन कर मिठा मस्कल माना माल मसावै होए मुस्लिम दीन महान मरण जीवन का भरम चुकावै रब की रजाए मन्ने सिर उपर करता मन्ने आप गवावै तौ नानक सर्ब जिया मेहरमत होए ता मुसलमान कहावै।

काम कामनी मोह तजै ता अंजन माहे निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावै पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी टहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्भ भरे भंडार रीते एक खणे ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घरवार किथे से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दातार सनाखत कुदरती सलोक महला पहला नदियां हो वह तीनवा सोम हो वह दुध कीओ सगली धरती सक्कर हो वह खुशी करे नित जीओ।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल हो ऐ पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे देह दुख लाई है पाप ग्रह दोए राह रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है।

आओ पवड़ी बद फैली गै बाना खसम ना जाने सो कहिए देवाना आप ना पछाने कलह बुरी संसार वादे खपिए बिन नावे वेकार परमे पचिए राह दोवे एक जाने सोई सिजसी कुफर गो कफराने पया धजसी सब दुनिया सुबहान।

क्या हाथ सच परखिए मोहरा हुए हाथ मरिए चखिए सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए हुक्म मन्ने सिरदार दर दी बाणिए फुरमानी है कार खसम पठाया तबल बाज बीचार शब्द सुनाया एक होए असवार एक ना साखती इकनी बदे पार इक ना ताखती सलोक महला पहला जा पक्का ता कटिया रही सो पलरवार सन की सारा चिथिया कान लया तन झाड़ दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसन आए पहिठ जो दर रहे सो उबरे नानक अजब डिठ महला पहला वेख जे मिठा कटिया कट कुट बद्दा पाय खुंडा अंदर रख के देन सो मल सजाय रस कस टटर पाई।

सारे कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाए नाम त्याई है, दूजी कार है लाग जन्म गवाई है, विण नावे सब विस पेंजे खाई है, सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है, विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास, फिर आई है, दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है, नानक सच खरा सलाहे पत सिउ जाई है, सलोक महला पहला, तुद भावे ता वावह गावह, तुद भावे जल नावह, जा तुद

सिख कहावै जा तुध भावै ता होवै राजे रस कस बहुत कमावै जा तुध भावै तेग बगावै सिर मुंडी कट जावै जा तुध भावै जाहे दसंतर सुन गल्ला घर आवै जा तुध भावै नाहिर चावै तुध पाणी तू भावै नानक एक कह बेनंती होर सगले कूड़ कमावै महला पहला जा तू वड्डा सब वडियाईया चंगा चंगा होई जा तू सच्चा ता सब को सच्चा कूड़ा कोई ना कोई आखण वेखण बोलण चलण जीवन मरना तात हुक्म साज हुक्मै विच रखै नानक सच्चा आप पौड़ी सतगुर सेवन संग परम चुकाई है सतगुर आखै कार सो कार कमाई है सतगुर हुए दयाल ता नाम त्याई है लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है सच्चे दै दर जाए सच चुवाई है सच्चा अंदर महल सच बुलाई है नानक सच सदा सच्यार सच समाई है श्लोक महला पहला कल काती राजे का साई धर्म पंख कर उडरिया कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया हों भाल विकुन्नी होई अंधेरै राहो ना कोई विच हों मैं कर दुख रोई कहो नानक किन बिदगत होई महला तीजा कल कीरत प्रगट चानन संसार गुरमुख कोई उतरै पार जिसनो नदर करे तिस देवै नानक गुरमुख रतन सो लेवै पौड़ी भगतां तै संसारियां जोड़ कदे ना आया करता आप अपुल है ना भुलै किसै दा भुलाया भगत आपे मेलियन जिन्नी सचो सच कमाया संसारी आप खुआयन जिन्नी कूड़ बोल बोल बिख खाया चलन सार ना जाननी काम क्रोध विस वधाया भगत करन हर चाकरी जिन्नी अन दिन नाम त्याया दासन दास होए कै जिन्नी विचों आप गवाया ओना खसमै कै दर मुख उजले सच्चै शब्द सुहाया सलोक महला पहला सबाही सलाह जिन्नी त्याया इक मन से पूरे साह वखतै उपर लड़ मोए दूजै बहुते राह मन कियां मती खिंदियां बहुत पए असगाह गोते खाहे ना निकलै तीजै मुही ग्राह भुख तिखा दोए पौंकियां खादा हुए स्वाह पी खाने स्यों दोस्ती।

पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इने चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाई सो पन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना आखै घट हौमै जाई है लइन खरे परख दर भी नाई है सौदा इक तहट पूरे गुर पाई है सलोक महला दूजा अठी पैरी अठ खंड नावा खंड शरीर इस विच नौ निध नाम एक पाल है गुणी गहीर कर्मवंती सालाया नानक कर गुर पीर चौथे पहर सबहा कै सुरतियां कुजै चाओ तिन्ना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम उते अमृत वंडी है कर्मी हुए पसाव कंचन काया कसी है

गुण गाहक एक वन भुखियां भुख ना उतरै गली भुख ना जाए नानक भुखा ता रजै जा गुण कह गुणी समाए पौड़ी बिन सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है बिन सच्चे कूड़ियार बन चलाई है बिन सच्चे तन शार शार रलाई है बिन सच्चे सब भुख जे पैंजै खाई है।

ठगियो ठग आइए जाइए तन मह तृष्णा अग शब्द बुझाइए। सलोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्के कर्म ध्यान पत के।

यार मन वसाइए मोहत ना चसा विलम भरिए पाइए गुर प्रसादी बुज सच समाइए सलोक महला पहला तुम्मी तुम्मा विस आकत तूरा निम फल मन मुख वसह तिस जिस तू चेतना आवही नानक कहिए किस हंडन कर्मा बाहरी महला पहला मत पंखे रू किरत साथ कब उत्तम कब नीच कब चंदन कब अक डाल कब उच्ची परीत नानक हुक्म चलाई है।

मूल जान गल्लां करे हान लाए हान लाभना चली सच रहै सो विष्ट प्रवान सर संदे आगास को।

कारिया करण भगत दिन रात न रहनी वारिया महला मांज निवास शब्द सवारिया सच कहन अरदास से विचारिया सोहन कसमै पास हुक्म सिधारिया सखी कहन अरदास मनो प्यारिया बिन नावे त्रिगवास फिट सो जीविया शब्द सवारी आस अमृत पीविया।

पौड़ी खसमै कै दरबार टाडी वसिया सच्चा खसम कलाण कमल विगसिया खसम पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरस्या सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दस्या सच्चा शब्द विचार काल बदौसिया ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास

नानक बख्शे बख्शी है, नाहे ता पाही पाहे महला पहला। नानक बोलन चखना दुख छड़ मंगी है सुख, सुख दुख दोए दर कपड़े पहर है जाए मनुख। जिते बोलन हारी है तिते चंगी चुप पौड़ी, चारे कुंडा देख अंदर पालिया, सच्चे पुरख अलख सिरज निहालिया। उजड़ भुले राह गुर वेखा लिया, सतगुर सच्चे वाह सच संभालिया। पाया रतन कराह दीवा बालिया, सच्चा शब्द सलाहे सुखिये सच वालिया। ने डरिया डर लग गर्भ से गालिया, नाम भुला जग फिर बेतालिया। सलोक महला तीजा, पै विच जमे पै मरे, पी पौ मन मह होए। नानक पै विच जे मरे सहला आया सोए। महला तीजा, पै विण जीवे बहुत बहुत, खुशियां खुशी कमाए। नानक पै विण जे मरे मुहे काले उठ जाए। पौड़ी, सतगुरु हुए दयाल ता शरदा पूरी है, सतगुरु हुए दयाल ना कबहू चूरी है। सतगुरु हुए दयाल ता दुख ना जानी है, सतगुरु हुए दयाल ता हर रंग माणी है। सतगुरु हुए दयाल ता जम का डर केहा, सतगुरु हुए दयाल ता सद ही सुख देहा। सतगुरु हुए दयाल ता नव निध पाईऐ, सतगुरु हुए दयाल ता सच समाईऐ। सलोक महला पहला, सिर खुहाए पीयह मलवाणी, जूठा मंग मंग खाही फूल फदीहत मुहे लैन पड़ासा। पानी देख सगाही भेडा वांगी सिर खोहायन, भरियन हथ सुआही माऊ पीऊ किरत गवायन। टब्बर रोवन ताही ऊना पिंड ना पत्तल, किरिया ना दीवा मुए कथाऊ पाही। अठसठ तीरथ देन ना ढोई ब्रह्म।

इत के होम जग सद पूजा पय कार्य सो है गुरु समुंध नदी सब सिखी नापै जित वड्याई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्नि पाला की करे सूरज के ही रात चंद अनेरा की करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किछु

चढ़ सुआया नानक मंग दान जो तुद पाया सलोक महला दूजा दीख्या आख बुझाया सिफती सच समेओ तिनको क्या उपदेसी है जिन गुर नानक देव महला पहला आप बुझाए सोई बुझे जिस आप सुझाए तिस सब किस सूझे कह कह कत

बुलाया, सच्ची सिफत सालाहा कपड़ा पाया, सच्चा अमृत नाम भोजन आया, गुरमति खादा राज तिन सुख पाया, ढाडी करे पसाऊ शब्द बजाया, नानक सच सलाहे पूरा पाया, शुद्ध राग गौड़ी ग्वारी महला पहला, चौपदे दुपदे

ना डूबै तरै जिन किश किया सो किश करै हुक्मे आवै हुक्मे जाए आगे पाछे हुक्म समाए हंस हित आसा समान तिस विच भूख बहुत नैसान पाओ खाना पीना आधार बिन खादे मर होए गवार।

नानक आखण बिखम बीचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर इहो वसेख कहना है किस कहन ना जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ शर्म सुरत दोए ससुर भये करनी कामन कर मन लये साहा संजोग व्याह वजोग सच संतत कहो नानक जोग गौड़ी महला।

तट तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ काट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद बखाने, पीतर होंदी वस्त ना जाने, हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया, गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे मन नाऊ, ताँ कै सद बलिहारे जाऊ आ

साठ। काम क्रोध फूटै बिखमाट, बिन बखर सुनो घर हाट। गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिलै पूरब संजोग। सच रहस्य पूरे हर लोग, मन तन देलै सहज सुभाए। नानक तिनकै लागो पाए, गौड़ी महला पहला। काम क्रोध

कुंडे पड़वाओ जेवा इंद्री एक सवाओ दिष्ट वकारी नाही पहु पाओ आप मारे ता पाए नाओ शब्द मरे फिर मरन ना होए बिन मुए क्यों पूरा होए परपंच व्याप रहया।

मन मानै अमृत रस पीजै रहाउ। जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया। नजर पई घर घर ते जानिया, जत सत तीरथ मज्जन नाम।

नानक गुरमत सहज सुमाउ गौड़ी महला पहला सतगुर मिलै सो मरण दिखाई मरण रहन रस अंतर पाई गर्भ निवार गगन पुर पाई मरण लिखाए आए नहीं रहना हर जप जाप रहन हर सरना रहाउ सतगुर मिलै तद दुबदा भागै कमल बगास मन हर प्रभ लागै जीवत मरै महारस आगै सतगुर मिलै सच संयम सूचा गुर की पौड़ी ऊचो ऊचा कर्म मिलै जम का भौ मूचा गुर मिलै मिल अंक समाया कर कृपा कर महल दिखाया नानक हों मैं मार मलाया गौड़।

गुरबचनी सच शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वडियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला, जिन अकथ कहाया अपयो पी आया, अन पै विसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डर है समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ, जिस नर राम हृदय हर रास, सहज सुभाए मिले साबास, जाहे सवारे सांझ बयाल, इत उत मन मुख बांदे काल, अहनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले ब्रह्म दूरे, गौड़ी महला पहला, जन्म मरै त्रै गुण हितकार, चारे

चार तीन अवस्था कह बखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान। राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना हुए है मरना रहाऊ। चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत सासत पंडित मुख सोई। बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जाके हृदय बसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद। जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा माही निराश बुझाया। दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली। बाजी एहु संसारु, लाभ लोभ मुच कूड कमावे। बहुत उठावे भारू, तू काया मैं रुलदी देखी। ज्यों धारू परिचारु, सुन सुन सिख हमारी। सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहुड़ न आवे वारी रहाउ। हौ तुदे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी। निंदा चिंदा करह पराई, झूठी लाए तिबारी। वेल पराई जोह है जियड़े, करह चोरी बुरियारी। हंस चलिया तू पिछे रही, छुट्टड़ हुई है नारी। तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया। कर चोरी मैं जा किश लिया, ता मन भला पाया। हलत ना सोबा पलत ना ढोई।

भोग तिस का पाना रहाउ, साहु हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके बनजारी, जियो पिंड सब रास तिस की, मारे आपे जी वाले, गौड़ी चेती महला पहला, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना, मार है लूट है नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना।

रखी सातना अमृत केल करे नित कामन अवर लुटेन सो पंच जना ताहे मड़ोली लूटिया देहरा सातन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना कामन लोड़े सोयना रूपा मित्र लोड़ेन सो खादाता नानक पाप।

लब लोभ की ताविसता जपस निरंजन रचस मना काहे बोलह जोगी कपट कना रहाउ काया कमली हंस एयाणा मेरी मेरी करत बिहानीता प्रणवत नानक नांगी दाजै फिर पाछै पछतानीता गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एकै जे कर दृढ़ चित की जैरी जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा ली जैरी मन एको साहिब पाई रे तेरे तीन गुणा संसार समाव है अलख न लखना जाई रे रहाउ सक्कर खंड माया तन मीठी हम तो पांड उचाई रे रात अनेरी सूजस नाही लाज टूकस मूसा पाई रे मन मुख करह तेता दुख लागे गुरमुख।

तिनकी पंख होवे जे नानक तो मूड़ा किस पाई रे। गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थाम हो हम आए।

केते पशु अपाई, केते नाग कुली मह आई, केते पंख उड़ाई, हट पटन बिज मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे, अगों देखै पिछों देखै, तुझते कहां छुपावे। हट तीरथ हम नव खंड देखे, हट पटन बाजारा, लैके तकड़ी तोलन लागा, घट ही मह वणजारा। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे, दया करहु किस मेहर पावहु। डुबदे पत्थर तारी।

राम का मूड़े फिर पाछ पछताहे रे रहाओ अनता तन तरनी तरे अनत ना चाहे आ जाए अनत को चाहन जो गए से आए अनत गवाए आपन लिया जे मिले ता सब को पागठ होए।

गौड़ी बैरागण महला पहला हरनी हुआ बन वसा कंद मूल चुन खाओ गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हो जाऊं जियो मैं बनजार राम की।

शब्द पछाण सतगुर कै पहे ब्रह्म पहु जाई पैरा कै सच रंग समाई रहाऊ गुर मिले हर मन वसै सुपाई मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

का अलाय बिन बूझे तन मन फीका होए बिन नावै दुखिया चलिया रोए रसना हर रस चाखिया सहज सुपाय गुर कृपा ते सच समाय साचे राती गुर शब्द विचार अमृत पीवै निर्मल तार नाम समावै जो भांडा होए ऊंदै भांडै टिकै ना कोए गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच भांडा जिस शब्द प्यास गौरी गुआरी महला तीजा।

साची वाणी शब्द विचार गावत रहै जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाउ एक गावे है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करह मूर्ख आप जनाव है नच नच टप है बहुत दुख पाव है नचे टपे भगत ना होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत बिचों आप खोए मेरा तब साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाण गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे धात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वडियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाउ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मिकदारा गुर अंकस मार जीवा लनहारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हौ मैं विचों तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा हम मैं विच सब जग बौराना दूजे भाए परम पुलाना बहु चिंता चितवै आप ना पछाना धंधा करतिया आन दिन विहाना हिरदय राम रमहु मेरे भाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाउ गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए तावत वर्जे ठाक रहाई।

होतै पुन तिन हऊ मैं मारी। नानक जो नाम रते तिन को बलिहारी। गौड़ी ग्वारी महला तीजा, तू अकथ क्यों कथिया जाई। गुर शब्द मारन

साई गुरमुख भगत हर नाम समाई आपे दात करे दातार पूरे सतगुर स्यों लगे प्यार नानक नाम रते तिन कहो जयकार गौड़ी ग्वारी महला तीजा।

कह शब्द मलाए वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए नानक नाम रते हर नाम समाए गौड़ी गुवारी महला तीजा मनमुख सूता माया मोहे प्यार गुरमुख जागे गुण।

रहाउ। असंत अनारी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै। अंध अज्ञानी कदे ना सीजै, इस जुग में राम नाम निस्तारा। विरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उदारा। इस कल युग में

नाम जपो हो पवजल उत्तरो हो पार रहाओ परमे आवे परमे जाय एहो जग जन्मया दूजे पाई मन मुख ना चेतै आवे जाय आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया

बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार बंधन बांधियो माया पास जन नानक छूटे गुर प्रगास महला तीजा गौड़ी बैरागण जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है क्या धरती मध्य पानी नाही जैसे धरती मध्य पानी परगासिया बिन पगा वरसत फराही बाबा तू ऐसे परम चुकाही।

तुझे ही माही समाही। इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही। जाका कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही।

अल्लाह चौथा निर्गुण कथा कथा है हर की पज मिल साधु संगत जन की तर पौ जल कथ कथा सुन हर की गोविंद सत संगत मिलाई हर रस रसना राम गुण गाय रहाओ जो जन प्याव है हर हर नामा तिन दासन दास करहु हम रामा जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुनावे सो जन हमरे मन चित पावे जन पग रेन वड भागी पावे।

जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा वड्डा हुए तन खाट दे कर भोग बलासा क्यों हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूरख हर राख मेरे गुसैया जन की उपमा तुझह वडैया रहा मंदर कर आनंद हर हर जस मन पावे सब रस मीठे मुख लगह जा हर गुण गावे हर जन परवार सधार है इक्की ही कुली सब जगत छडावे जो किश किया सो हर किया हर की वड्याई हर जी तेरे तू वरतदा हर पूज कराई हर भगत भंडार लहाईंदा आपे वरताई लाला हाट विहाजिया क्या तिस चतुराई जे राज बहाले ता हर गुलाम कासी को हर नाम कढाई जन नानक हर का दास है हर की वड्याई गौड़ी गुआर भी महला चौथा किरसानी किरसान करे लोचे जियो लाए हल जोतै उदम करे मेरा पुत धी खाए त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए।

हमरै मन चित हर आस नित, क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा, जिन प्रीत लाई सो जानता, हमरै मन चित हर बहुत प्यारा, हाँ कुर्बानी गुरे अपने, जिन बिछड़िया मेलिया मेरा सिरजनहार।

अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे। तुमरे गुण क्या कहां मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सखाए। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले तूके सब सोग संतापे। गौड़ी बैरागण महला चौथा, कंचन नारी मह जियो लुभत है। मोह मीठा माया, कर मंदर घोड़े खुशी, मन अनरस लाया।

कपड़ पहनन दिया रासे अन्न को गाणी जिन दिए सो चेतना आ गई पशु हों कर जानी सब कीता तेरा वरतदा तू अंतर जामी हम जंत विचारे क्या करह सब खेल तुम स्वामी जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यों जननी सुत जन पालती राख नदर मजार अंतर बाहर मुख देह ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन फरंती उड़ती कपरे बागे वाली ओह राखै चीत पीछे बिच बचरे नित हृदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रात केरी कोई जानो मास काती कै किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग न सकै बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावहु जन नानक जो अंति अवसर लए छडाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लही है मेरा

अन दिन अन दया वड भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वड भागी हर मंत्र दिया मन ठाढे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाउ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़े पार उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़े जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गाडन गाडी ज्यो पानी कागद बिन सुजात है क्यों मन मुख गर्भ गलाडी हम जानिया कशु ना जान है आगे ज्यो हर राख है त्यों ठाढ़ी हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे कांडी गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाई पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाई कर साधु अंजलि पुन वड्डाई कर डंडोत पुन वड्डाई रहाउ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हम मैं कंडाई ज्यों ज्यों चल है चुभै दुख पावे जम काल सह सिर डंडाई हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक

चरिता बिसियर कौ बहु दूध पी आई बिक निकसै फोल फलीठा हर प्रभयान मलावु गुर साधु कस गरड़ो शब्द मुख लीठा जन नानक गुर के लाले गोले लग संगत करुआ मीठा गौड़ी पूर्वी महला चौथा।

प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जीव मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपुरा वेख विगस जीव हर नाम मिलिया सोहागनी मेरे गोविंदा मन अन दिन अन दरहस जीव हर पायड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लैलाहा मन हस जीव हर आप उपाय हर आपे वेख हर आपे कार लाया जीव एक खाव है बख्श तोट न आवे एक न फक्का पाया जीव एक राजे तख्त बह नित सुखिये एक न भिख मगाया जीव सब इको शब्द वरतदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम त्याया जीव गौड़ी माज महला चौथा मन माही।

हर हर नाम परगासिया मेरे गोविंदा सब दालत दुख लह जाही दियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा वडभागी नाम समाही दियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किनै हर प्रभ डिठड़ा नैनी जियो मेरा मन पन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा हर बाजो धन कुम लैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रैनी जियो मैं मेलोह संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मन तन भुख लगाइया जियो हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरहो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरा मन तन आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वाधाइया जियो वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हौ तुद विकटण्यो हो सद वारी जियो मेरा मन तन प्रेम परम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो सतगुरु।

हरे आपे सब कट भोगदा मेरे गोविंदा आपे रसिया भोगी जियो हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा आपे सतगुर जोगी जियो आपे जगते उपाए दा मेरे गोविंदा हरे आप खिले बहुरंगी जियो एक ना भोग पुगाए दा मेरे गोविंदा एक नगन फिर है ना

हर कथा मंगह हर चंगी जीओ, हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा। हर भगता लोच मन पूरी जीओ, आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा। रब रहया नहीं दूरी जीओ, हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा। हर आप रहया भरपूरी जीओ, हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा। हर वेखै आप हदूरी जीओ, हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा। हर आप बजाए त्यों वाजै जीओ, हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा। गुर शब्दी हर प्रभ गाजै जीओ, आपे सरन पुआएंदा मेरे गोविंदा। हर भगत जना राख लाजै जीओ, वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा। जन नानक नाम सिद्ध का जय जीओ, गौड़ी माज महला चौथा। मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जीओ, मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जीओ। हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जीओ, मेरा नाम सखा हर पाई जीओ। गुण गावो संत जीओ, मेरे हर प्रभ केरे जीओ। जप गुरमुख नाम जीओ, भाग वडेरे जीओ। हर हर नाम जीओ, प्राण हर मेरे जीओ। फिर बहुड़ ना

मन लगा भाव जियो, गुर शब्दी पाई हर प्रीत मराव जियो, बड़ भागी जप नाउ जियो, मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो, हर मेलो संत जियो, गोविंद प्रभ पासा जियो, सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जियो, जन नानक पूरियड़ी मन आसा जियो, गौड़ी माज महला चौथा, मेरा बिरही नाम मिलै ता जीवा जियो, मन अंदर अमृत गुरमत हर लीवा जियो, मन हर रंग रतड़ा, हर रस

प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो हौ नाम बिटहु कुर्बान जियो हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसहु संतो जी।

सुपने पेखारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किश करे सो हर किया भगता पाया जन नानक कहो मैं मार समाया इन बेद

तिस की ओट निमुख माहि होवै तेरी छोट सदा निकट कर तिसनु जान प्रभ की आज्ञा सत कर मान गुर कै बचन मटाव हो आप हर हर नाम नानक जप जाप गौड़ी गुआर वी महला पंजवां गुर का बचन सदा अबनासी गुर कै बचन कट्टी जम फासी गुर का बचन जी कै संग गुर कै बचन रचै राम कै रंग जो गुर दिया सुमन कै काम संत का किया सत करमान रहाव गुर का बचन अटल अशेद गुर कै बचन कट्टे भ्रम भेद गुर का बचन कतहु ना जाय गुर कै बचन हर के गुण गाय गुर का बचन जी कै साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर कै बचन नरक ना पवै गुर कै बचन रसना अमृत रवै गुर का बचन प्रकट संसार गुर कै बचन ना आवै हार जिस जन होए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी गुआर वी महला पंजवां जिन कीता माटी ते रतन गर्भ मह राखिया जिन कर जतन जिन दीनी सोभा वडियाई तिस प्रभ को आठ पहर त्याई रमैया रेन साध जन पाव गुर मिले अपना खसम त्याव रहाव जिन कीता मूड़ ते बक्ता जिन कीता बेसुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवै निद पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाही।

सास ग्रासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इसते किश नाही राखन हारे कौ सलाही गौड़ी ग्वारी महला पंजवा तिसकी शरण नाही पहु सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखनहार जप मन मेरे राम राम रंग राम।

सेवक काल बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूर रहे हो सब जाए गुरपूर सब परम चकाया हर सिमरत नानक सुख पाया गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बांध लख खरे जे धंदे

हस पवन हस्त असवारी चोआ चंदन सेज सुंदर नारी नट नाटक आखारे गाया तामह मन संतोख न पाया तख्त सभा मंडन दोलीचे सगल मेवे सुंदर बागीचे अखेर बिरत राजन की लीला मन ना सुहिला पर पंच हीला कर कृपा संतन सच कहया सर्ब सुख इहो आनंद लहया साध संग हर कीर्तन गाईए कहो नानक वड भागी पाईए जां कै हर तन सोई सुहेला प्रभ कृपा ते साध संग मेला रहाउ दूजा गौड़ी गुआरवी महला पंजवां।

गाय। कवन सो मत जित तरे एह माए रहाउ, जो पालाई सो बुरा जाने, साच कह सो बिखे सुमाने। जाने नाही जीत अरहार, इहो अलेवा साकत संसार। जो हलाहल सो पीवे बवरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संग कह नाही नेर, लख चौरासी ब्रह्मता पेर। एक जाल फहाए पंखी, रस रस भोग करह बहुरंगी। कहो नानक जिस पये कृपाल, गुरपुर ताके काटे जाल। गौड़ी ग्वारी महला पंजवा, तौ कृपा ते मार्ग पाई। प्रभ कृपा ते नाम ते आई है, प्रभ कृपा ते बंधन छुट्ट। तौ कृपा ते हम मैं तुट, तुम लाभ हो तौ लाग है सेव। हम ते कछु ना हो वै देव रहाउ, तुद पावे ता गावा बाणी। तुद पावे ता सच बखाणी, तुद पावे ता सत गुरमया। सर्ब सुखा प्रभ तेरी दया, जो तुद पावे सो निर्मल कर्मा। जो तुद पावे सो सच धर्मा, सर्ब निदान गुण तुम ही पास। तू साहिब सेव के अरदास, मन तन निर्मल हो।

गुण गाओ। निमक निमक हर हर हर त्याओ, आन ना सुनिय कतु जाइए, साध संगत बड़ पागी पाइए। आठ पहर जिहवे आराध, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद। इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनी अमोली। बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े। आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, मन मंदर तन साजी बार। इस ही मत ही बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह। कवन बापारी जाका उहां वसाह, नाम रतन को व्यवहारी। अमृत भोजन करे आहारी, रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय। कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरै। कमन सो जन जो सौदा जोरै, महल साहा का किन बिद पावै। कमन सो बिद जित पीतर बुलावै, तू वड साह जाके कोट बन जारे। कमन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत निज कर पाया। अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साह। कहो नानक गुर कै विसाह, गौड़ी महला पंजवां गवारी। रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जाने सद ही संगा। ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन। हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे। रहाओ चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है आज्ञाकार। एको बनज एको व्यवहारी, अवर ना जान है बिन निरंकारी। हरख सोग दोहू ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग अर जुगते। दिस है सब मह सब ते रहते, पार ब्रह्म का उए ध्यान धरते। संतन की महिमा कमन बखानो, अगाध बोध किस मित नहीं जानो। पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी गुआरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत। तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना। तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

बसना, निरपो नाम जपूं तेरा रसना। तू मेरी नावनिद तू पंडार, रंग रसा तू मन है आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन ताने अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुरते पाया। सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी गुआरी महला पंजवा, व्यापत हरक सोग विस्थार। व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निरधन पेख सोभा। मूल ब्यादि व्याप सलोभा, माया व्यापत बहु परकारी। संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी, रहाऊ व्यापत हम बुद्ध का माता। व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता, व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता। व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत भूम रंक अर रंगा। व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल शिंगार। पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करे हों फासा। व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा, चार व्यवहार व्यापत एह जात। सब किश व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राए। तां को कहां व्यापै माई, कहो नानक जिन तूर संत पाई। तां कै निकट न आवै माई, गौड़ी गुआर री महला पंजवां।

की खबर ना जाती। मुसनहार पंच बटवारी सुने नगर परे ठगहारी। हुन तेरा कै बाप ना माई हुन तेरा कै मीत ना पाई। दर्ब सियाणप ना होए रहते साध संग ओए दुष्ट वस होते।

पार ब्रह्म स्यों लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुरै मेटिया अन्यहारा नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जा कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ न व्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर त्याई है।

पाल। अगमय गोचर सदा बेअंता, सिमरमना पूरे गुरमंता, जाकी सेवा सर्व निदान प्रभु।

सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जा कह है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रब चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाए बिन हर पव काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी ज्योत जी परगास जाकी बख्शना में तय कोई सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्जन इशना।

मूल, परे पंडार अखूट अतोल, खाव है खर्च है रल मिल पाई, टूट न आवे वध दो जाई।

सेव आद पुरख अपरंपर देव तिसे ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुर मिल सोए गौड़ी महला पंजवां मीत करे सोई हम माना मीत के करतब कुशल समाना एकाटेक मेरे मन चीत जिस किस करना सो हमरा मीत रहाओ मीत हमारा वे परवाहा गुर कृपा ते मोहे असनाहा मीत हमारा अंतर जामी सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दासे तुम ठाकुर मेरे मान महत नानक प्रभ तेरे गौड़ी महला पंजवां जाको तुम पये समरथ अंगा।

सो वड्डा जिन राम निबलाई रहाउ भूमिया भूम ऊपर मित लुजै छोड़ चल तृष्णा नहीं बुझै कहो नानक एहो तत बीचारा बिन हर भजन नाही छुटकारा गौड़ी महला पंजवा पूरा मार्ग पूरा इशनान सब किश पूरा है।

हर कै मार्ग पतत पनीतर, पूरी शोभा पूरा लोकीक, कर्णहार सद वसै हदूरा, कहो नानक मेरा सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवां, संत की तूर मिटे अग कोट, संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट, संत का दर्स पूर्ण इशनान, संत कृपा ते जपिए नाम रहाव, संत कै संग मिटिया अहंकार, दृष्ट आवे सबे कंकार, संत सो प्रसन्न आए वस पंचा, अमृत नाम हृदय लै संचा, कहो नानक जा का पूरा कर्म, तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवां, हर गुण जपत कमल परगासै, हर सिमरत त्रास सब नासै, सा मत पूरी जित हर गुण गावे, बड़े भाग साधु संग पावे रहाव, साध संग पाइय निदनामा।

मुखार हर बोले सो जन इत उत कतह ना डोले जां कै हर तन सो सच साह गुरपूरै कर दीनो विसाह जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवां नाम भगत कै प्राण आधार नाम

नाम भगत कै सुख स्थान, नाम रत सो भगत परवान। हर का नाम जन को तारे, सास सास जन नाम सुमारे। कहो नानक जिस पूरा भाग, नाम संग ताका मन लाग। गौड़ी महला पंजवा, संत प्रसाद हर नाम ते आया। तब ते तावत मन

नाराद भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब ताज अनाथ इक सरण आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द भरम पौ नसया करनहार नानक मन बसया।

नामो सिमरण की बरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाउ नेतर संतन का दर्शन पेख प्रभ अवनासी मन महलेख सुन कीर्तन साध पह जाए जन्म मरण की त्रास मटाए चरण कमल ठाकुर उरतार दलाब दे नानक निस्तार गौड़ी महला पंजवा जाको अपनी कृपा धारे सो जन रसना नाम उचारे हर बिसरत

गुर पूरा पेटिया लिवलाई रहाउ। हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, आनंद पाए गुर।

गुर पूरै जब कृपा करी, भणत नानक मेरी पूरी परी, गौड़ी महला पंजवां, अनक रसा खाई जैसी ढोर मोह।

साध संग मिल पजह गोपाला गौड़ी महला पंजवा काल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी तै बिन से निरपो हर त्याया साध संग हर के गुण गा।

प्राप्त जिस मस्तक भाग कहो नानक ताकी चरणी लाग गौड़ी महला पंजवा सूके हरे किए खिन माए अमृत दृष्ट संख्य जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवक कौ दीनी अपनी सेव रहाओ मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा कर दया सतगुर गुणतासा दुख नाठे सुख आए समाए ढील ना परी जा गुर फुरमाए इच पुन्नी पूरे गुर मिले नानक ते जन सुफल फले गौड़ी महला पंजवा ताप गए पाई प्रभ शांत शीतल पय कीनी प्रभ दात प्रभ कृपा ते पय सोहेले जन्म जन्म के बिछरे मेले रहाओ सिमरत सिमरत प्रभ का नाओ सगल रोग का बिनसे आथाओ सहज सुपाए बोले हर वाणी आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी दुख दर्द जम नेड़ ना आवे कहो नानक जो हर गुण गावे गौड़ी महला पंजवा पले दिनस पले संजोग जित भेटे पार ब्रह्म निर्जोग ओह बेला कहो हौ बल जाओ जित मेरा मन जपै हर नाओ रहाओ सफल मूरत सफल ओह करी जित रसना उचरै हर हरी सफल ओह माथा संत नमस्कारस चरण पनीत चलह हर मार्ग कहो नानक भला मेरा कर्म जित भेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द राख मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे।

हर हर अखर मन मह लेख रव रहिया सरबत स्वामी गुण गावे नानके अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा पै मह रचियो सब संसारा तिस भौ नाही जिस नाम आधारा भौ न व्यापै तेरी सरना जो तुद पावे सोई करना रहाओ सोग हरख मह आवन जाना इन सुख पाया जो प्रभ पाना।

तुमरी कृपा ते दरगाह थाओ, तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ। तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे, पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सच रास। गौड़ी महला पंजवां, तन बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग देह बिगानी रहाओ, नाम बिना नाही मुख भाग, परत विहून

तू है मेरा स्वामी, सब किस तुम ते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवां, ताका दर्श पाईऐ वडभागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कति न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनीजै, दास की धूर नानक को दीजै, गौड़ी महला पंजवां, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण बसै मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवै काम रहाओ, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, विक्रम सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे, गौड़ी महला पंजवां, हृदय चरण कमल प्रभ तारे, पूरे सतगुर मिल निस्तारे, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाओ, दलभ देह होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाए, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवां, गुर जी के दर्शन कौ बल जाओ, जप जप जीवा सत गुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होए परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत धूर पाईऐ वडभागी, नानक गुर भेटत हर सिउं लिव लागी, गौड़ी महला पंजवां, करै दुख कर्म दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर, राम रमै सोई रामाणा, जल थल महियल एक समाना रहाउ, अंतर बिख मुख अमृत सुनावै, जमपुर बाता चोटा खावै, अनक पड़दे मह कमावै विकार, खिन मह प्रगट होए संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस किरपाल विधाता, गौड़ी महला पंजवां, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, संतह संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरै जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पहे निहाल, कहो नानक गुर पहे है दयाल, गौड़ी महला पंजवां, सिमरत स्वामी किल विकनासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिटेओ अंदेसा रहाओ, साध संग कस पौ ना परांती, गुण गोपाल गाय है दिन राती, कर कृपा प्रभ बंदन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई परतीत, निर्मल जस पीवह जन नीत, गौड़ी महला पंजवां, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा, हर धन को वापारी पूरा, जिसे

आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीव हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजे साध रवाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस स्यों आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागे कौडी बदले रतन त्याग है रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुबा अमृत रस खावे है खान पान जिन दिए तिसै ना जाने स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मल लह जाई रहाओ हर की कथारित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जहां कैर दैवसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिन्ना परापत साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परम है बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किश करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनहु बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरे हरनाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरथा कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान।

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवां कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरन सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पय काम जप तप संयम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पय सहाई मान मोह खोए गुर भरम पेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा बिखै राज ते अंधला पारी दुख लागे राम नाम चितारी तेरे दास को तू ही वडियाई माया मगन नरक ले जाई रहाओ।

सदा सदा सिमरो प्रभ स्वामी, मिल नानक हर अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, आठ पहर संगी बटवारी, कर कृपा प्रभ लय निवारी। ऐसा हर रस रमहु सब।

हर को नाम, बिचर संसार पूर्ण सब काम। वड भागी हर कीर्तन गाइए, पार ब्रह्म तू देहे ता पाइए रहाउ। हर के चरण हृदय उरतार, भव सागर चढ़ उतरह पार। साधु संग करहो सब कोय, सदा कल्याण फिर दुख ना होय। प्रेम भगत भज गुणी निदान, नानक दरगाह पाइए मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हर मीत। प्रम बिन से गाए गुण नीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ। जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ। चरण कमल प्रभ हृदय निवास, सगल

सर्वो चतुर सियाणा जिन जन मानिया प्रभ का पाणा जग मह आया सो परवान घट घट अपना स्वामी जान कहो नानक जाके पूर्ण भाग हर चरणी ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवा हर के दास स्यों साकत नहीं संग ओह बिखई ओस राम को रंग।

कर पूजी, सौदे को तावै बिन पूंजी, नानक राम नाम जप चीत, सिमर स्वामी हर सामीत, गौड़ी महला पंजवां, सा मत निर्मल कहियत तीर, राम रसायन पीवत बीर, हर के चरण हृदय कर ओट, जन्म मरन ते होवत छोट रहाओ, सो तन निर्मल जित उपजै न पाप, राम रंग निर्मल प्रताप, साध संग मिट जात बिकार, सब ते ऊज एहो उपकार, प्रेम भगत राते गोपाल, नानक जाचे साध रवाल, गौड़ी महला पंजवां, ऐसी प्रीत गोविंद सिउं लागी, मेल लए पूर्ण वडभागी रहाउ, भरता पेख बिकसै ज्यों नारी, त्यों हर जन जीवै नाम चितारी, पूत पेख ज्यों जीवत माता, ओत पोत जन हर सिउं राता, लोभी आनंद करै पेख तना, जन चरण कमल सिउं लागू मना, बिसर नहीं एक तिल दातार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गौड़ी महला पंजवां, राम रसायन जो जन गीदे, चरण कमल प्रेम भगती बीते रहाउ, आन रसादि सह सब चार, नाम बिना निफल संसार, अंधकूप ते काढ़े आप, गुण गोविंद।

के किल विख खोए, सिमरह साध करह आनंद, मन तन रव्या परमानंद, जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान। गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म तर्म नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, ता की पूर्ण होई काल, जा की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवां, जीवत छाड़ जाहे देवाने।

रहाउ। बिखैठ गौरी जिन जिन खाई, ताकी तृष्णा कबहू न जाई। दारण दुख दुत्तर संसार, राम नाम बिन कैसे उतर सपार। साध संग मिल दोए कुल साध, राम नाम नानक आराध। गौड़ी महला पंजवा, गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी। पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी, पूरा न्याओ करे करतार। अपने दास को राखन हार रहाउ। आद जगाद प्रगट प्रताप, निंदक मुआ उपज वड ताप। तिन मारिया जे रखे न कोई, आगे पाचे मंदी सोए। अपने दास राखे कंठ लाए, शरण नानक हर नाम त्याए। गौड़ी महला पंजवा, महजर झूठा की तुने आप। पापी को लागा संताप, जिसह सहाई गोविंद मेरा। तिस को जम नहीं आवे नेरा रहाउ। साची दरगाह बोले कूड़, सिर हाथ पछोड़े अंधा मूड़। रोग व्यापे कर दे पाप, अदली होए बैठा प्रभ आप। अपन कमाए आपे बांधे, दर्ब गया सब जी कै साथे। नानक शरण परे दरबार, राखी पैज मेरे करतार। गौड़ी महला पंजवा, जन की धूर मन मीठ खटानी। पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी रहाउ। अहम बुद्ध मन पूर थिधाई, साध तूर कर सुध मन जाई। अनक जला जे धोवै देही, मैल न उतरै सुध न तेही। सतगुर भेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया पौ काल। मुकत भुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा।

पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार, निर्मल गुण गावहु नित नीत, गई ब्याद उबरे जनमीत। मन बच क्रम प्रब अपना त्याय, नानक दास तेरी सरनाई, गौड़ी महला पंजवा, नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण पई सेव, रहाउ सीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै, गौड़ी महला पंजवा, तन ओह मस्तक तन तेरे नेत, तन ओए भगत जिन तुम संग हेत, नाम बिना कैसे सुख लही है, रसना राम नाम जस कही है, रहाओ तिन ऊपर जाइए कुर्बान, नानक जिन जपया निर्वाण, गौड़ी महला पंजवा, तू है मसलत तू है नाल, तू है राख है सार संभाल, ऐसा राम दीन दुनी सहाय, दास की पैज रखे मेरे भाई, रहाओ आगे आप इहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर कौ जा।

कहो नानक जिस कृपा तार है, हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचार है। गौड़ी महला पंजवा, थिर कर बैसो हर जन प्यारी, सतगुरु तुमरे काज सुवारी। रहाओ दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारी। बादशाह सहा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निरपो होए भजो भगवान, साध संगत मिल की नो दान। सरन परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जले, हर संग राते माया नहीं चले। हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला। सब पै मिटह तुम्हारे नाई, पेटत संग हर हर गुण गाए। रहाओ हर संग राते मिटै सब चिंता, हर सिंह सो रचै जिस साध का मंता। हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस। हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अन दिन जागे। हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते ब्रह्म पौ नसै। हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए। कहो नानक तिन कहो बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही। गौड़ी महला पंजवा, उदम करत शीतल मन पहे, मार्ग चलत सगल दुख गए। नाम जपत मन पहे आनंद, रस गाए गुण परमानंद। खेम पया कुशल कार आए, पेटत साध संग गई बलाए। रहाओ नेत्र पनीत पेखत ही दर्स, तन मस्तक चरण कमल ही परस। गोबंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया। जन की कीनी आप सहाय, सुख पाया लग दासह पाए। आप गया ताया पह पहे, कृपा निदान की सरनी पए। जो चाहत सोई जब पाया, तब ढूंढन कहां को जाया। अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इशनान, लाख अरब खरब दीनो दान। जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल। पाप मिट है साधु शरण दयाल। रहाओ बहुत उर्द तप साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन अरादे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने। जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सिहों मन माने। अगाध बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे। नानक कहो प्रभ कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया। गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, किसह अराध मेरा मन तीरा। रहाओ अन दिन जपो गुरु गुर नाम, ताते सिद्ध पए सगल काम। दर्शन देख शीतल मन पहे, जन्म जन्म के किल बिख गए। कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवक की आप पैज रखाई। गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवक को आप सहाई। नित प्रतपारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए। कर्ण करावन पूर्ण सच सोए। रहाओ अब मन बसया करने हारा, पै बिन से आत्म सुख सारा। कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाते। कहन न जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास सदा सरनाई। राग गौड़ी चेती महला पंजवा, दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
राम को बलपूर्ण पाई तांते बिरता ना व्यापै काई रहाओ। जो जो चितवै दास हर माई सो सो करता आप कराई निंदक की प्रभ पत गुआई नानक हर गुण निरपो गाई गौड़ी महला पंजवा। पूज बलबीर ब्रह्म सुख सागर गर्त परत गह लिहो अंगुरिया रहाओ। श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगुरिया दीना नाथ अनाथ करना में साजन मीत पिता महतरिया। चरण कमल हृदय गह नानक पै सागर संत पार उतरिया। राग गौड़ी बैरागण महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दई गुसाई मीतला तू संग हमारे बास जियो रहाओ। तुझ बिन करी ना जीवना त्रिग रहना संसार जी प्राण सुख दातिया निमक निमक बलिहार जी। हस्त अलंबन देहो प्रभ गर्त हो उदर गोपाल मोहे निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल। क्या सुख तेरे सम्मला कमन विधि विचार सरल समाई दास हित ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे सो प्रसन्न भय केसवा सेजन हर गुण गाहे। मात पिता सुत बंध पो तू मेरे प्राण आधार साध संग नानक भजै बिख तरिया संसार। गौड़ी बैरागण रोहोए के संत के घर महला पंजवा।

रहाव। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से वड भागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै। जोगी जति सिद्ध हर आहै, जिस है परापत सो हर गुण गाए। ताकि शरण जिन बिसरत नाही, बड़ भागी हर संत मलाही।

आधारी राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोहे परदेसन दूर ते आई नाहिन दर्ब ना जोबन माती मोहे अनाथ की करो समाई खोजत खोजत पई बैरागन प्रभ दर्शन कहो हौ फिरत तसाई दीन दयाल कृपाल प्रभ नान साध संग मेरी जनन बुझाई गौड़ी महला पंजवा प्रभ मिल बे कौ प्रीत मन लागी पाई लगो मोहे करो बेनती को संत मिले बड़ भागी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोहे सगल त्यागी जो प्रभ की हर कथा सुनावे अन दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेट्यो पुरख रसक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवा।

हर तीखन को सिमरत मन मेरा, आस प्यासी चितवों दिन रैनी, है कोई संत मलावे नेरा, रहाओ सेवा करो दास दासन की, अनक पांत तिस करो निहुरा, तुला तार तोले सुख सगले, बिन हर दर्स सबो ही थोरा, संत प्रसाद गाए गुण सागर, जन्म जन्म को जात बोहोरा, आनंद सुख पेटत हर नानक, जन्म किरतार्थ सफल सवेरा, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सहज सुखदाता, मुहे मार्ग दे बताई रहाओ, अंतर अलख न जाई लखिया, विच पड़दा हूं मैं पाई, माया मोहे सबो जग सोया, एहो परम कहो क्यों जाई, एका संगत इकत ग्रह बसते, मिल बात ना करते पाई, एक बस्त बिन पंच दोहेले, वह बस्त अगोचर ठाई, जिसका ग्रहो तिन दिया ताला, कुंजी गुर सौंपाई, अनक अपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुर सरनाई, जिनके बंधन काटे सतगुर, तिन साध संगत लिवलाई, पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद ना पाई, मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई, सहज भया भ्रम खिन मह नाठा, मिल ज्योति ज्योत समाई, रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा, ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीतले, सतगुर मुझे बतायो, रहाओ जत कत देखो तत तत तुम ही,

बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुनोसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एक उठाना गुर पर्दा खोल दिखायो नौ निद नाम निदान एक ठाई तौ बाहर कैठ जायो एक कनक अनक पांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुरु खोई है इव तत्तह तत् मलायो गौड़ी महला पंजवा औज कटै दिन सरह नार।

यह बसन सुहेला यह संसार विकार सहसी मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसह जगाए की आए हर रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सुई विहाजो हो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर महल पाव हो सुख सहजे बहुर ना हुए गो फेरा अंतर जामी पुरख बधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास इही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे गौड़ी महला।

राखुहु राखन हारी, खेद करह और बहुत संताव है, आयु शरण तुहारी, कर कर हारियु अनक बहु भांति, छोड़ है कतहु नाही, एक बात सुन ताकि ओटा, साध संग मिट जाही, कर कृपा संत मिले मोहे, तिन ते धीरज पाया, संती मंत दियो मोहे निरपहु, गुर का शब्द कमाया, जीत लये ओए महा बिखादी, सहज सुहिली बाणी, कहो नानक मन पया परगासा, पाया पद निर्वाणी, गौड़ी महला पंजवा, ओ अबनासी राया, निरपहु संग तुम्हारे बसते,

अनक जन्म बहु जोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मनुख दे पाई है देहो दर्स हर राया सोई हुआ जो तिस पाणा अवर ना किन्ही कीता तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारी कृपा निद दयाला राख ले हो पिता प्रभ मेरे अनाथ है कर प्रतपाला जिसनो तुम है दिखायो दर्शन साध संगत कह पाछ कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बांछ गौड़ी महला पंजवा हौ ता कह बलिहारी जा कह केवल नाम आधारी रहाओ महिमा ता की कीतक गनिए जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन समसारे अवर ना दाते जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परै सो तरिया।

हो प्रभु कृपाला राज जोबन अवध जो दीसै सब किस जोग मह घाटिया नाम निधान सद नव तन निर्मल एहो नानक।

मन की आसा गुर भेटियो हर रंगा नामक जाना भगती पाया मन तन तृप्त अगाए नानक हर जियो तां को देवै जां को हुक्म मनाए गौड़ी महला पंजवां दया मया कर प्राण पत मोरी मोहे अनाथ सरन प्रभ तोरी अंध कूप मह हाथ दे राखो पशु सियानप उकत ना मोरी रहाओ कर्म करावन सब किश तुम ही तुम समरथ नाही अनहोरी तुमरी गातमित तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मथोरी अपने सेवक संग तुम प्रभ राती ओत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी राम संत मह भेद किश नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कहिय प्रगट प्रभ होआ आनंदन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अति ऊचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी नानक को प्रभ की जय कृपा उन संतन कै संग संगोरी गौड़ी महला पंजवां तुम हर से तीराते संत हो नबाहे लेहो मोको पुरख बधाते ओड़ पहचाव हुदाते रहाओ तुमरा मर्म तुमा ही जानिया तुम पूर्ण पुरख बधाते राखो सरन अनाथ दीन को करहो हमारी गाते तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी भांति कर कृपा जिस राखो संगे ते पार पुराते ईत ऊत प्रभ तुम समरथा सब किस तुमरे हाथे ऐसा निदान देहो मोह को हर जन चले हमारे साथे निर्गुण यारे को गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल त्रापे गौड़ी महला पंजवां सहज समायो देव मोह को सतगुर भये दयाल देव रहाओ काट जेवरी कियो दासरु संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोह को अचरज गुरह दिखायो पयो प्रगास सर्व उजियारा गुर ज्ञान मन है प्रगटायो अमृत नाम पियो मन तृप्तिया अनपै ठहरायो मान आग्या सर्व सुख पाए दुखा ठाऊ गवायो जो सो प्रसन्न पये प्रभ ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किस आवत ना किस जावत सब खेल कियो हर रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकुर भगत टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवां पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ता कियो टगी जैरे जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ता को नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्याग हो हर जन हुक्म बूझ सुख पाई रे जो प्रभ करे सोई भल मानो सुख दुख ओही त्याई रे कोट पतत उधारी खिन मैं करते बार ना लागे रे दीन दर्द दुख भंजन स्वामी जिस भावे तिस

इस करते पूर रहे हो रतनागर रे। जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी, कट कट अंतर सोई रे। नानक दास तां की सरनाई, जाते वृथा ना कोई रे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर कबहू ना मनहु बिसारे, इहां उहां सर्ब सुख दाता। सगल कटां प्रित पारी रहाओ, महा कष्ट काटे खिन पीतर। रसना नाम चितारी, शीतल शांत सुख हर सरनी। जलती अग्नि निवारी, गर्भ कुंड नरक ते राखै। पव जल पारी उतारी, चरण कमल अराधत मन में। जम की त्रास बदारी, पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर। ऊंचा अगम अपारी, गुण गावत त्यावत सुख सागर। जुए जन्म ना हारी, काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो। निर्गुण के दातारी, कर कृपा अपनो नाम दीजै। नानक सद बलिहारी। राग गौड़ी चेती महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म एहो रतन अमोलक। साध संगत जप एक खिना रहाव, सुत संपत बंता बनोद। छोड़ गए बहु लोग भोग, हैवर गैवर राज रंग। त्याग चल्यो है मूढ़ नंग, चोआ चंदन देह फूलिया। सो तन धर संग रूलिया, मोहे मोहिया जाने दूर है। कहो नानक सदा हदूर है। गौड़ी महला पंजवा, मन धर तरबे हर नाम नु। सागर लहर संसार संसार, गुर बोहित पार ग्राम नु रहाओ। कल कालख अंधियारिया, गुर ज्ञान दीपक उजियारिया। बिख बिखिया पसरी अत घनी, उबरे जप जप हर गुनी। मतवारू माया सोया, गुर भेटत भ्रम पौ खोया। कहो नानक एक त्याया, घट घट नदरी आया। गौड़ी महला पंजवा, दीवान हमारू तुही एक। सेवा थारी गुरह टेक रहाओ, अनक जुगत नहीं पाया। गुर चाकर ले आया, मारे पंच बिखा दिया। गुर कृपा ते दल साध्या, बख्शीस वजहो मिल एक नाम। सुख सहज आनंद विश्राम, प्रभ के चाकर से भले। नानक तिन मुख उजले, गौड़ी महला पंजवा। जी अरे ओला नाम का, अवर जे करन कराम नु। तिन मह पहो है जाम का रहाओ, अवर जतन नहीं पाई है। वड्डे भाग हर त्याई है, लाख हिकमती जानी है। आगे तिल नहीं मानी है, हम बुद्ध कर्म कमावने। ग्रह बालू नीर बहावने, प्रभ कृपाल कृपा करे। नाम नानक साधु संग मिले, गौड़ी महला पंजवा। बार ने बलिहार ने लख बरिया, नामो हो नाम साहिब को। प्राण अधरिया रहाओ।

करे खसम हमारा, खिन मह साज सवार नहारा, काम करी जे ठाकुर पावा, गीत चरित प्रभ के गुण गावा, सरन परयो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन धीरा, एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा, गौड़ी महला पंजवा। है कोई ऐसा हूं मैं तोरै, इस मीठी ते एहो मन हो रह रहा, अज्ञानी मनुख भया, जो नाही सो लोरै, रैन अंधारी कारिया, कमन जुगत जित पूरै, प्रम तो हारिया, अनक विधि कर टोरै, कहो नानक कृपा पही, साध संगत निद मोरै, गौड़ी महला पंजवा। चिंता मन करना मई रहाओ, दीन दयाला पार ब्रह्म, जांकै सिमरन सुख भय, अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग खय, कृपा निद प्रभ मया तार, नानक हर हर नाम लय, गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। मेरे मन सरन प्रभु सुख पाए, जान दिन बिसरै प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाय रहाओ, एक रैन के पहुन तुम आए, बहु जुग आस बंधाए, ग्रह मंदर संपै जो दिसै, ज्यों तरवर की छाए, तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए, देवनहारा बिसरियो ठाकुर, खिन मह होत पराए, पहरे बागा कर इशनाना, चोआ चंदन लाए, निरपहो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यों हस्ती नवाए, ज्यों होए कृपाल, ता सतगुर मेले, सब सुख हर के नाए, मुक्त भया बंधन गुर खोले, जन नानक हर गुण गाए, गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। मेरे मन गुर गुर गुर

हरफन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलहरिय रहाव। जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइय। जो हुए दयाल सतगुरे अपना, ता एह मत बुद्ध पाइय। मेरे मन नाम लए जम बंद ते छूटह, सर्व सुखा सुख पाइय। सेव स्वामी सतगुर दाता, मन बंचत फल आइय। नाम इष्ट मीत सुत करता, मन संग तुहार चल। कर सेवा सतगुरे अपने की, गुर ते पाइय पल। गुर कृपाल कृपा प्रभ धारी, बिनसे सर्व अंदेसा। नानक सुख पाया हर कीर्तन, मिट्यो सगल कलेशा। राग गौड़ी महला पंजवां।

अनक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजिए अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजिए जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजिए गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड धर हो।

आ भगत प्रिय हो गौड़ी महल्ला पंजवा गुण कीरत निद मोरी रहाओ तू ही रस तू ही जस तू ही रूप तू ही रंग आस।

कर कीर्तन हुए उदार। राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पायो बाल बुद्ध सुखरे, हरख सोग मान मृत दुख सुख। चित समसर गुर मिले रहाओ, जो लो हो किस सोचो चितो तौलो।

तेते बंद परे जो साधु कर्मस्तक धरियो तब हम मुक्त भए जो लो मेरो मेरो करतो तो लो बिख केरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चलियो तो लो दान भरे पोट दार गुरु पूरा मिलिया तो नानक निरभय गौड़ी माला महला पंजवा भावन त्यागियो री त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आग्यो रहाओ मान अभमान दो समाने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरख न आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो बास बासरी एक स्वामी उद्यान दृष्टाग्यो निरपौ भये संत भ्रम डार्यो पूर्ण सर्वाग्यो जो किस करतै कारण कीनो मन बुरो न लाग्यो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जाग्यो जन नानक ओड़ तुहारी परयो आयो सरनाग्यो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लाग्यो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन सीतल मन सीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख त्रिशन सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुरु पूरे तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकर जो पेटे हो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंभव सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भये बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते धरनी रहाओ सास्त सिमरत वेद बिचारी महापुरखन इउं कहिया बिन हर भजन नाही निस्तारा सूख ना किन्हू लहिया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूजत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावे फिर तो पहरे पहरे अनक बलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा जल तो कबहू ना बूजत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारे नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको एह बिद को समझावे करता होए जनावे रहाओ अनजानत किश इन्ह कमानो जप तप कशु ना साधा दह दिस लै इह मन दौरायो कमन कर्म कर बांदा मन तन धन भूम का ठाकुर हौ इसका इह मेरा परम मोह कस सूजस नाई एह पैखर पए पैरा तब एह कहां कमावन परया जब एह कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपह करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन एह रचन रचाया कहो नानक करन हार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिरथे जप तप संयम कर्म कमाणी एह ओरे मूसे रहाओ वरत नेम संयम मह रहता तिनका आड़ ना पाया आगे चलन और है भाई ऊहा काम ना आया तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता।

जियो, तिस निव निव लागो पाई जियो, ओथी पंडत बेद खोजंता जियो, होए बैरागी तीर्थ नावंता जियो, गीत नाद कीर्तन गावंता जियो, हर निरपो नाम त्याई जियो, पये कृपाल स्वामी मेरे जियो, अथत पवित्र लग गुर के पैरे जियो, प्रम पहु काट किए निरवैरे जियो, गुर मन की आस पुराई जियो, जिन नाओ पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभा वंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सुकरनी जियो, जन नानक सहज समाई जियो, गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस सास सास चितारे जियो, संत देव

वाण तेन त्रे पवन सुख परमानंदा जीओ सेज सुहावी इहो मन बिकसंदा जीओ पेख दर्शन इहो सुख लहिया जीओ चरण पखार करी नित सेवा जीओ पूजा अर्चा बंदन देवा जीओ दासन दास नाम जप लेवा जीओ बिनो ठाकुर पै कही है जीओ इस पुन्नी मेरी मन तन हरिया जीओ दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जीओ हर हर नाम जपे जप तरिया जीओ एहो अजर नानक सुख सही है जीओ गौड़ी माज महला पंजवा सुन सुन साजन।

नारायण दयो गुर गुर सच्चा सिरजनहार गुर तुठे सब किछ पाया जन नानक सद बलिहार गौड़ी माज महला पंजवा हर राम राम राम रामा जप पूर्ण होए कामा रहा राम गोबिंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र हर जस सुनिए जिस ते सोई भाई मित्र सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोविंद मनो विसारी है जिस सिमरत दुख जाए जिस लड़ लगे जीवी है भवजल पई है पार मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास गौड़ी बाज महला।

होर साध सब फिक्किया तन मन फिक्का होय बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोय अंचल गह कह साधका तरना एहो संसार पार ब्रह्म आरादी है उदरै सब परवार साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे औगण सब मटाए कह पर उपकार करे मालक जाना थे हो कर हर

कार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी महला नौवा साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहन सपागो रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना हरख सोग ते रह अतीता तिन जग तत पछाना पुस्तक निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा जन नानक एहो खेल कथन है किन्हूं गुरमुख जाना गौड़ी महला नौवा साधु रचना राम बनाई एक बिनसै एक अस्थर मान अचरज लखियो ना जाई रहा काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई झूठा तन साचा कर मान्यो

रहियो राम सरनाई गौड़ी महला नौवा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एहन समग्न रहे माया में। कहो कैसे गुण गावे रहाओ, पूत मीत माया ममता स्यों। एह विद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो झूठो इहो जग। देख तास उठ तावे, भुगत मुक्त का कारण स्वामी। मूड ताहे बिसरावे, जन नानक कोटन में को। भजन राम को पावे, गौड़ी महला नौवा। साधो एहो मन गहियो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है। याते थिर ना रहाई रहाओ, कठन क्रोध घट ही के भीतर। जेहे शुद्ध सब बिसराई,

तौ सब बिद बन आई गौड़ी महला नौ। साधु गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काहे गवावो रहाओ। पतत पनीत दीन बंद हर सरन ताहे तुम आवो गज को त्रास मिट्यो जेह सिमरत तुम काहे बिसरावो। ताज अवमान मोह माया पुन भजन राम चित लावो नानक कहत मुक्त पंत एहो गुरमुख हुए तुम पावो। गौड़ी महला नौवा को माई भूल्यो मन समझावै वेद पुराण साध मग सुन कर निमख न हर गुण गावै रहाओ। दुर्लभ देह पाए मानस की बिरथा जन्म सरावै माया मोह महा संकट बन तास्यो रुच उपजावै। अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो नेहो न लावै नानक मुक्त ताहे तुम मानो जेहे कट राम समावै। गौड़ी महला नौ साधो राम सरन बिसरामा वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नामा रहाओ। लोभ मोह माया ममता फुन औ बिखियन की सेवा हरख सोग परसै जे नाहिन सो मूरत है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिख ए सब

प्राणी गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां भयो तै बौरा अहनस औद कटै नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहा जो तन तै अपनो कर मान्यो हर सुंदर ग्रह नारी इनमें कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रत्न जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख नालीन भयो चरणन सियो बिरथा औदिस रानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावे गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पार रे रहाओ वेद पराण जास गुण गावत ताको नाम ही है मोह धर रे पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उतर रे राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निध सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी विमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख ठाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यों लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साद रहे बादंग अहंकारा चित हर स्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी राचो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे सुमाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना नह भूलो नह परम पुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहज सुमाना गौड़ी गुआर री महला पहला मन कुंचर काया उद्यान गुरु अंकस सच शब्द निशान राज द्वार है सोभ सो मान चतराई न चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर्म है अमृत तस कर ले नन्ना कार न कोई करे राख है आप वड्याई दे नील अनिल अग्न एक ठाई जल निवरी गुरबूज बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा में आँखों कैसा सागर डूंघर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन न डरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने तीने पौन जिन कहया तिन कहन बखानिया जिन बूझया तिन सहज पछानिया देख बीचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त एक नाई तही निरंजन रहया समाई निज कर व्याप रहया निज ठाई पुस्तत करह केते मन प्रीत तन मन सूचै साच सोचीत नानक हर पज नीता नीत गौड़ी गुआर री महला पहला ना मन मरै न कार्ज होय मन वस दूता दुरमत दोय
मन माने गुरते एक होए, निर्गुण राम गुण वस होए, आप निवार बिचारे सोए रहाओ। मन भूलो बहु चित विकार, मन भूलो सिर आवे भार, मन माने हर एक अंकार, मन भूलो माया घर जाए, काम गुरु दूर है ना ठाए, हर भज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर कंचन सुत।

मेल मलाए गुण संग्रह औगण शब्द जलाए गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावे सब दुख निवास मनमुख मूड माया चितवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखे आस मन चंचल धावत फुन धावे साचे सूचे मैल ना भावे नानक गुरमुख हर गुण गावे गौड़ी ग्वार री महला पहला हौ मैं करत्या नह सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बगूते भावे दोए सो कमावे तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मांगे नाम बिसारी रहाउ अदिष्ट दिसै ता कहया जाय बिन देखे कहना बिथा जाय गुरमुख दिसै सहज सुभाय सेवा सुरत एक लिवलाय सुख मांगत दुख आगल होए सगल वकारी हार परोए एक बिना झूठ।

लोए नारी पुरख सबाई लोए रव सस देखो दीपक उजियाला सर्व निरंतर प्रीतम बाला कर कृपा मेरा चित लाया सतगुर मोह को एक बुझाया एक निरंजन गुरमुख जाता दूजा मार शब्द पछाता एको हुक्म वरतै सब लोई एक सते सब उपत होई राह धोवै खसम एको जान गुर कै शब्द हुक्म पछान सगल रूप वर्ण मन माही कहो नानक एको सलाही गौड़ी महला पहला अध्यात्म कर्म करे ता साचा मुक्त भेद क्या जाने काचा ऐसा जोगी जुगत बीचारे पंच मार साच उर तारे रहाओ जिसके अंतर साच वसावे जोग जुगत की कीमत पावे रव सस एको ग्रह उद्यान करनी कीर्त कर्म समान एक शब्द एक भिख्या मांगे ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे तै रच रह ना बाहर जाए कीमत कौन रह लिव लाए आपे मेले परम चुकाए गुर प्रसाद परम पद पाए गुर की सेवा शब्द विचार हों मैं मारे करनी सार जप तप संयम पाठ पुराण कहो नानक अपरम परमान गौड़ी महला पहला खिमा गही व्रतशील संतोखं रोग ना व्यापै ना जम दुखं।

0: पौ जोगी निरंजन त्यावे अन दिन जागे सच लिवलावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारी जरा मरण गत गर्भ निवारी आप करे पितरी निस्तारी सतगुर सेवे सो जोगी होए पैर अच रह सो निरपो होए जैसा सेवे तैसो होए नरम केवल निरपो नाओ अनाथ नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्दे आप छाने
1: साचे शब्द दर निसाने
0: शब्द मरै तिस निज कर वासा आवे न जावे चूके आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दिसै सो आसन रासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिलै उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिलै सुख होई दुख विसरै पावे सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठसठ मज्जन चरना धूरी रहाव नेत्र संतोखे एक लिवतारा जेवा सूची हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन तृप्ता सिया अलख अपेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूझे झगरत जग काचा गुर समझावे सोजी होई गुरमुख विरला बूझै कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु भये बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रि भवन धारी

क्यों सुख पावे भरम भुलानिया एक तिल भूले बहुर पछतानिया कंस केस चंडूर ना कोई राम ना चीनिया अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राखे कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमत धर्म धीर जहर नाए नानक नाम मिले गुण गाए गौड़ी महला पहला चोआ चंदन अंक चढ़ावो पाठ पटंबर पहर हंडावो बिन हर नाम कहां सुख पावो क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो बिन जगदीश कहां सुख पावो रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला लाल निहाली फूल गुलाला बिन जगदीश कहां सुख पाला नैन सलोनी सुंदर नारी खोड़ शिंगार करे अत प्यारी बिन जगदीश भजे नित खुआरी दर कर महला सेज सुखाली अहनस फूल बिछावे माली बिन हर नाम सो देह दुखाली हैवर गैवर नेजे वाजे लश्कर ने बखवासी पाजे बिन जगदीश झूठे देवाजे सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बलावो ताज कुल है सिर शत्र बनावो बिन जगदीश कहां सच पावो खान मलूक कहावो राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सवरस काजा हों मैं ममता गुर शब्द वसारी गुरमत जानिया हृदय मरारी प्रणवत नानक शरण तुम्हारी गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जान से अवरे परपंच ब्याद क्या गै कवरे भाई मिले सच सच है सच रे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाए मिले मन धोई रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत अग्न जगत पर जारे सो उबरै गुर शब्द बीचार।

अनहितकारी क्रोध बनासै सगल विकारी तत मत खोवै नाम वसारी पर कर चीत मनमुख डोलाए गल जेवरी धंधै लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यों तन विधवा पर को देई काम दाम चित पर वस से बिन पिर त्रिपत ना कबहू होई पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद प्राण पढ़ै सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी त्रिपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरै न लेखै पावै वेस करै बहु भस्म लगावै नाम विसार बहुर पछतावै तू मन हर जियो तू मन सुख नाम बसार सह जम दुख रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर माया मगन परम पद दूर नाम बसारे है सब कूड़ो कूर नेजे वाजे तखत सलाम अदकी तृष्णा व्यापै काम बिन हर जाचे भगत ना नाम वाद अहंकार नाही प्रभ मेला मन दे पावह नाम सुहेला दूजे पाए अज्ञान दुहेला बिन दम के सौदा नहीं हाट बिन बोहित सागर नहीं वाट बिन गुर सेवे घाटे घाट तिसको वाह वाह जे वाट दिखावे तिसको वाह वाह जे शब्द सुनावे तिसको वाह वाह जे मेल मलावे वाह वाह तिसको जिसका एहो जियो गुर शब्दी मत अमृत पियो नाम वडाई तुद भाणै दियो नाम बिना क्यों जीवा माए अन दिन जपत रहो तेरी सरनाए नानक नाम रते पत पाए गौड़ी महला पहला हऊ मैं करत भेखी नहीं जानिया गुरमुख भगत बिरले मन मानिया हौ हौ करत नहीं सच पाईऐ हऊ मैं जाए परम पद पाईऐ रहाओ हऊ मैं कर राजे बहुतावह हऊ मैं खपह जन्म मर आवह हऊ मैं निवरै गुर शब्द विचारै चंचल मत त्यागै पंच संघारै अंतर साच सहज घर आवह राजन जान परम गत पावह सच करनी गुर परम चकावह निरपो कै घर ताड़ी लावे हौ हौ कर मरना क्या पावे पूरा गुर भेटे सो झगड़ चकावे जेती है तेती केहो नाही गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही हौ मैं बंधन बंद पवावे नानक राम भगत सुख पावे गौड़ी महला पहला प्रथमे ब्रह्मा काले घर आया ब्रह्म कमल पयाल ना पाया आग्या नहीं लीनी भरम भलाया जो उपजै सो काल संघारिया।

आकाश पताला गुरमत नाम ना विसरै सहजे पत पाई अंतर शब्द निधान है मिल आप गवाई है नदर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावै नानक मेल ना चूकई लाहा सच पावे गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए नबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यों कही है बिन गुर पंथ ना सूझई कित बिद निर्बही है।

अपनो नहीं पाया, मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता, चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दिस, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रिस, इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक चीन आप को, सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर किरपा ते बूजी है, सब ब्रह्म समाया, राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ, मनमुख सूतक कबह ना जाए, जिचर शब्द ना पीजे हर कह नाए रहाओ, सबो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जम्मे वारो वार, सूतक अगन पौणे पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाए, सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रत्ते मन निर्मल होए, सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे ना जन्मे काल ना खाए, सास्त सिमरत सोध देखो कोय, विण नामे को मुक्त ना होए, जोग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मह गुरमुख उतरस पार, साचा मरे ना आवे जाय, नानक गुरमुख रह समाय, गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उरतारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा, पंडित हर पढ़ तजोह विकारा, गुरमुख भोजन उतरोह पारा, रहाओ गुरमुख विचो होमे जाय, गुरमुख मैल ना लागे आय, गुरमुख नाम वसै मन आय, गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रत्ते सुख होई, अपना मन प्रबोध हो बूझो हो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई, गुरमुख समझो हो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहुत चतराई, जो किछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे थौर ना काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बाग ज्यो लाए बह नित ध्याना, जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई।

चतुराई। गौड़ी महल्ला तीजा, किस युग का धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुर सब सो जी पाई, एथे अग्गे हर नाम सिखाई, राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। वाह।

एहु संसारा नित तीर्थ नावै न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हऊ मैं मारै गुर कै शब्द पंच संघारै आप तरै सगले कुल तारै माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई।

फिरै अहंकारी, आप ना चीनै बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोहे अत परम पलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रत्ते सदा बैरागी, गिरही अंतर साच लिवलागी, नानक सतगुर सेवह सेवड भागी, गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिसते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण भरमे नाही निज घर वासा, हम हर राखे सतगुरु मलाया, अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया, रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पड़वाद बखाण है सिर मारे जमकाला, तापना चीन है बन है पांड पराला, मनमुख अज्ञान कुमारग पाए, हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए, पवजल डूबे दू जय पाए, माया का मोहताज पंडित कहावे, बिख्या राता बहुत दुख पावे, जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे, गुरमुख जम काल नेड़ ना आवे, हौ मैं दूजा शब्द जलावे, ना मेरा ते हर गुण गावे, माया दासी भगतां की कार कमावे, चरणी लागे ता महल पावे, सद ही निर्मल सहज समावे, हर कथा सुन है से तनवंत दिस है, जो गुमाही तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही, सहजे गुण रवह साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया।

पाया गुर कै शब्द सीधे सतगुर मेले प्रभ आप मलाए मेरे प्रभ साचे कै मन पाए हर गुण गावे है सहज सुपाए बिन गुर साचे परम पलाए मनमुख अंधे सदा बिख खाए जम डंड सह सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की सरनाई हौ मैं मार सच लिवलाई सदा रह हर नाम लिवलाई सतगुर सेव है से जन निर्मल पवित्ता मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता इन बिद कुशल तेरे मेरे मीता सतगुरु सेवे सो फल पाए हिरदय नाम विचों आप गवाए अनहद बाणी शब्द वजाए सतगुर ते कमन कमन ना सीधो मेरे भाई भगती सीधे दर सोभा पाई नानक राम नाम वड्याई गौड़ी महला तीजा त्रै गुण बखाणे भरम ना जाए बंधन ना टूटे है मुक्त ना पाए मुक्त दाता सतगुर जुग माहे गुरमुख प्राणी भरम गवाए सहज तुन उपजे हर लिवलाए रहाओ त्रै गुण काले की सिर कारा नाम ना चेत है उपावन हारा मर जम है फिर वारू वारा अंधे गुरु ते भरम ना जाई मूल छोड़ लागे दूजे पाई बिख का माता बिख माही समाई माया कर मूल जंतर परमाई हर जी

आए साच ना छपे जे को रखै छुपाए ज्ञानी बूझ सहज सुपाए गुरमुख साच रहिया लिभलाए हमे माया शब्द जलाए मेरा प्रभ साचा मेल मलाए सतगुर दाता शब्द सुनाए धावत राखै ठाक रहाए पूरे गुर ते सोजी पाए आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावे नामो सेवे नाम सहज समावे अमृत नाम रसना नित गावे जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे अनगिन हिरदय जपो जगदीसा गुरमुख पावो परम पद सूखा रहाओ हिरदय सूख पया परगास गुरमुख गावह सच गुण तास दासन दास नित होवह दास ग्रह कटंब मह सदा उदास जीवन मुक्त गुरमुख को होई परम पदार्थ पावै सोई त्रै गुण मेटे निर्मल होई सहजे साच मिले प्रभ सोई मोह कटंब स्यो प्रीत ना होई जां हिरदय वसिया सच सोई गुरमुख मन भेदिया अस्थिर होई।

सोए नाम रतन सब जग महलोए। गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसे अन दिन लिव लागी। सहजे सच मिलिया प्रसादी सतगुर पाया पूरे वड भागी। हौ मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास। गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हृदय रविया चरण निवास। जिस नाम दे सोई जन पाए गुरमुख मेले आप गवाए। हृदय साचा नाम वसाए नानक सहजे साच समाए। गौड़ी मोहल्ला तीजा मन ही मन सवारिया पै सहज सुपाए। शब्द मन रंगिया लिवलाए निज कर वस्या प्रभ की रजाए। सतगुर सेवया जाए अभमान गोविंद पाईए गुणी निदान। रहाओ मन बैरागी जा शब्द पौ खाए। मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहया समाए। गुर

मन करहला अत निर्मला, मल लागी हूं मैं आई, प्रतख पीर घर नाल प्यारा, विछड़ चोटा खाए। मन करहला मेरे प्रीतमा, हर हृदय पाल पलाए, उपाय कित न लभई, गुर हृदय हर देखाए। मन करहला मेरे प्रीतमा, दिन रहन हर लिवलाए, कर जाए पावह रंग महली, गुर मेले हर मिलाए। मन करहला तू मीत मेरा, पाखंड लोभ तजाए, पाखंड लोभी मारिए, जम डंड दे सजाए। मन करहला मेरे प्राण तू, मैल पाखंड परम गवाए, हर अमृत सर गुर पूरिया, मिल संगती मल लह जाए। मन करहला मेरे प्यारिया, एक गुर की सिख सुनाए, एहो मोह माया पसरिया, अंत साथ ना कोई जाए। मन करहला मेरे साजना, हर खर्च लिया पत पाए, हर दरगाह पहनाया, हर आप लया गल लाए। मन करहला गुर मन्या, गुरमुख कार कमाए, गुर आगे कर जोदड़ी, जन नानक हर मेलाए। गौड़ी महला चौथा, मन करहला विचारिया, विचार देख संभाल, बन फिर थके बनवासिया, फिर गुरमत हृदय निहाल। मन करहला गुर गोविंद संभाल रहाओ, मन करहला विचारिया, मनमुख फाथिया महाजाल, गुरमुख प्राणी मुक्त है, हर हर नाम संभाल। मन करहला मेरे प्यारिया, सत संगत सत गुर भाल, सत संगत लग हर त्याई है, हर हर चले तेरे नाल। मन करहला वडभागिया, हर एक नदर निहाल, आप छडाए छुट्टी है, सत गुर चरण संभाल। मन करहला मेरे प्यारिया, विच देही जोत संभाल, गुर नौनिध नाम वखालिया, हर दात करी दयाल। मन करहला तू चंचला, चतराई छड विकराल, हर हर नाम संभाल तू, हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला बड़ भागिया, तू ज्ञान रतन संभाल, गुर ज्ञान खड़ग हाथ धारिया, जम मारियड़ा जमकाल। अंतर निदान मन करहले, भ्रम पवह बाहर पाल, गुर पुरख पूरा भेटिया, हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन करहले, हर रंग सदा संभाल, हर रंग कदे ना उतरे, गुर सेवा शब्द संभाल। हम पंखी मन करहले, हर तरवर पुरख अकाल, वड भागी गुरमुख पाया, जन नानक नाम संभाल। राग गौड़ी गुआरी महला पंजवां, अष्टपदिया एक ओंकार सतनाम, करता पुरख गुर प्रसाद। जब इहु मन मह करत गुमाना, तब इहु बावर फिरत बेगाना, जब इहु हुआ सगल कीरी ना, ता तेर मैया कट कट कीना, सहज सुहेला फल मशकीनी, सतगुरे अपने मोहे दान दीनी रहाओ। जब किसको इहु जानस मंदा, तब सगले इस मेलह फंदा, मेर तेर जब इन्ह चुकाई, ताते इस संग नहीं बैराई। जब इन्हें अपनी अपनी तारी, तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करने हार पछाता, तब इसनो नाही किस ताता। जब इन अपनो बांधियो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा, भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किस कर माने पेदा, तब ते दुख दंड अर खेदा, जब इन एको एकी बूझिया, तब ते इसनो सब किस सूझिया। जब इह तावे माया अर्थी, नह त्रिपतावे नह ते सलाथी, जब इसते इह होयो जौला, पीछे लाग चली उठ कौला,
कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदर मह दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी, कर्ण करामन सब किश एक है, आपे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना नेरे सब कै संगा, सच सलाहन नानक हर रंगा, गौड़ी महला पंजवा, गुर सेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा, तिसकै हिरदय रविया सोए, मन तन सीतल निश्चल होए, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे रहाओ, जास जपत पहु अपदा जाए, तावत मनुआ आवे ठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत एह हो मैं भागे, जास जपत वस आवे पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत एह तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगाह सिजे, जास जपत कोट मिट है अपराध, जास जपत हर हो वह साध, जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे, जास जपत रतन हर मिले, बहुर न छोड़े हर संग हिले, जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सहज निवास, जास जपत एह अग्न ना पोहत, जास जपत एहो काल ना जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाथा, जास जपत मुश्किल कछु ना बने, जास जपत सुन अनहत तुने, जास जपत एह निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए, गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर तारे, पंच जना स्यो संग निवारे, दस इंद्री कर राखे वास, ताकै आत्मै होए प्रगास, ऐसी दृढ़ता ताकै होए, जाको दया मया प्रभ सोए रहाओ, साजन दुष्ट जाकै एक समान, जीता बोलन तेता ज्ञान, जीता सुनना तेता नाम, जीता पेखन तेता ध्यान।

जपना, सहजे पूजन सहजे पाओ, सहजे मिट्यो सगल दुराओ, सहजे हुआ साधु संग, सहज मिलियो पार ब्रह्मन संग, सहजे ग्रह में सहज उदासी, सहजे दुबदा तन की नासी, जाके सहज

सहज कथा मह आत्म रसिया तां कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया तां कै तार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवां प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबह ना तरे तमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रै गुण माया बिनस बिताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुरक अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दिसै पासारा बिनस जाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहां सद वसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे तां का विचार कहो नानक जिस कृपा करे निचल थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वडियाई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुबदा मार गवावे इसह मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे जो इस मारे सो दरगाह सिजे जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवे गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वडभागा जो इस मारे सो अनदिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परै कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटै इस मारी बिन जमते नहीं छुटै इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किछ मैला इस मारी बिन सब किछ जौला जाको पये कृपाल कृपा निद तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जाकी है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवां हर स्यो जुरै ता सबको मीत हर स्यो जुरै ता निश्चल चीत हर स्यो जुरै ना व्यापै काड़ा हर स्यो जुरै ता हुए निस्तारा।

आस नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदर है। कोट मज्जन जा कै सुन नाम, कोट पूजा जा कै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की वाणी, कोट फला गुरते भिद जानी। माने अपने मैं फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबनासी

कह पांत, जाकी दृष्ट हुए सदा निहाल, मन मेरे करता की काल, ना को चतर ना ही को मूड़ा, ना को हीन ना ही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस भागा, गौड़ी महला पंजवां, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीवे है साकत नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन मह जिया, कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाव, बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिस्ता महवास, बिन सिमरन पय कुकर काम, साकत बेसोआ पूत नाम, बिन सिमरन जैसे सींग सतारा, बोलह कूर साकत मुख कारा, बिन सिमरन घर दब की न्याई, साकत थान पृष्ट फराई, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंद ना पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती, जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया, कहो नानक गुर जगत तराया, गौड़ी महला पंजवां, गुर कै बचन मोहे परम गत पाई, गुर पूरै मेरी पैज रखाई, गुर कै बचन त्यायो मोहे ना।

गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप। गुर कै बचन मिटिया मेरा परम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म। गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग। गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निद। जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, तिस की कटिया जम की पासा। गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवां, तिस गुर को सिमर।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन गुर मोह को दीना जियो, अपना दस राय आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार।

था। गौड़ी महला पंजवां, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असने।

ज्यों मृतक मिथ्या श्रृंगार नाम बसार करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनुकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावे कोट कर्म करतो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुरबादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद ज्यो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहै हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख पूर

सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग, पूर्ण पुरख नव तन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन, सर्बस नाम भगत कौ दीन। राग गौड़ी माज महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खोजत फिरे

आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया बाजो प्यारे कोई ना सारे ए कलड़ी कुरलाए नानक सा तन मिले मलाई बिन प्रीतम दुख पाए फिर छोड़ियाड़ी जियो कवन मलावे रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावे शब्दे सुहावे तां पत पावे दीपक देह उजारे सुन सखी सहेली साच सुहेली साचे के गुण सारे सतगुर मेली तां फिर रावी बिगसे अमृत बाणी नानक सा तन तां फिर रावे जां तिसकै मन पाणी माया मोहनी नी करिया जियो कूड़ मुट्ठी कूड़े आरे क्यों फूलै गल जेवड़िया जियो बिन गुर अत प्यारे हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवै उन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल धोवै नाम बिना गत कोए ना पावै हठ निग्रह बेबाणै नानक सच कर शब्द सियापै दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जीऊ।

भगत लाहा अन दिनु तिस बाज वखर कोई ना सूजे नाम लेव खिन खिनु परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक नाम महारस मीठा गुर पूरे सच पाया राग गौड़ी पूर्वी संत महला तीजा।

हर के गुण सारे। हिन पल रह न सकै जियो बिन हर प्यारे, बिन हर प्यारे रह न सकै गुर बिन महल न पाईऐ। जो गुर कहे सोई पर कीजै तिसना अग्न बुझाइए। हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई, बिन सेवै सुख न पाए नानक सा धन मिलै मलाई जिसनो आप मलाए। धन रैन सुहेलड़िए जियो हर सिओ चित लाए, सतगुर सेवे भाओ करे जियो विचों आप गवाए हर गुण गाए। अन दिन लागा भाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समाओ। हर गुण सारी ता कंत प्यारी नामे तरी प्यारू, नानक कामण नाह प्यारी राम नाम गलहारू। तन एकलड़ी जियो बिन नाह प्यारे, दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे। बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे, माया मोहे खुआई कूड़ बगुती ता फिर मुती सा तन महल न पाई। गुर शब्दे राती सहजे माती अन दिन रह समाए, नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मलाए। ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कवन मलाए, बिन गुर प्रीतम आपने जियो कौन भरम चुकाए। गुर भरम चुकाए इओं मिलिए माए ता सा तन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए, कामण रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे। नानक कामण हर वर पाया गुर कै पाए प्यारे। गौड़ी महला तीजा फिर बिन खरी निमाणी जियो, बिन फिर क्यों जीवा मेरी माई फिर बिन नींद ना आवै जियो। कापड़ तन ना सुहाई, कापर तन सुहावै जा फिर भावे गुरमती चित लाइए। सदा सुहागण जा सतगुर सेवे गुर कै अंक समाइए। गुर शब्द मेला ता फिर रावी लाहा नाम संसारी, नानक कामण नाह प्यारी जा हर के गुण सारी। सा धन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे, अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे। गुर शब्द विचारे हमें मारे इन बिद मिलोह प्यारे, सा धन सुहागण सदा रंग राती साचे नाम प्यारे। अपने गुर मिल रही है अमृत गही है दुबदा मार निवारे, नानक कामण हर वर पाया।

कूड़ मुट्ठी कूड़ियारी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जुए जन्म ना हारी, गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचों हो मैं मारी, हर का नाम हृदय बसाए, ऐसा करे सिंगारू, नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू, मिल मेरे प्रीत मां जियो, तुद बिन खरी निमाणी, मैं नैणी नींद ना आवे जियो, पावे अन्न ना पानी, पानी अन्न ना पावे, मरिए हावे, बिन फिर क्यों सुख पाईए, गुर आगे करो बिनंती, जे गुर पावे ज्यो मिले तिवें मिलाईए, आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए, नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए, गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सहज सुपाए, मन मोहन मोहे लिया जियो, दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज समाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए, एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए, गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजै, बिन भगती मैल ना जाए, नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए, कामन पिर पाया जियो, गुर कै पाए प्यारे, रैन सुख सुत्ती जियो, अंतर उर तारे, अंतर उर तारे मिलिए प्यारे, अन दिन दुख निवारे, अंतर महल पिर रावे कामन, गुरमती विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सोहागन, गुर कै हेत अपारे, आव हो दया करे जियो, प्रीतम यत प्यारे, कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारे, सच शब्द सिंगारे, हम मैं मारे, गुरमुख कार्य सवारे, जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझै गुर बिचारे, मनमुख काम व्यापी, मोहि संतापी, किस आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाउ ना पाए, बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो, फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शन हारा, अवगुण बख्शन हारा, कामन कंत प्यारा, कट कट रहे आसमाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है, सतगुर बूझ बुझाई, सदा आनंद रहे दिन राती, अन दिन रहे लिवलाई, नानक सहजे हर वर पाया, सा तन नौ निद पाई, गौड़ी महला तीजा, माया सार सबल वरतै जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहे था जियो, शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंघाए, इन बिद दुत्तर तरिए, गुरमुख भगत प्राप्त होवै, जीवतियां इउं मरिए, जिन मह राम नाम किलविख काटे, पए पवित्र शरीरा, नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पए मनूरा, स्त्री पुरख काम व्यापे जियो, राम नाम की बिद नहीं जानी, मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी, गत नहीं जानी, हम मैं तात संसारे, जो आया सो सब को जासी, उभरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम बखाने, आप तरह कुल तारे, नानक नाम बसै घट अंतर, गुरमत मिले प्यारे, राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा, दृढ़ भगत सच्ची।

सेवा सुरत भगत एह साची विचों आप गवाई है। हम मत हीन मूरख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए। नानक गुरमुख शब्द सहावे अन दिन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे। आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे। जुग जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे। आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए। आपे गुणदाता अब गुण काटे हिरदय नाम वसाए। नानक सद बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा।

हर पाए, घर बैठिया हर पाए, सदा चित लाए, सहजे सत सुभाए, गुर की सेवा खरी सुखाली, जिसनो आप कराए, नामो बीजे नामो जम्मे, नामो मन वसाए, नानक सच नाम वडियाई, पूरब लिखिया पाए, हर का नाम मीठा पिरा जियो, जां चाख है चित लाए, रसना हर रस चाख मुइये जियो, अनरस साध गुआए, सदा हर रस पाए जां हर पाए, रसना शब्द सुहाए, नाम त्याए सदा सुख पाए, नाम रहे निवलाए, नामे उपजै नामे बिनसै, नामे सच समाए।

छोड परदेस सदाए दूजै किनै सुख ना पायो पिरा जियो बिखिया लोभ लुभाए बिखिया लोभ लुभाए भरम भलाए ओह क्यों कर सुख पाए चाकरी वडाणी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए माया बंधन टिकै नाही खिन खिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूकै जा गुर शब्दी चित लाए मन मुख मुग्द गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का भ्रम अंध पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुर पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए नानक नाम रतन जग लाहा गुरमुख आप बुझाए राग गौड़ी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा मन बैराग भया जियो क्यों देखा प्रभ दाते मेरे मीत सखा हर जियो गुर पुरख बधाते पुरखो बधाता एक श्री तर क्यों मिलह तुझै अड़ीनिया कर करह सेवा आसीस चरणी मन आस दर्श निमाणिया सास सास ना घड़ी विसरै पल मूरत दिन राते नानक सारिंग ज्यों प्यासे क्यों मिलिय प्रभ दाते एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोहे लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों धीरे गुणवंत नाहा दयाल बाला सर्व गुण भरपूरे।

तारे आव हो नाह प्यारे। हौ माने अर्पी सब ताने अर्पी, अर्पी सब देसा। हौ सेरे अर्पी तिसमीत प्यारे, जो प्रभ दे संदेसा। अर्पया ता सीस सुथान गुर पह, संग प्रभु दिखाया। खिन माहे सगला दुख मिटिया, मनो चिंदिया पाया। दिन रहन रलिया करै कामण, मिटे सगल अंदेसा। बिनवंत नानक कंत मिलिया, लोड़ ते हम जैसा। मेरा मन आनंद भया जियो, वजी वादाई। कर लाल आया प्यारा, सब तिखा बुझाई। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया। सब मीत बंद पहरख उपजिया, दूत थाऊ गवाया। अनहत वाजे बजे है घर मह, फिर संग सेज विछाई। बिनवंत नानक सहज रह, हर मिलिया कंत सुखदाई। गौड़ी महला पंज।

जह साध संत इकत्तर होवे है तहां तुझै त्यावहि। कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा। बिनवंत नानक दर्श प्यासी मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली। मोहन तू मन है एक जी अवर सब राली। मन है ता एक अलेख ठाकुर जिन्ह सब कल धारिया। तुद बचन गुर कै वस किया आदि पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहिया आप सब कल धारिया। बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुम्हारिया। मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्श ध्याना। मोहन जम नेर ना आवै तुद जपह निधाना। जम काल किनको लगै नाही जो एक मन त्यावे। मन बचन कर्म जे तुद आराध है से सबे फल पावे। मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगियाना। बिनवंत नानक राज निश्चल पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे। मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे। तारिया जहान लहिया अभमान जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी तुद नो धन कहया तिन जम नेड़ ना आया। बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही सतगुर पुरख मरारी। बिनवंत नानक टेक राखी जित लग तरिया संसारी। गौड़ी महला पंजवां सलोक पतत असंख पनीत कर पुनः पुनः बलिहार। नानक राम नाम जप पाव को तिन किल बिख दाहनहार। संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधु। त्याए मना मरार मुकंदे कटिए काल दुख फादु। दुख हरन दीन सरन श्री तहर चरण कमल अराधिये। जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर निमक सिमरत साधिये। कल मलै दहता शुद्ध करता दिन सरैन अराधु। बिनवंत नानक करहु कृपा गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया। श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वच्छल बिरदाया। भगत वच्छल पुरख पूरन मन है चिंदिया पाईए। ताम अंध कूप ते उधार है नाम मन वसाईए। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भगती गाया। बिनवंत नानक करहु कृपा पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन तारी। करुणा में समरथ स्वामी कट कट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारू। शरण जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारू। रोग सोग सब दुख बिन सह जपत नाम मरारी। बिनवंत नानक करहो कृपा समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी सब ते ऊच दयाला। बिसंबर देवन को एक है सर्व करे प्रतपाला। प्रतपाल महादयाल दाना दया तारी सब किसे। काल कंटक लोभ मोह नासे जी जा कै प्रभ बसे। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण काला। बिनवंत नानक इच पुन्नी जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवां सुन सखिए मिल उद्म करेहा। मनाए लह हर कंते मान त्याग कर भगत ठगौरी। मोह है साधु मंते सखी वासे आया फिर छोड़ ना जाई। एह रीत भली भगवंत है। नानक जरा मरन पै नरक निवारे।
पनीत करै तिस जनतै। सुन सखिए एह भली बिनंती, एहो मतांत पकाइयै, सहज सुभाए अपाद रहत होए, गीत गोविंदह गाइयै। कल कलेश मिटह भ्रम नासह, मन चिंदिया फल पाइयै, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, नानक नाम त्याइयै। सखी इश करी नित सुख मनाई, प्रभ मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्श बैरागण, देखो थान सबाए। खोज लहो हर संत जना संग, समर्थ पुरख मलाए, नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता, से वड भागी माए। सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे, मेरा मन तन हर संग लिया, सुन सखिए मेरी नींद पली, मैं आपनड़ा फिर मिलिया। ब्रह्म खोयो शांत सहज स्वामी, प्रगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी, नानक सुहाग ना टलिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गौड़ी बावन अखरी महला पंजवा सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम अपदेसै, गुरुदेव मंत नरोदरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा, गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूढ़ पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक। आप है किया कराया, आप है करमै जोग, नानक एको रब रहया, दूसर हुआ ना होग पौड़ी। ओं साध सतगुर नमस्कारन, आद मद अंत निरंकारन, आपह सुन आपह सुख आसन, आपह सुनत आप ही जासन, आपने आप आपह उपायो, आपह बाप आप ही मायो, आपह सूखम आपह असथूला, लखी न जाई नानक लीला, कर कृपा प्रभ दीन।

का, सेई सहा भगवंत से सच संपै हर रास, नानक सच सोच पाई है तेहे संतन कै पास। पवड़ी ससा सत सत सत सो, सत पुरख ते भिन्न ना को, सो सरन परै जिह पायं, सिमर सिमर गुण गाए सुनायं। संसय भरम नहीं कछ व्यापत, प्रगट प्रताप ताहू को जापत। सो साधु एह पहुंचन हारा, नानक तां कै सद बलिहारा। सलोक धन तन कहां पकारते, माया मोह सब कूर। नाम बिहूने नानका, होत जात सब तूर। पवड़ी तद्दा तूर पनीत तेरे जनुआ, तन तेऊ जे रुच या मनुआ। तन नहीं बाछ सुरगना आछ, अत प्रिय प्रीत साध रज राच। धंधे कहां व्यापह ताहू, जो एक शाद अन कत ना जाहू। जां कह ही है दियो प्रभ नाम, नानक साध पूर्ण भगवान। सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान, मन हठ मिलियो ना कोय। कहो नानक कृपा पई, भगत ज्ञानी सोए पौड़ी। गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों, अनक जुगत शास्त्र कर पातों। ज्ञानी सोए जाकै दृढ़ सो, कहत सुनत कस जोग ना हो। ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै, उसन सीत समसर सब ताकै। ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी, नानक जाको कृपा तारी। सलोक आमने आए सृष्ट मह, बिन बूझे पस ढोर। नानक गुरमुख सो बुझै, जां कै भाग मथोर। पौड़ी या जुग मैं एकै को आया, जन्मत मोहयो मोहनी माया। गर्भ कुंट मह उर्द तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते। उर्ज परे जो छोड़ छडाना, देवनहार मन है बिसराना। तारू कृपा जिसह गुसाई, इत उत नानक तिस बिसरहो नाही। सलोक आवत हुक्म बनास हुक्म, आग्या पिन्ना कोए। आमन जाना ते मिटै, नानक जिहे मन सोए। पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भवासे, मोह मगन मीठ जोन फासे। इन माया त्रै गुण बस कीने, आपन मोह कटे कट दीने। ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो बिखम एह माया। कर कृपा सतसंग मलाए, नानक तां कै निकट ना माय। सलोक किरत कमावन शुभ अशुभ, कीने तिन प्रभ आप। असे आपन हों हों करे, नानक बिन हर कहां कमात। पौड़ी ये कह आप करावन हारा, आपै पाप पुन बिसथारा। या जुग जित जित आपै लायो, सो सो पायो जो आप दुआयो। वा का अंत ना जाने को, जो जो करे सो फुन हो। ये कहते सगला बिसथारा, नानक आप सवार नहारा। सलोक राच रहे बनता बनोद, कुसुम रंग बिख शोर। नानक ते सरनी परो, बिन सजाए मैं मोर। पौड़ी रे मान बिन हर जह रचो, तह तह बंधन पाहे। जेह बिद कतु ना छूटी है, साकत तेऊ कमाहे। हौ हौ करते कर्म रत,

आदर शुभ देव वा महली पावह तू बासा जन्म मरण नह हुए बनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाकै हर संपै नानक करता कै। सलोक लालच झूठ विकार मोह व्यापत मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यो नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखै रस राते अहम बुद्ध माया मद माते या माया मैं जन्मे मरना ज्यो ज्यो हुक्म त्यों त्यों करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जित जित लाभ तित तित लगना नानक ठाकुर सदा अलिपना। सलोक लाल गोपाल।

लवै न को एक है आप अवर न हो होवन हार होत सद आया वाका अंत न काहू पाया कीत हस्त मह पूर समाने प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर तेह जपना सलोक आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान नानक धन तन धन जन आए ते परवान पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए जास रसन हर हर जस भनिए आए बस है साधु कै संगे अन दिन नाम त्याव है रंगे आवत सोजन न महराता जाको दया मया बेदाता एक है आवन फिर जोन न आया नानक हर कै दर्श समाया सलोक यास जपत मन हुए आनंद बिनसै दूजा भाव दुख दर्द तृष्णा बुझे नानक नाम समा

दास्त मारे, दास दासन के पानी हारे, सच्चा शार होत तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता, शाड सियानप बहु चतराई, संतन की मन टेक टकाई, शार की पुत्री परम गत पाई, नानक जाको संत सहाई। सलोक जोर जुल्म फूलह कनो, साची दे विकार, हम बुद बंधन परे, नानक नाम छुटार पौड़ी। जज्जा जानै हौ कछ हुआ, बांधियो ज्यो नलनी भ्रम सुआ, ज्यो जानै हौ भगत ज्ञानी, आज्ञा ठाकुर तिल नहीं मानी, ज्यो जानै मैं कथनी करता, व्यापारी बसधा ज्यो फिरता, साध संग जे हौ मैं मारी, नानक तां को मिले मरारी। श्लोक चालांगे उठ नाम जप, निसबासुर आराध, कारहा तुझै ना व्यापई, नानक मिटै अपाद पौड़ी। चज्जा चूरन मिटै तुमारू, राम नाम स्यो कर व्यवहारू, चूरत चूरत साकत मुआ, जा कह हृदय होत पाओ बीया, चरह कसम्मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ, चरह काम क्रोध दृष्टाई, नानक जाको कृपा गुसाई। श्लोक यतन करो तुम अनक बिद, रहन न पावो मीत, जीवत रहो हर हर भजो हो, नानक नाम प्रीत पवड़ी। जन्या जानो दृढ़ सही, बिनस जात एह हेत, गणती गणो ना गण सको, ऊठ सधारे केत, न्यो पेखो सो बिनसतो, कास्यो करिए संग, ज्ञान होया बिद सही चित, झूठो माया रंग। ज्ञान तो सोई संत सोए, प्रमते की चत पिन, अंध कूप ते तेह कड्डो, जेह हो वो सो परसन। ज्ञान कै हाथ समरथ ते, कारण करने जोग, नानक तेह उस्तत करो, न्याहू कियो संजोग। श्लोक टूटे बंधन जन्म मरन, साध सेव सुख पाए, नानक मनो ना बिसरै, गुण निध गोविंद राय पौड़ी। टहल करहो तौ एक की, जाते बिरथा ना कोए, मन फन मुख ही है बसै, जो चाहो सो होए, टहल मैल ता को मिलै, जा को साध कृपाल, साधु संगत तौ बसै, जो आपन होहे दयाल। टोहे ताहे बहु पवन, बिन नावै सुख नाहे, तलह जाम के दूत तेहे, जो साधु संग समाहे। बार बार जाओ संत सदके, नानक पाप बनासे कदके। सलोक ठाक ना होती तिन्हों दर, जेह हो वो सो प्रसन्न, जो जन प्रभ अपने करे, नानक ते तन तन पौड़ी। ठठा मनुआ ठाह नाही, जो सगल त्याग एकै लपटाई, ठहक ठहक माया संग मूल।

दसिया ठाकुरे अपने जो जन पाया नानक वा का मन सीतलाया। श्लोक दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ पौड़ी डड्डा डेरा एहो नहीं जह डेरा तह जान वा डेरा का संयम गुर कै शब्द पछान या डेरा को श्रम कर खाल जाका तसु नहीं संग चाल वा डेरा की सो मित जान जाको दृष्ट पूर्ण भगवान डेरा निश्चल सच साध संग पाया।

दुख संपै बहु भोग रस नानक साध रुआल पौड़ी बब्बा ब्रह्म जानत ते ब्रह्मा वैष्णो ते गुरमुख सुच धर्मा वीरा आपन बुरा मटावै ताहू बुरा निकट नहीं आवै बांधियो आपन हों हों बंदा दोष देत आगह को अंधा बात कीत सब रही सियानक जिसै जनाब हो सो जाने नानक सलोक पै पंजन अग दुख नास मनह अराध हरे संत संग जिह रिद बसियो नानक ते ना भ्रमे पौड़ी पब्बा परम मटावो अपना या संसार सगल है सुपना परमेश्वर नर देवी देवा परमे सिद्ध साधक ब्रह्मेवा परम परम मानुख डहकाए दुत्तर महा विखम एह माए गुरमुख भ्रम पै मोह मटाया नानक तेह परम सुख पाया सलोक माया डोलै बहु विधि

जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी रा रेन होत सब जाकी ताज अवमान छुटे तेरी बाकी रण दरगह तो सीजै भाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत रह जाहे बिकारा गुर पूरे कै शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदाते सलोक लालच झूठ बिखै ब्याद या देही महबास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सूख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु दुख दर्द ते मिटै खनाहु नाम औखद जे हृदय हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हर औखद सब घट है भाई।

वासुदेव सर्वत्र में ऊन न कतहु ठाए, अंतर बाहर संग है नानक काए दुराय पौड़ी, ववा वैर न करिए काहू, घट घट अंतर ब्रह्म समाहू, वासुदेव जल थल में रविया, गुर प्रसाद विरले ही गविया, वैर विरोध मिटे ते मनते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चिहन सगल है ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हौ हौ करत बेहानिया, साकत मुगद अजान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावन, नानक किरत कमान पौड़ी, राड़ा राड़ मिटे संग साधु, कर्म तर्म तत नाम अराधु, रूड़ो जेहे बसे उरिद माही, वा की राड़ मिटत बिन साही, राड़ करत साकत गावारा, जेहे ही है हम बुद्ध बेकारा, राड़ा गुरमुख राड़ मटाई, निमख माही नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट गहो, उकत सियान पत्याग, गुर दीखिया जेहे मन बसै, नानक मस्तक भाग पौड़ी, ससा शरण परे अबहारी, शास्त्र सिमरत वेद पुकारी, सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सास सास हम भूलन हारे, तुम समरत अगनत अपारे, शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। सलोक खुदी मिटी तब सुख पहे,

जो खिन मैं ऊने सुबर पराहु खरा निमाना होत परानी हन दिन जापै प्रभ निर्वाणी भावै खसम ता वा सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दयारा। सलोक सत कहो सुन मन मेरे सरन परहो हर राय उक्त सियानप सगल त्याग नानक लये समाए पौड़ी। ससा सियानप छाड़ आना हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना सहस भांत करह चतुराई।

प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभु कै सिमरन सब किस सुझै। प्रभु कै सिमरन नाहीं जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा।

संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रति रंग एकै नानक जन कै बिरत बिबेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परै ना भंग हर का नाम जन

जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पैर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते तरे, पार जात एहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम।

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु भांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदास पीसर पीवे अग्न माहे होमत परान कनक असव है विर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तौ पी हों मैं मैल ना जावे हर के नाम समसर कछ नाही नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गमान ना मन ते हुटै सोच करे

अपमान आप सुकौ जो जाने नीचा सोगनिय सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट कीना मन अपने ते बुरा मिटाना एक है सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन समदृष्टेता नानक।

सगल कटाको देवहुदान कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जपहु जी सदा सगल बाणी मह अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखानी।

काल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिनह उभारिया बार व्यवस्था तुझह प्यारे दूध पर जो बन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साख सहन

श्रम करे संग सहाई किस पर हरे चंदन लेप उतारे धोय गर्धभ प्रीत पस्म संग होय अंधकूप मह पतत बिकराल नानक काड ले हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया छपस नाही कछ करे छुपाया बाहर ज्ञान ध्यान इस्नान अंतर व्यापै लोभ सुआन।

सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेहो ओढ़ निबिहावे, कहां बजारत दूजै डोरा, निस कहिए तो समझै पूरा, कहां बिसन पद गावे गोंग, जतन करे तो पी सुर भंग, कहां पिंगल पर्वत पर भव।

दृढ़ कर्मा न मन है प्रतीत, काल न आवे मूढ़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम

लपट रहे हो तह अंध अंधार बताऊ स्यो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुभा।

मिथ्यारथ हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता मिथ्या त्रोहो मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर धर्म को हिरह मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रिय रुपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को धाव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा।

काशी अवरत मावत मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत जानन हार प्रभु परबीन बाहर भेख ना काहू पीन अवर अपदेश।

सूखम अंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरहु तिस रसना जेह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग जेह प्रसाद पाठ पटंबर हंधावह तिसै त्याग कत अवर लुभावह।

मुखता को जस रसन बखान जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगाह मान पावे नानक पात से।

मन सुख पावह हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल सिदर ढाके मन चरनी पार ठाकर प्रभ ताके जे

ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लाग हो, गुरु प्रसाद नानक मन जाग हो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस पव को मूल।

साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटे अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वरनै कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा

देवा साधु कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्ब थान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कछ काल दर्शन भेट होत निहाल साध कै संग कलूखत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग इहां उहां सोहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध कै संग न बिरता जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाऊ साध संग हर के गुण गाओ साध कै संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट दीठा साध संग भय आग्याकारी साध संग गत भई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा भेद न जान है जेता सुनह तेता बखियान है साध की उपमा तेहो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बन आई नानक साध प्रभ भेद ना पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर ना पेखै एकस बिन कोए नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे

ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जप

ब्रह्मज्ञानी हम बुद्ध त्यागत, ब्रह्मज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास।

बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजह महेश्वर। नानक

कथिया न जाए अदाक्षर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक।

निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओह अपरस सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस

कार अष्टपदे कई कोट होए पुजारी, कई कोट अचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रम है उदार।

कई कोट भय अभमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब को हिरह, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जन, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरै सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड।

के दास, तिन होवत आत्म परगास। कई कोट तत के बेते, सदा निहार है एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीव है, अमर पये सद सद ही जीव है। कई कोट नाम गुण गाव है, आत्म रस सुख।

होए नानक तिस बलिहार ने जल थल महियल सोए। अष्टपदी करन करामन करन जोग जोत पावै सोई होग। हिन मह थाप उथापन हारा अंत नहीं किस पारा वारा। हुक्मे तार अतार रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै। हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनकरंग प्रकार।

पूरन ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो कबहू ऊंच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्योहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आत्मा।

त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम। नानक प्रभु कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मशकीनिया। आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसकै अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान। जो जानै मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावै, जन्म मरै बहु जोन प्रमावै।

आज्ञा सुख पावे, हनुमंता हुई कर कर बावे, त्रिण समान कस संग ना जावे, बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतर ताका हुए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, किन मह हुए जाए पसमंत, किसे ना बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगाह प्रवान, कोट कर्म करे हों तारी, श्रम पावे सगले बिरथारी, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगाह कहो कैसे गवे, आपस कहो जो भला कहावे, तिसह भला।

कछ होए तब इसको सुख नाही कोए। जब एह जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई

को उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे नह तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राज्य सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी तिसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करामन करन हार इसके हाथ कहां विचार जैसे

कौतक करे रंग अपार। मन मह आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन ना जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी।

अष्टपदी संत कै दुख में आर जा घटे, संत कै दुख में जमते नहीं छुटे, संत कै दुखन सुख सब जाय, संत कै दुखन नरक मह पाय, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखे ना कोई, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए, संत किरपाल किरपा जे करे, नानक संत संग निंदक पी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संतन कै दुखन काग ज्यों लवे, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मह जले।

नानक जो तिस पाव है सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी

सोए सब घट तिसके ओह करनै हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की उस्तत करहो दिन रात तिसै त्याव हो सास ग्रास सब कछ वरतै तिसका।

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जन मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोलह हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मै सोही निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिस की कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसह ना लागह दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं दुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किस ते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समा

ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ

नानक सो जन सदा अरूग, ज्यों मंदर को थमै थमन, त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन, ज्यों पाखाण नाव चढ़तरै, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै।

संग मिल जोत प्रगटावे, दिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तो तिसह चितार, जो कछ करे सोई सुखमान, पूला काहे फिर है अजान, कौन बस्त आई तिरे संग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती घर जाहे, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, ताज अभमान ले।

राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक किस पुरख का किने अंत ना पाया, जाकी लीला की मित नाहि, सगल देव हारे

के पाए, सब घट तिसके सब तिसके ठाव, जप जप जीवै नानक हर नाव, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उधरे सुन श्रवन, कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माहि समाणी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसह बुझाए तिसह सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जां कै हृदय प्रवेश, सत नित बूझै जे कोय, नाम जपत तां की गत होय, आप सत किया सब सत, आपे जानै अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करनै हार, अवर ना बूझ करत बीचार, करते की मित ना जानै किया, नानक जोत सुभावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भये बिस्माद, जिन बूझिया तिसे आया स्वाद, प्रभ कै रंग राच जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, वे दाते दुख काटन हार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सो वड भागी।

के जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया नीकी कीरी मह कल राख है पसम करे लश्कर कोट लाख है जिसका शासन काटते आप तां को राखत दे कर हाथ मानस जतन करत बहु भांत तिसके करतब बिरथे जात मारे ना राखे अवर ना कोए सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करह रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख वडाणी बारंग बार बार प्रभ जपिए ई अमृत इह मन तन तृपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाव अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उच्चरै।

नाम सिमर सिमर सदा सुख पाव पाओ बिन सह पूर्ण होए आस भगत भाई आत्म परगास चित कर जाए बसै अबनासी।

देव आप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का हुए उदहार हर हर सिमर प्राण अधार अनक अपावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद बिचारे हर की भगत करहु।

भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करहु मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे, आप जपहु अवरा नाम जपावहु, सुनत कहत रहत गत पावहु, सार भूत सत हर को नाव, सहज सुपाए नानक गुण गाव, गुण गावत त्रि उत्तर सुमैल,

आया पड़या तो सरनाय। नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए। अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देव हो हर नाम। साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महासुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाखिया से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुपार परे प्रेम रस रंग उपजै चाहो साध कै संग। परे सरनयान सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग। बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए। सेव की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहया सतसंग हजूरी। जिसका साथन लिया मलाए नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे घर ना भानै। सो क्यों बिसरै जे किया जानै। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया। सो क्यों बिसरै जे जीवन दिया। सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै। गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिख ते काढै। जन्म जन्म का टूटा गांडै। गुरपूरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो इहो काम आन त्याग जप हो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जप हो अवरहा नाम जपाव हो। भगत भाए तरिय संसार बिन भगति।

पुरुख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनक राज भोग बडियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सो बातनवंत।

आप अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कह ते होता जब धारी आपन सुन समात तब बैर विरोध किस संग कमात जब इस का वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप आप पार ब्रह्म।

अब मोहो कहां किस होवत भरम, आपन खेल आप वरती जा, नानक करने हार ना दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस को गनी, जब एक है हर अगम अपार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए, जब आप है आप अपनी जोत धरे, तब कमन नडार कमन कत डरे, आपन चलत आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार, अबनासी सुख अपने आसन, तह जन्म मरण कहो कहां बनासन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अवगत गोचर प्रवेका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, आपने आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही उपर जा।

नानक एको पसरिया दूजा कह विस्तार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपै एक आप विस्तार जान तिस भावै तां सृष्टि।

नानक फल पावहु, हलत पलत दोए लेहो सवार, राम नाम अंतर उर धार, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया, मन तन नाम जपो निवलाई, दुख दर्द मन ते भउ जाए।

दृष्ट दर्शन पेहत कुदरत श्रेष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पए अमरा।

हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास अष्टपदे संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक सकट माहे अनकरंग नाना दृष्टाहे नौ

कवन निकट कवन कहिया दूर, आपे आप भरपूर अंतरगत जिसे आप जनाए, नानक तिस जने आप बुझाए।

नै कछ करा, आप भला कर तूत आत्मी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराज, ताकी गत मित कही ना जाए।

तिस सदा सुख हुए, आप मलाए नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआऊ, जन कै संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक

अष्टपदी पूरे गुर का सुने उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरो हर धन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार।

दीन दयाल दुख भजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोकह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मलाए।

ज्ञान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता, ए फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग महता की गत होए, गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै, जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध सरन नानक ते आए, जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, जिस जन आवै।

नानक संत निर्मल पए, जिन मन वस्या सोए पौड़ी, तृतीया त्रै गुण बिखै फाल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग प्रमतो कणो, सदा संगारै नीच, हरख सोग सह

मोह परम बूढ़त कणो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख ले हो नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध

बिनस अमर तरस रंग रत्ते निरंकार दुख दार्द अपवित्रता नासह नाम आधार सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला हुए नानक सादर वाल। सलोक पंच बकार मन में बसे राचे माया संग साध संग हुए निर्मला नानक प्रभ कै रंग पौड़ी। पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसम बास बहुरंग घणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै नह बूझियै नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदेओ अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जून भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच। सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारा वार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार। पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सीख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीते हर स्यों बीते भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिन सेव पाई सरन दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिरे साध संग लिव लाए खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याए। सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुपाय नानक मन संतोखी एकस स्यों लिव लाए। पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारावार आप तजो हो गोविंद भजो हो सरन पर हो हर राय दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए आठ पहर मन हर जपै

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत नरो धर्मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक।

संसारिय नरक स्वर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म ना सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरै तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस जिस खोजत मैं फिरे हो जत देखूं तत सोए मन बा

पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बासकार सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इन वेद वर्त संपूर्ण भया धावत मन राख एक ठाई मन तन शुद्ध।

नानक प्रभ स्यों मिल रहे। बिनसे सगल जंजाल पौड़ी द्वादशी दान नाम इशनान। हर की भगत करो ताजमान, हर अमृत पान करो साध संग। मन तृप्ता सह कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सब कौ संतोख है। पंच भू आत्मा हर नाम रस पोख है, गुर पूरे ते एह निश्चौ पाइय। नानक

हों मैं छुट्टी सिमरत हर को नाम शरण गही पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरिया कुटुंब स्यों गुण गो

नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभे आप दिन दिन चढ़े सुआया नानक होत ना घाट पौड़ी पूर्णमा पूर्ण प्रवेक करण कारण समरथ जी जंत दयाल पुरख सब ऊपर जा का हाथ गुण निदान गोविंद गुर किया जा का होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वरो सब विद जानन हार संत सहाई सरन जोग आठ पहर नमस्कार अकथ कथा नह बूझी सिमरहु हर के चरण पतत उदारन अनाथ नाथ नानक प्रभ की सरन सलोक दुख बिन से सहसा गयो सरन गही हर राय मन चिंदे फल पाया नानक हर गुण गाय पौड़ी कोई गावे को सुने कोई करे विचार को उपदेशे को दृढ़े तिसका हुए उदहार किलबिख काटे हुए निर्मला जन्म जन्म मल जाय हलत पलत मुख

ओए जिन भजिया भगवंत खतरी ब्राह्मण सूद बैस उदरै सिमर चंडाल जिन जानियो प्रभ अपना नानक तिसह रवाल गौड़ी की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला चौथा सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोई एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होए सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए नानक कृपा ते हर त्याई है गुरमुख पावे कोई महला चौथा हौमै माया सब बिख है नित जग तोटा संसार लाहा हर धन खटिया गुरमुख शब्द विचार हौमै मैल बिख उतरै हर अमृत हर उरतार सब कारज तिनके सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा धार नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सिरजनहार पौड़ी तू सच्चा साहेब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई।

मन पहाया, सच्चे मेरे साहिबा सच्चे सच नाया। श्लोक महला चौथा, मन अंतर होमै रोग है, भ्रम भूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग गवाए, मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा, मन तन रत्ता रंग सियो, गुरमुख हर गुण तास, जन नानक हर सरना।

तू है पढ़ी है, तू घट घट एक वरतदा गुरमुख परगड़ी है, तू सच्चा सब सदा खसम है, सब दू तू चढ़ी है, तू करह सो सच्चे होए सी ता कायत करी है। स्लोक

सतगुरु सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यों बोलन तिवें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करह सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरत है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छिड़ाही। सलोक महला चौथा। सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठै सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा। सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखै ब्रह्म इक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे तिन विचों किस्तिया ना कोई सतगुर सबना दा

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब भावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी, सलोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित, तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या तिन संत जना जयकार, कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की, तिसनो फिट फिट कहे सब संसार, सतगुरु विच आप वरतदा

आपे वरतै नित कर कर देखै चलत सवाय। महला चौथा एक मन एक वरतदा जित लगै सो थाए पाए। कोई गल्ला करे कनेरियां जे घर वत होवै साई खाए। बिन सतगुर सोजी ना पवै अहंकार ना विचों जाए। अहंकारियां नूं दुख भुख है हथ तडहै घर घर मगाए। कूड़ ठगी गुजी ना रहै मलम्मा पाज लह जाए। जिस होवै पूर्व लिखिया तिस सतगुर मिलै प्रभ आए। ज्यों लोहा पारस भेटी है

आया पौड़ी। सच सच्चा सबदू वड्डा है, सो लय जिस सतगुर टिके, सो सतगुर जे सच त्याईंदा। सच सच्चा सतगुर इक्के, सोई सतगुर पुरख है, जिन पंचे दूत कीते वस छिके, जे बिन सतगुर सेवे आप गणाईंदे। तिने अंदर कूड़ फिट फिट मुंह फिके।

लाया, गुरमुख बख्श जमाइयन, मन मुखी मूल गवाया, सब को बीजे अपने भले नो, हर भावै सो खेत जमाया, गुरसिखी हर अमृत बीजिया, हर अमृत नाम फल अमृत पाया, जम चूहा किरस नित कुरकदा, हर करतै मार कढाया, किरसाणी जम्मी भाओ कर, हर बोहल बख्श जमाया, तिनका काड़ा अंधिसा सब लाहयुन, जिन्नी सतगुर पुरख त्याया, जन नानक नाम अराध्या, आप तरिया सब जगत तराया, महला चौथा सारा दिन लाल चट्टिया, मन मुकोरे गल्ला राती ऊंगे दबिया, नवे सोत सब ढिला, मन मुखा दै सिर जोरां अमर है, नित देवह भला, जोरां दा आखिया पुरख कमाम दे, से अपवित अमेर खला, काम व्यापेक सुध नर, से जोरां पुछ चला, सतगुर कै आखिया जो चलै, सो सत पुरख भल भला, जोरां पुरख सब आप अपायन, हर खेल सब खिला, सब तेरी बणत बनावनी, नानक भल भला पौड़ी, तू वे परवाह अथाह है, अतुल क्यों तुलिया, सेवड भागी जे तुद त्याएं दे, जिन सतगुर मिलिया, सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणिया, सतगुर की रीसै होर कच पिच बोल दे, से कूड़े आर कूड़े चा

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन हो सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वे आपे सच्चै वख कड्डे जजमाले सचियार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर का आ

मनदान हार तिनके काज दइये आंदे रास तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर प्रभ अंग कर बैठा पास जा करता वल ता सब को वल सब दर्शन देख करह साबास साह पातशाह सब हर का किया सब जन को आए करह रहरास गुरपूरे की वड्डी वड्याई हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया गुरपूरे दान दिया हर निश्चल नित बख्शे चढ़ै सुआया कोई निंदक वड्याई देख ना सकै सो करते आप पचाया जन नानक गुण बोले करते के भगतानो सदा रखदा आया पौड़ी तू साहिब अगम दयाल है वड दाता दाना तुद जेवड मैं होर को दिस ना आवई तू है सुगड़ मेरे मन पाना मोह कटंब दिस आमदा सब चलन हारा आवन जाना जो बिन सच्चे होरत चित लाएंदे से कूड़े आर कूड़ा तिन माना नानक सच त्याए तू बिन सच्चे पच पच मोए अजाना सलोक महला चौथा अगों दे सत भाओ न दिच्चे पिछों दे आख्या कम ना आवे अध विच फिरे मन मुख वेचारा गली क्यों सुख पावे जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे ता अपिओ पीवे शब्द गुर केरा सब काला अंदेसा भरम चुकावे सदा आनंद रहै दिन राती जन नानक अन दिन हर गुण गावे महला चौथा गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्यावे उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नावे उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब किल विख पाप दोख लह जावे फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावे बहंदियां उठदियां हर नाम त्यावे जो सास ग्रास त्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावे जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपे अवरह नाम जपावे पौड़ी जो तुद सच त्याईंदे से विरले थोड़े जो मन चित एक अराध दे तिनकी बरकत खाही असंख करोड़े तुदनो सब त्याई दी से थाई पए जो साहिब लोड़े जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैन दे से मोए मर जम्मे कोड़े ओए हाजर मिठा बोल दे बाहर विस कढ़ मुख कोले मन खोटे दइये विछोड़े सलोक महला चौथा मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा तिन वे मुख वे मुखे नो पाया पास ना देई कोई बहन जगत मह गुहू पर सगवी मल लाए मन मुख आया पराई जो निंदा चुगली नो वे मुख करके भेजिया उथे पी मुह काला दोहां वे मुखां दा कराया तड़ सुनिया सबत जगत विच भाई वे मुख सुने नफरै पौली पौंदी फावा हुए कै उठ घर आया अगे संगती कुड़मी वे मुख रलना ना मिले ता बहुती भतीजी फिर आन घर पाया हलत पलत दोवें गए नित भुखा कूके तिहाया तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच बह आप कराया जो निंदा करे सतगुरु पूरे की सो साचै मार पचाया एहो अखर तिने आखिया जिन जगत सब उपाया महला चौथा साहिब जिसका नंगा भुखा होवे तिसदा नफर कित्थों रज खाए जे साहिब कै घर वत होवे सो नफरै हाथ आवे अणहोंदी कित्थों पाए
जिस दी सेवा कीती फिर लेखा मंगी है, सा सेवा औखी होई, नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगै ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे, भगत मुख है ते बोल दे, से वचन हवंदे, प्रगट पहारा जापदा, सब लोक सुनंदे, सुख ना पायन मुगद नर, संत नाल कहंदे, ओए लोचन उन्ना गुणै नू, ओए अहंकार सुनंदे, ओए विचारे क्या करहें, जां भाग तुर मंदे, जो मारे तिन पार ब्रह्म, से किसे ना संदे, वैर करहें निर्वैर नाल, धर्म ने आए पचंदे, जो जो संत सरापिया, से फिर है पवंदे, पेड़ मडाहूं कटिया, तिस डाल सुकंदे। श्लोक महला चौथा, अंतर हर गुरु त्याईंदा, वड्डी वड्याई, तुस दित्ती पूरे सतगुरु, कटै नाही एक तिल किसे दी कटाई, सच साहेब सतगुरु कै वल है, तां चख चख मरे सब लोकाई, निंदका के मुंह काले करे, हर करतै आप वधाई, ज्यों ज्यों निंदक निंद करहें, त्यों त्यों नित नित चढ़ै सवाई।

रखै। हलत पलत सब तिसका गया, नित चहियां पाए झगू सुटे। झकदा झकदा झड़ पया, नित अपाव करै माया धन कारण। अगला धन भी उड गया, क्या ओह खट्टे क्या ओह खावै। जिस अंदर सहसा दुख पया, निर्वैर नाल जे वैर विचारे। सब पाप जगतै का तिन सिर लया, ओस अगे पिछे ढोई नाही। जिस अंदर निंदा मुहे अंब पया, जे सोइने नो ओह हाथ पाए। तां खेहू से तीर हल गया, जे गुर की सरनी फिर ओह आवे। तां पिछले औगण बख्श लया, जन नानक अन दिन नाम त्याया। हर सिमरत किल विख पाप गया, पौड़ी तू है सच्चा सच तू। सब तू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याईंदे। सच सेवन सच्चे तेरा मान, ओना अंदर सच मुख उजले। सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाहिया।

सच साहा हमारी सच पूंजी नाम दिरड़ाए प्रभ वणजारे थारे सच सेव है सच वणंज लै है गुण कथ है निरारी सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सुवारे तू सच्चा साहब अलख है गुर शब्द लिखारे। सलोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला ओस दे आखे कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या ओस दा सब गया नित चुगली करे अणहोंदी पराई मुंह कढ ना सकै।

आपस ना होई, विस खादी तत्काल मर जाए। आई वेखो न्याओ सच करते का, जेहा कोई करे तेहा कोई पाए। जन नानक को सब सोजी पाई, हर दर कियां बातां आख सुनाए। महला चौथा होंदै प्रतख गुरु जो विछड़े, तिनको दर ढोई नाही। कोई जाए मिले तिन निंदका, मुंह फिके थुक थुक मुहे पाही। जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित भंबल भूसे खाही। जिन गुरु गोपिया अपना, से लैंदे ढहां फराही। तिनकी भुख कदे ना उतरै, नित भुखा भुख कुकाही। उना दा आख्या को ना सुने, नित हौले हौल मराही। सतगुर की वड़ियाई वेख ना सकनी, उना अगे पिछे थाउ नाही। जो सतगुर मारे तिन जाए मिलह, रहंदी खुंदी सब पत गुआही। ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके, जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही। हर तिन का दर्शन ना करहो, जो दूजे पाए चित लाही। तुर करत आप लिख पाया, तिस नाल केहो चारा नाही। जन नानक नाम अराध तू, तिस अपड़ को ना सकाही। नावै की वड़ियाई वड़ी है, नित सवाई चढ़ै चढ़ाही। महला चौथा जे होंदै गुरु बह टिकिया, तिस जन की वड़ियाई वड़ी होई। तिस को जगत निमिया सब पैरी पया, जस वरत्या लोई। तिस को खंड ब्रह्मांड नमस्कार करह, जिसकै मस्तक हाथ धरिया गुर पूरै सो पूरा होई। गुर की वड़ियाई नित चढ़ै सवाई, अपड़ को ना सकोई। जन नानक हर करतै आप वह टिकिया।

जो करे हर वस्त संभाले नाम निदान हर बन जीए हीरे परवाले विण काया जे होर थै धन।

हृदय है जिन हर बसिया मन माहे हर दर गहती मुखी उज्जले तिनको सब देखण जाहे जिन निरपव नाम त्याया तिनको भव कोई नाहे हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको तुर लिखिया आहे ते हर दरगह पैनाई है जिन हर बुठा मन माहे वे आप तरे सब कटंब सियो तिन पिछे सब जगत छडाहे जन नानक को हर मेल जन तिन वेख वेख हम जिवाहे महला चौथा सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए से जंत पई हरियावली।

जिन नाम अराध्या आप तरिया जिन्नी दिथा तिन्ना लय छाय हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बेख मारिया जा डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भाव सी गुरपूरा करी वसाए सी जिने अंदर नाम निधान है तिनका पहु सब गवाए सी जिन रखन को हर आप होए होर केती चख चख जाए सी जन नानक नाम त्याए तू हर हलत पलत छोड़ाए सी महला चौथा गुर सिखा कै मन भावदी गुर सतगुर की वडियाई हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़ै सुआई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई गुर सतगुर तान दी बाण हर तिन सब आन निवाई जिन्नी दिठा मेरा सतगुर पाओ कर तिनके सब पाप गवाई।

तेरे भाई पौड़ी हौ आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वड़ियाई साही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाई सच सच्चा रस जिन्नी चखिया

त्यों संतो निर्मल होए गुरमुख गुण वे हाजी है मल होमै कड्डै धोए सच मणंजह रंग स्यों सच सौदा होए तोटा मूल ना आवे लाहा हर भावै सोए नानक तिन सच मणंजिया जिन्ना धुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी सालाही सच सालाहना सच सच्चा पुरख निराली सच सेवी सच मन वसै सच सच्चा हर रखवाली।

उठा सतसंगत मह हर पुस्तत है संग साधु मिले प्यारिया वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है उपदेश कर है पर उपकारिया हर नाम दृढ़ाव है हर नाम सुनाव है हर नामे जग निस्तारिया गुर वेखण को सब कोई लोचै नवखंड जगत नमस्कारिया तुद आपे आप रखिया सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया तू आपे पूज है पूज कराव है सतगुर को सिरजन हारिया कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो तिस काला मुह जम मारिया तिस अगै पिछै ढोई नाही गुरसिखी मन विचारिया सतगुरु नो मिले से ही जन उबरे जिन हिरदय नाम समारिया जन नानक के गुरसिख पुत हो हर जपे हो हर निस्तारिया महला तीजा हो मैं जगत भलाया दुरमत बिखिया बेकार सतगुरु मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार नानक आपे मेल लए जिसनो शब्द लाए प्यार पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाहा है सो करे जिस अंदर भिजै जिन्नी एक मन एक अराध्या तिनका कंध ना कबहू सिजै तन तन पुरख साबास है जिन सच रसना अमृत पिजै सच सच्चा जिन मन भामदा से मन सच्ची दरगाह लिजै तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजै सलोक महला चौथा साकत जाए निवह गुर आगै मन खोटे कूड़ कूड़ आरी जां गुर कह उठो मेरे भाई वह जाहे कुसर बगलारी गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै चुन कड्डे लद्दो वारे कोई अगै पिछे बह मुंह सुपाइन ना रलनी खोटे आरे ओना दा भख सो ओतै नाही जाए कूड़ लहन भेडारे जे साकत नर खवाइए लोचिए बिख कड्डै मुख उगलारे हर साकत सेती संग ना करियो हो उए मारे।

सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। जहां सतगुर का मन मन्या ता पाप कसम्मल पन्ने। अपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने। जिन सतगुर का पाणा मन्या तिन चढ़ी चवगण वन्ने। एह चाल नराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्ने। सलोक महला तीजा जिन गुरु गोपिया अपना तिस ठौर ना ठाओ। हलत पलत दोवै गए दरगाह नाही थाओ। ओह वेला हाथ ना आवई फिर सतगुर लगह पाए। सतगुर की गणत कुसी है दुखे दुख विहाय। सतगुर

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मत हारी कूड़क सत ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास उतै सच वरतदा कूड़े आरा चित उदास ओए वल छल कर झत कढ दे फिर जाए बह कूड़े आरा पास विच सच्चे कूड़ ना गड़े मन वेखो को निरजास कूड़े आर कूड़े आरी जाए रले

संग जुट सलोक महला चौथा तपा न होवे अंदरों लोभी नित माया नो फिरे जज मालिया अगों दे सद्या सतै दी भिख्या ले नाही पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया पंच लोग सब हसन लगे।

फल लगा सब गया तपेका कालिया बाहर बह पंचा विच तपा सदाए अंदर बह तपा पाप कमाए हर अंदरला पाप पंचा नु उगा कर वे खालिया धर्म राय जम कंकरा नु आख छड़िया इस तपे नु तिथे खर पायो जिथे महा महा हथियारिया फेर इस तपे दे मोहे कोई लगो नाही एहो सतगुर है फिटकार।

मित्र तू दुख सबाया लाथ महला पंजवा खुदया वंत न जानी लाज को बोल नानक मांगे नाम हर

कम कराई सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे। जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े। जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे। ज्यों पावै त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे। सुद गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी मौज दी की वार की धुन उपर।

थान थनंतर राव रहया जी अंदर जाना साध संग मिल पाई है मन सच्चे पाना नानक प्रभ शरणागती साध साध कुर्बाना। श्लोक महला पंजवा चेताई ता चेत साहिब सच्चा सो धनी नानक सतगुर सेव चढ़ बोहित पौ जल पार पौ। महला पंजवा वाउ संदे कपड़े पहर है गर्भ गवार नानक नाल न ना चलनी जल बल होए शार। पौड़ी से ही उबरे जग विच जो सच्चा रखे मोहे डिठ तिन कै जीविए हर अमृत चखे। काम क्रोध लोभ मोह संग साधा पखे कर कृपा प्रभ अपनी हर आप परखे। नानक चलत ना जापनी को सकै ना लखे। श्लोक महला पंजवा नानक सोई दिन सो सुहावड़ा जित प्रभ आवै चित जित दिन विसरै पार ब्रह्म फिट पलेरी रुत। महला पंजवा नानक मित्राई तिस सिउ सब किस जिस कै हाथ कमित्रा से कांडी है एक विख ना चल है साथ। पौड़ी अमृत नाम निदान है मिल पीवो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई। कर सेवा पार ब्रह्म गुर भुख रह ना काई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई। तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा डिठड़ो हब ठाए ऊन ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुआओ जिन्ना सतगुरु भेटिया। महला पंजवा दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे वत सुहावी साए नानक नाओ जपंदो तिस धनी। पौड़ी सिमरत शास्त्र सोध सब किन कीम ना जानी जो जन भेटै साध संग सो हर रंग माणी। सच नाम करता पुरख एह रतना खाणी मस्तक होवै लिखिया हर सिमर प्राणी। तोसा दिच्चै सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा अंतर चिंता नैणी सुखी मूल ना उतरै भुख।

दे मर गए मर पे ना सकै मूल। वे मुख होए राम ते ज्यो तस्कर उपर सूल। पौड़ी सुख निदान प्रभ एक है अबनासी सुनिया। जल थल मैयल पूरिया घट घट हर भणिया। ऊच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया। मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया। तुस नानक देवै जिस नाम तिन हर रंग मणिया।

बिखै कुड़त्तन सगल माहि जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाउ पौड़ी एह निशानी साध की जिस भेटत तरियै जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरियै भव सागर संसार बिख सो पार उतरियै हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरियै नानक प्रीतम मिल रहे पार ब्रह्म नर हरियै तलोक महला पंजवा नानक आए से परवान है जिन हर गुठा चित गाली अल पलालिया कम ना आवह मित महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूर्ण अग

जो जा चंदी हेकड़ो गाली ब्या विकार नानक धनी विहूणिया महला पंजवा नीह जे विद्या मन पछाणु विरलो थियो जोड़ नहारा संत नानक पादर पदरो पौड़ी सोई सेव हो जियड़ी दाता बख्शिंद किल विख सब बनास होन सिमरत गोविंद हर मार्ग साधु दस्या जपिया गुरमंत माया स्वाद सब फिक्किया

एक जिस तुस देवे आप जित खादे मन तृप्ति है नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग में से खट है जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस निश्चल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवा। पार ब्रह्म फरमाया मीह उठा सहज सुपाए तन तन बहुत उपजिया रिथमी रजी तिप्त अगहाय सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाय पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाय परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याय। महला पंजवा। जीवन पद मेरे

रंग रूप रस बाद के करह पराणिया जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरन द्वार जे तुद भाव ही पौड़ी जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वड भागे नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

तह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे दिठा मृत को तिल बेठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़ी है, सो सच कमावो नेड़े देखो पार ब्रह्म।

तन फटन जिन्ना साहिं विसरै महला पंजवां प्रेतों की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काज सवारी निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारी नानक का प्रभ वड्डा है।

तू तरवर हौ पंखी आहे, मंद भागी तेरो दर्शन नाहे। तू सतगुर हौ नौ तन चेला, कह कबीर मिले अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी, जब हम एको एक कर जानिया, तब लोग काहे दुख मानिया।

आज तब जानोगे जब उगरे गोपाज। कहो कबीर पात हर परवान, सर्व त्याग भज केवल नाम। गौड़ी कबीर जी नगन फिरत जो पाईए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीन से आत्म राम। रहाओ मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति भेद न गई आकाई। बिंद राख जो तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौड़ी कबीर जी

रत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने पी नाही। चार चरण कह बहु आगर, साधु सुख पावे कल सागर। कहो कबीर बहु काय करीजै, सर्बस छोड़ महारास पीजै।

चतराई ना चतर भुज पाई रहाव पर हर लोभ अरलोकाचार पर हर काम क्रोध अहंकार कर्म करत बदे अहमेव मिल पाथर की करही सेव कहो कबीर भगत कर पाया भोले पाए मिले रघुराया गौड़ी कबीर जी गर्भवास मह कुल नहीं जाती ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती कहो रे पंडित बामन कब के हुए बामन कह कह जन्म मत खोए रहाओ जौ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद हम कत लोहू तुम कत दूध कहो कबीर जो ब्रह्म बीचार है तो ब्राह्मण कहियत है हमारे गौड़ी कबीर जी अंधकार सुख कबह ना सोई है राजा रंक दो मिल रोई है जौ पै रसना राम ना कहबो उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ जस देखी है तरवर की छाया प्राण गए कहो कां की माया जस जंती में

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहां ही जान जान सब कह तहां ही रहाओ कहन कहावन नह पति आई है तो मन माने जाते हो मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस

तौ कीजै जौ आपन जीजै। मैं ना मरूं मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जे आवनहारा रहाऊ। या देही परमल महकंदा, तां सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज भरै मत हारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपथ कबहू पेखारी। साकत मर है संत सब जीव है।

कीना, पूर्व जन्म हो तप का ही ना, अब कहो राम कवन गत मोरी, तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ, सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया, बहुत बरस तप किया कांसी, मरन भया मगहर की बासी, कांसी मगहर

सुगंध बसाई कहत कबीर चेतरे अंधा सत राम झूठा सब धंधा गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके जमते उल्ट भय है राम दुख बिन से सुख कियो विश्राम बैरी उल्ट भय है मीता साकत उल्ट सुजन भय चीता अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया शांत भई जब गोविंद जानिया रहाउ तन मह होती कोट अपाद उल्ट भई सुख सहज।

गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लावू खोजत तन मह ठौर ना पावू लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाउ एक भाई देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी।

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जो बेख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार। पंडित देखो हृदय विचार, प्रीत बिना कैसे बदै स्नेह। जब लग रात तब लग नहीं नेहो। रहाओ साहन सत करे जी अपने, चोर मैये को मिले ना सुपने। तन मन धन।

चौड़ कत बोड़ी हर सिंह तोड़ बिख्या संग जोड़ी रहाओ तुर नर दादे लागी आग निकट नीर पास पीवस ना झाग चेतत चेतत निकस्यो नीर तो जल निर्मल कथक कबीर गौड़ी कबीर जी जेहे कुल पूतना ज्ञान बीचारी विधवा कसना पई महतारी जेहे नार राम भगत नह साधी जनमत कसना मूह अपराधी रहाव मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजिया।

का नाम। इनके सद बलिहार है जाओ, सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन पावे रहाओ। जेहे कट राम रहया भरपूर, इनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी संच महारस तन भया काठी वाको कही है सहज मतवारा पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाउ सहज कलालन जो मिले आई आनंद माते अन दिन जाई चीनत चीत निरंजन लाया कहो कबीर तो अनुभव पाया गौरी कबीर जी मन का सुपहु मनह व्यापी मनह मार कवन सिद्ध थापी।

तुझह ले तारू खिचह ता प्रेम कै चावक मारू कहत कबीर भले असवारा वेद कतेव तेरह निरारा गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए तेह मुख देखत लू कट लाए एक दुख राम राय काटो मेरा अग्न दह अर गर्भ बसेरा रहाओ काया बेगूती बहु विद भांति को जारे को गढ़ ले माटी।

राखे कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ, काको जरै काहे होए हान, नटवट खेलै।

अंत समाया। कैसे जीवन हुए हमारा जब ना होए राम नाम अधारा रहाउ। कहो कबीर खोजो असमान राम समान ना देखो आन। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग सो सिर चुंच सवार है काग। इस तन तन को क्या गर्भैया।

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हम हो ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते सेव ब्रह्म डराना सो सुख हम हो साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन में

भाव न जाना, जिसका भरम गया तिन साच पछाना, इस मन को रूप न रेखिया काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ समाई, इस मन का कोई जाने पियो, यह मन लीन भय सुख देव, जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को रव रहे कबीरा, गौड़ी द्वार रे अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भय लिव लागे रहाउ, साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तार तारे।

तपि रे जी न लाज लाज तो हे नाही हर तज कत काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जन पर कर जात ना सोही सो साहिब रहया भरपूर सदा संग नाही हर दूर कवला चरण सरन है जाके कहो जन का नाही घर ताके सब को कह जास की बाता सो समरथ निज पत है दाता कह कबीर पूर्ण जग सोई जाके हृदय अवर ना होई।

कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई। रहाओ साधु संगत दियो रलाई, पंच दूत ते लियो छड़ाई। अमृत नाम जपो जप रसना, मोल दास कर लीनो अपना। सतगुर की

आधार जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखो ताते अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

होई। उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परै रसोई। आसन की बिद सब को जाने, छूटन की एक कोई। कह कबीर राम हृदय विचारे, सूतक तिन्ह ना।

सतगुर प्रसाद जीवत पितर न माने को मुए श्राद्ध कराही पितर भी बपरे कहो क्यों पावे है कौआ कूकर खाही मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते।

हल्की लगे ना भारी रहाउ। अर्ध उर्ध दो तह नाही, रात दिन सतह नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही। सतगुर तहां समाही, अगम अगोचर रह निरंतर, गुर कृपा ते लहिए कहो कबीर बल जाओ गुर अपने। सत संगत मिल रही है गौड़ी, पाप पुन दोए बैल बसाही, पवन पूंजी परगासियो तृष्णा गुण भरी घट पीतर, इन बिद टांड बसाहयो ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बनजारा रहाओ। काम क्रोध दोए भये जगाती, मन तरंग बटवारा, पंच तत् मिल दान नवेर है, टांडा उतरियो पारा। कहत कबीर सुनो रे संतो, अब ऐसी बन आई घाटी, चढ़त बैल एक थाका, चलो गोन छिटकाई।

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाऊ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्य सवारे ता सुहागन जानिए गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पल मीठा अवरना दूजा भाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी ए कह है सिद्ध पाई हर बिन भरम भलानी अंधा जाप है जाओ आप छुटकावन ते बांधे।

पिंड तह नाही रचनहार तह नाही जोड़नहारू सदा अतीता एह कही है किस माही जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे जब लग होए।

हाल खंड ब्रह्मांड मह सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है झूठे हुए पसारी मन पवन दोए तुम्बा करी है जुग जुग सारद साजी थिर पई तंती टूटस नाही अनहद किंगरी बाजी सुन मन मगन भये है पूरे माया डोल ना लागी कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी पौड़ी गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधिकाई गई बनावन माहो कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ गजी ना मिनिया तोल ना तुलिया पांचन सेर अढ़ाई जो कर पांचन बेग ना पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस।

नतर रही उरझाई, छोड़ पसार इहां रहो बपुरी, कहो कबीर समझाई गौड़ी। एक जोत एका मिली, किंबा हुए मोहोए, जित घट नाम ना उपजे, फूट मरे जन सोए। सांवल सुंदर रामैया, मेरा मन लागा तो हे रहाओ, साध मिले सिद्ध पाई है।

आई गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनहु बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है।

देव गौड़ी अग्न ना दह पवन नहीं मगन कस कर नीर ना आवे राम नाम धन कर संचौनी सो धन कत ही ना जावे हमरा धन माधो गोविंद धरनी धर यह सार धन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लही है रहाओ इस धन कारण शिव सन कादिक खोजत भय उदासी मन मुकंद जिहवा नारायण परे ना जम की फासी निज धन ज्ञान भगत गुरदीनी तास समत मन लागा जलत अंब थंब मन धावत परम बंधन पहु भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट असव हसती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुभद ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यो ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहे ओ रहाओ ज्यों उद्यान कुसम पर फुल्लत किन्ह ना कराओ लयो तैसे भ्रमत अनेक जोन मह फिर काल हयो या धन जोगन अर सुत दारा देखण कौ जो दयो तिन्ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री परेर लयो औद अनल तन तिन को मंदर चहु दिस ठाट ठयो कह कबीर भय सागर तरन कौ मैं सतगुरु।

तोरा तन धन सब रस गोविंद तोरा रहाउ। इस माटी मह पवन समाया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम उसारी किन मह बिन सजाए अहंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाउ। जां तिस भावै ता हुक्म मनावै इस बेड़े को पार लंघावै गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर भज सार गपानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नौवा जोन छाड़ जो जग मह आयो लागत पवन खसम बिसरायो जियरा हर के गुना गाओ रहाओ। गर्भ जोन मह उर्द तप करता तौ जठर अगन मह रहता लख चौरासी जोन भ्रम आयो अब के छुटके ठौर ना ठायो कहो कबीर भज सार गपानी आवत दिसै जात ना जानी गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांछी है।

गुण गाइए जाते पाइए परम निदान रहाउ। क्या जप क्या तप संयमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत ना जानिए भाउ भगत भगवान संपै देख ना हरखिए।

मझार सेवक सो सेवा भले जिहे घट बसै मुरार गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार।

और रहाव और मुए क्या रुई है जो आपा थिर ना रहाए जो उपजै सो बिनस है दुख कार रुए बलाए जह की उपजी कह रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले।

जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम नारायण रसना राम रवीजय राग गौड़ी ग्यारवा आस पास घन तुरसी का बिरवा माज बना रस गाऊं रे वाका स्वरूप देख मोही ग्वारन मोको छोड़ ना आऊ ना जाहू रे तो हे चरण मन लागो सारंग धर सो मिले जो बडभागो रहाउ बिंद्राबन मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे जा का ठाकुर तुही सारिंग धर मोहे।

छाडोह भरम प्रगट होए नाचोह, या माया के डांडे सूर के सनमुख रन ते डरपे, सती के सांचे भांडे डगमग छाड रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है, लीनो हाथ संधौरा रहाओ काम।

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो जो निंदा हो रे हमरा जीवन निंदक लोरे निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमरा करे उदार जान कबीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार राजा राम तू ऐसा निरपहु तरन तारन राम राया रहाओ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक भये है एक देखत मन पति आही जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुद्ध बल ना खटाई कह कबीर बुद्ध हर लई मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी बस्त अनूप बीच पाई कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे करते बार ना लाई अब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कै जन्म गवायो चोर मुस्से घर जाई रहाओ पंच पहरुआ दर मह रहते तिनका नहीं पतियारा चेत सुचेत चेत हुए रहो तव लै परगास उजारा नौ कर देख जो कामन भूली बस्त अनूप ना पाई।

जास गुण गाव है तास बस है मोरे प्राणा ना रहाउ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित गगन मंडल में त्या नाना। विख रोग पै बंधन भागे मन निज कर सुख जा नाना। एक समत रत जान मान प्रभ दूसर मन है ना आनाना। चंदन बास पये मन बासन त्याग घटियो अबमानाना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना। तेहे बड भाग बस्यो मन जाकै कर्म प्रधान मथा नाना। काट सकत शिव सहज परगासियो एकै एक समानाना। कह कबीर गुर भेट महा सुख भ्रमत रहे मन मानाना।

बावन अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्ही माहे ए अखर खिर जाहिंगे ओए अखर इन मह नाहे जहां बोल तह अक्षर आवा जह अबोल तह मन ना रहावा बोल अबोल मद है सोई जस ओह है तस लखै ना कोई लह लहू तो क्या कहू कहू ता को पकार भटक बीज में रब रहे हो जाको तीन लोक बिस्थार अलह लहंता भेद शै कश कश पायो भेद उल्ट भेद मन बेदेओ पायो अपंग अशेद तुरक तरीकत जा।

आद मैं जाना लिख अर मिटै ताहि न माना ओंकार लखै जो कोई सोई लख मिटना ना होई कक्का किरण कमल मह पावा सस बगास संपट नहीं आवा हर जी तहां कुसम रस पावा कह कहां कह का समझावा खखा एह खोड़ मन आवा खोड़े छाड़ ना दह दिस तावा खसम जान खिमा कर रह तो हुए निखियो अखै।

गह गगन रहाई, कग्गा घट घट निमसै सोई, घट फूटे घट कबह न होई, ता घट माही घाट जो पावा, सो घट छाड़ अब घट कत तावा, नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह, चचा रचत चित्र है भारी, तज चित्रै चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, तज चित्रै चित्राख चितेरा, छछा एह शत्रपत पासा, छक के ना रहो छाड़ के ना आसा।

परवाना। कत झक झक और न समझावा, झगर किए झगरो ही पावा। नन्या निकट सो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए। जां कारण जग ढूंढ्यो, नेरो पायो ताहे। तटा बिकट घाट घट माही, खोल कपाट महल के ना जाही।

है बिंद मलावा, बिंद है बिंद ना बिचरन पावा, बंदो होए बंदगी गह, बंद को होए बंद सुदल है, पब्बा भेद है भेद मलावा, अब पवो पान परोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया भेद पूपत पहचानिया, मम्मा मूल गहया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिल मावे, मगन पयाते सो सच पावे, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलया ना कोई।

मत हन कर बस काया गांव रण रूतो भाजै नहीं सूरो थारो नाव रा रा रस निरस कर जानिया होए नरस सो रस पहचानिया ए रस छाडे ओह रस आवा ओह रस पिया ए रस नहीं भावा लल्ला ऐसे लिव मन लावे अनत न जाए परम सच पावे अर जो तहां प्रेम लिव लावे तो अलह लह लह चरण समावे ववा बार बार बिसन समहार

एहो अर ओहो जब मिले तब मिलत ना जाने कोई। सत्सा सो नीका कर सो दोहो घट परचा की बात नरोड़ हो। घट परचा जो उपजे पाओ पूर रहया तह त्रे पवन राव। खखा खोज परे जो कोई जो खोजे सो बहुर ना होई। खोज बूझ जो करे बिचारा तो पव जल तरत ना लावे बारा। सत्सा सो सह सेज सवारे सोई सही संदेह निवारे। अल्प सुख छाड परम सुख पावा तब एह त्री ओह कंत कहावा। हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तब है मन माना। है तो सही लख जो कोई तब ओही ओह एहो ना होई। न्यो न्यो करत

छठ खट चक्कर शहू दिस धाय, बिन परचै नहीं थिरा रहाय। दुबदा मेट खिमा गह रहो, कर्म धर्म की सूल ना सहो।

एकादशी एक दिस तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहूं लोक का पियो अचरज भया जीव ते सियो। तेरस तेरह अगंब खान अर्द उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मजार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरो ध्यान कतनी।

रीत, पंच चोर की जाने रीत, कर छोड़े बाहर जिन जाए, नातर खरार सहराए, बुधवार बुध करे प्रगास, हृदय कमल में हर का बास, गुर मिल दो एक सम धरे, उर्द पंकल।

माहि ऐनस कसमल तो वह नाहि सो किरत सहारै सो एह ब्रत चढ़ै अन दिन आप आप स्यो लड़ै सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट ना पैसै कवै थावर थिर कर राखै सोई जोत दी वटी घट मह जोई बाहर भीतर भया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब लग घट मह दूजी आन तौ लो महल न लाभै जान रमत राम स्यों लागो रंग कह कबीर तब निर्मल अंग राग गौड़ी चेती बाणी नाम देव जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारियले राम कहत जन कस ना तरे रहाउ तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याज अजामल तारियले करन बदक जन तेउ मुक्त भये हौ बाल बाल जिन राम कहे दासी सुत जन बिदर सुदामा उगर सैन कौराज दिए जापहीन तापहीन कुलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेउ तरे राग गौड़ी रवदास जी के पदे गौड़ी गुआररी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता जन्म को भांति।

प्रसाद कूप भरियो जैसे दादरा कस देश बदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

पाए बोरे मोसौ को न कह समझाए जाते आवागमन बिलाय रहाउ बहु विद धर्म निरूपी है करता दिसै सब लोए कवन कर्म ते छूटी है जे साजे सब सिद्ध होए कर्म अकर्म बिचारी है शंका सुन वेद पुराण संसा सद हृदय बसै कौन हिरै अभमान बाहर उदक पखारी है घट भीतर बेबिद बेकार शुद्ध कवन पर्व होए बो सोच कुंचर बिद व्यवहार रब प्रगास रजनी जथागत जानत सब संसार पारस मानो तांबो छुए कनक होत नहीं बार परम परस गुर भेटी है पूर्व लिखत लेलाट हुन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट भगत जुगत मत सत करी भ्रम बंधन काट बेकार सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक बेचार अनक जतन निग्रह।

पड़े रिथि सुर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मछ पयाले गावन तुदनो।

तो पुरुख निरंजन हर पुरुख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावहो संत हो जी सब दुख वसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जी।

वह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तापह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू

करे, गुर प्रसाद वस्सै मन आय, दुख अनेरा विचों जाय। साच प्यारा आप करे, अवरी को साच ना दे, जे किसै देव खाणै, नानक आगै पूछ ना ले। आसा महला पहला, ताल मदीरे घट के घाट, दोलक दुनिया वाजह वाज, नारद नाचै कल का भाव।

कौन कहिए, सर्ब निरंतर रव रहिया, नाल कटांब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सिष्ट गया, आग्या अंत न पायो ताका, कंस छेद किया वड्डा भया, रतन उपाय तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया, आसा महला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप नारेख अनाहद वाजै, शब्द निरंजन की।

आद जब लग हृदय न आवह जाद तौ प्रवाह के ही क्या कीजै जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाओ मन की मत मता गल मता जो किश बोलिए सब खतो खता क्या मुँह लै की चै अरदास पाप पुन दोए साखी पास जैसा तू करह तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जे ही तू मत देह ते ही को पावे तुद आपे पावे तिवै चलावे राग रतन परिया परवार तिस विच उपजै अमृत सार नानक करते का इहो धन माल जे को बूजै इहो विचार आसा महला पहला कर कृपा अपने घर आया।

हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाव गुरु द्वारे हमरा व्याहो जे हुआ जां सहु मिलिया तां जानिया तिहों लोका हमें शब्द रविया है आप गया मन मानिया अपना कार्य आप सवारी पूर्ण कार्य ना हुई जित कार्य सत संतोख दया धर्म है गुरमुख बूझे कोई भणत नानक सबना का पिर एको सोए जिसनो नदर करे सा सुहागण होए आसा महला पहला ग्रहो बानो समसर सहज सुपाई दुर्मत गत पई कीरत थाए सच पौड़ी साचो मुख नाम सतगुर सेव पा

एक बहु करे दुख विकिया सुख तन पर हरे काम क्रोध अंतर तन हिरे दुबदा शोहड़ नाम निस्तरे सिफत सलाहन।

हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ, कर्म धर्म सच साचा नाओ, तां कै सद बलिहारे जाओ, जो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निदान, हर वार जिन पाया धन नारी।

खेल गुरमुख निर्मल रह प्यारी, ज्यो जल अंब ऊपर कमल नरारी। बुरा भला कहो किसनो कहिए, दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लही है।

चिंत करे कह सुनह जो मानह नाऊ हो बलिहारे तां कह जाऊ नानक एक कह अरदास जियो पिंड सब तेरे पास जा तू देह जपी तेरा नाऊ दरगाह बैसन हुए थाऊ जा तुद भावे ता दुरमत जाए ज्ञान रतन मन वसे आए नदर करे ता सतगुर मिले प्रणवत नानक पवजल तरे आसा महला पहला पंचपदी दुध बिन तीन पंख बिन पंखी जल बिन उत्पुज काम नाही क्या सुल्तान सलाम विहूना अंधी कोठी तेरा नाम नाही की विसरह दुख बहुता लागे दुख लागे तू विसर नाही रहाऊ अखी अंध जीव रस नाही।

सो प्रगट जाय, सच निशान है ठाक न पाय। पंडित पढ़े बखाण है वेद, अंतर वसत न जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना हुए, साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हों आखा आख बखाणी, तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदरान। आसा महला पहला, काची गागर देह दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई, यो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है। जिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेमो। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना अवर कोई, ज्यो तू राख है तिव ही रहना। दुख सुख देव है करह सोई, आसा मनसा धू विनाशक। त्रिहो गुण आस नरास भई, तुरी अवस्था गुरमुख पाई है। संत सभा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हृदय अलख अपेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाई सहज सेवा, आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई रोए पूत न कल्पे माई एत मोहे डूबा संसार गुरमुख कोई उतरे पार एत मोहे फिर जूनी पाहे मोहे लागा जम पुर जाहे गुर दीखिया ले जप तप कमाहे ना मोह टूटे ना थाए पाहे नदर करे ता एहो मोह जाए नानक हर स्यों रह समाए आसा महला पहला आप करे सच अलख अपार हौ पापी तू बख्शन हार तेरा भाणा सब किछ होवै मन हठ कीचै अंत वगोवै रहाउ मन मुख की मत कूड़ व्यापी बिन हर सिमरन पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किछ लेवहो जो उपजै सो अलख अपेवहो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलिया भगत बिरड़ाई सगली सौदी टोटा आवे नानक राम नाम मन भावे आसा महला पहला चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जा पंच रासी ता तीर्थवासी घुंगरू वाजे जे मन लागे तौ जम कहां करे मोस्यों आगे रहाउ आस नरासी तौ सन्यासी जा जत जोगी ता काया भोगी।

मेरा सहो जागे हों निस भर सोवा क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहो जागे हों निस भर सोवा रहाऊ आस प्यासी सीजै आवा आगे।

पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ कर है सलाम लखा ऊपर फरमाइश तेरी लख उठ राख है मान जां पत लेख है ना पवे ता सब नराफल काम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंधो अंधा रहाओ लख खटिए है लख संजिए है खाजे है लख आवे है लख जाहे जां पत लेख है ना पवे ता जी किथे फिर पाहे लख सासत समझावनी लख

आस्था महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम सियो मेल लोका मत को पकड़ पाए लख मणिया कर।

तेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राव सच्चा नावन तां फीए जा एनस लागे भाव इक लोकी होर समशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबहून खूटस नाहे आसा घर चौथा महला पहला।

कर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए। पीर पेकांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पए। साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमण लिए। दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए। खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी। तू साहिब हो सांगी तेरा प्रमै नानक जात कैसी। आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मन वासी थिर ना रह जैसे भवह उदासी। मन मेरा दयाल सेती थिर ना रह। लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाऊ। फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू। पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू। पंच सखी

तिस क्या कहिए भाई, जो किस करना सो कर रहया, कीते क्या चतराई, तेरा हुक्म भला तुद भावे, नानक तां को मिले वडाई, साचे नाम समावे रहाव, किरत पया परवाना लिखिया, बहुड़ हुक्म ना होई, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, मेट ना सके कोई, जे को दरगाह बहुता बोले, नाव पवे बाजारी, सतरंज बाज

बंदी अंदर सिफत कराए ताको कही है बंदा आसा महला पहला गुर का शब्द मने मह मुंदरा खिंता खिमा हंडावू जो किस करे भला कर मानू सहज जोग निद पावू बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी परम तंत मह जोगं अमृत नाम निरंजन पाया ज्ञान काया रस भोगं रहाओ शिव नगरी मह आसन बैसो कल्प त्यागी बादं सिंह शब्द सदा धुन सोह एनस पूरे नादं।

सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन पर थर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावै कर करनी कस पाई पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चवाई बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै सहज रंग रच रहिया ऐनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया रहाओ पूरा साच प्याला सहजे तिसह पियाए जा कौ नदर करे अमृत का व्यापारी होवै क्या मद सूचै भाओ धरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवै मुक्त बैकुंठ है करे किया सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म ना हारै कहो नानक सुन पर थर जोगी खीवा अमृत धारै आसा महला पहला खुरासान खसमा ना किया हिंदुस्तान डराया आपै दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तैं की दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारी ता मन रूस न होई रहाओ सकता सिंह मारे पै बगै खसमै सा पुरसाई रतन बगार वगोए कुत्ती मोया सार ना काई आपे जोड़ बछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई जे को नाव तराए वड्डा साध करे मन पाणे खसमै नदरी कीड़ा आवै जेते चुगै दाणी मर मर जीवै तां किस पाई नानक नाम वखाणे राग आसा कर दूजा महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर दर्शन पावै वडभाग गुर कै शब्द सच्चै बैराग खट दर्शन वरतै वरतारा गुर का दर्शन अगम अपारा गुर कै दर्शन मुक्त गत होए साचा आप।

होए, गुर कै दर्शन सदा सुख होए, गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार, नगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगै ना पीर, जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै, आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गवाए, सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए, सच्ची वाणी पाए भाग कोई।

पाए, हर एकी मत किन बिद होए, हर अपरम पर अगम अगोचर, गुर कै शब्द मिले जान कोए रहाओ, गुरमुख की मत जान कोए, विरले कर्म प्राप्त होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द बखाण कोए, विणनावे दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे ता उतरे पीर, बिन गुर भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए, पीवत रह पियाए सोए, गुर कृपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए, आसा महला तीजा, मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर, सेवत ही सुख शांत शरीर, शब्द तरे जन सहज सुपाए, इनकै हम सद लागह पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगाह मिले सुपाए रहाओ, शब्द चाखै साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहया भरपूर, आपे नेड़ आपे दूर, आखण आखै बकै सब कोई, आपे बख्श मलाए सोए, कहने कथन ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विचों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, हत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारन हार, आसा महला तीजा, दूजै पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरता जन्म गवाया, सतगुर सेवै सोजी।

सुख पाई, संत संगत मिल हर गुण गाय, नामी नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की बाणी नाम बजाय, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाए आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीनै पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाई, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में लाहा हर जप लै जाई, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाई, बिरथा जन्म दूजै लो भाई, नाम मिहूनी दुख जलै सबाई, सतगुर पूरै बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विस्टा का वास, तिथ घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख

सोग हरक दोए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ, करनी कार तुरों फरमाई, बिन शब्द को थाए ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई, मन मुख परम पुले संसार, बिन राशी कूड़ा करे व्यापार, बिन राशी वखर पल्ले ना पाई, मन मुख भुला जन्म गुआई।

पाखंड वकार रहाउ। सदा सुहागण जो प्रभ पावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे। सेज सुखाली अन दिन हर रावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे। सा सुहागण साची जिस साच प्यार, अपना पिर राखे सदा उर तार। नेड़े वेखे सदा हदूर।

दाता अवर ना कोई गुरसागर पूरा भंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी दे वनहार नानक बख्शे बख्शनहार आसा महला तीजा गुर साहिर सतगुर सच सोए पूरे भाग गुर सेवा होए सो बूझे जिस आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान बनासे अन दिन जागे वेखे सच सोए रहाउ मोह गमान गुर शब्द जलाए।

समावे, सत संगत मिल सब सूझी पाई, गुर का शब्द हर भगत दृढ़ाई, भाणा मने सदा सुख होए, नानक सच समावे सोए, हासा महला तीजा पंचपदी, शब्द मरे तिस सदा आनंद, सतगुर भेटे गुर गोबिंद, ना फिर मरे ना आवे जाई, पूरे गुर ते साच समाई।

ना जाए, पूरै सतगुर दित्ती वडियाई, उत्तम पदवी हर नाम समाई, जो किछ करे सो आपे आप, एक घड़ी मह थाप उथाप, कह कह कहना आख सुनाई, जे सो काले थाए ना पाई, जिनकै पोतै पुन तिन्ना गुरु मलाई, सच बाणी गुर शब्द सुनाई, जहां शब्द वसै तहां दुख जाए, ज्ञान रतन साचै सहज समाए, नावै जेवड होर धन नाही कोए, जिसनो बख्शे साचा सोए, पूरै शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए, आसा महला तीजा, निरत करे बहु वाजे बजाए, इहो मन अंधा बोला है किसे आख सुनाए, अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बले ना सोजी पाए, गुरमुख भगत घट चानण होए, आप पछाण मिल।

पछान गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत निरत दुख होए एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी भवजल तरे गुर कै बचन भगत थाए पाए हर जीव आप वसै मन आए हर कृपा करे सतगुरु मलाए निश्चल भगत हर सिओ चित लाए भगत रत्ते पिन सच्ची सोए नानक नाम रत्ते सुख होए आसा घर अठवा काफी महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर कै भाणै सतगुर मिले सच सूझी होई गुर प्रसादी मन वसै हर बूझै सोई मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई गुर कृपा ते मन वसै तां सदा सुख होई रहाउ इस जुग में निरपो हर नाम है पाईऐ गुर विचार बिन नामै जम कै वस है मन मुख अंध गुआर हर कै भाणै जन सेवा करै बूझै सच सोई हर कै भाणै सलाही।

बिहारी हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी। कलयुग मह धड़े पंच चोर चगड़ाए काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए। जिसनो कृपा करे तिस सत संग मलाए हमरा हर धड़ा जिन एह धड़े सब गवाए। मिथ्या दूजा पाओ धड़े बह पावै प्राया सिदर अटकलै अपना अहंकार वधावै जैसा बीजै तैसा खावै। जन नानक का हर धड़ा धर्म सब सृष्ट जिन आवै। आसा महला चौथा हिरदय सुन सुन मन अमृत पाया।

भाग गुरमुख हर पाए, नाम हीन कालक मुख माया, नाम बिना त्रिग त्रिग जीव आया, वड्डा वड्डा हर भाग कर पाया, नानक गुरमुख नाम दिवाया, आसा महला चौथा, गुण गावा गुण बोली बाणी, गुरमुख हर गुण आख बखाणी, जप जप नाम मन पया आनंदा, सत सत सत गुर

माया मल धारी, विण गुण जन्म मुए अहंकारी, शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मत तत कढ़ी।

निकाई नाम रविया सब सास ग्रासा रहाओ नामै सुरत सुनी मन पाई जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सखाई नाम हीन गए मूड नंगा पच पच मुए बिख देख पतंगा आपे थापे थाप उथापे नानक नाम देवै हर आपे आसा महला चौथा गुरमुख हर हर वेल वधाई।

तरंगा जप जप नाम गुरमत सालाही मारिया काल जम कंकर भुयंगा रहाऊ हर हर गुरमह भगत रखाई गुर तुट

अंधा, सबने फल कर्म किए दुख तंदा, हर हर हर जस जपै वड भागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी एह मनुआ हर रंग भेन जोगी हर देहो मती उपदेस जुग जुग हर हर एको वरतै तिस आगै हम आदेश रहाउ गाव है राग भांत बहु बोल है एह मनुआ खेलै खेल जो वह कूप सिंचन को बसधा उठ बैल गए चर बेल काया नगर मह कर्म हर बोव हो हर जामै हरिया खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोग हो हर सिंचो हो गुरमत जेत जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी।

खिन लागे हम तब लग समारो नाम। मेरा मन ऐसी भगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह ना सको। जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा कब को मेले पंच सत गायन। कब को राग धुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे। तब लग मेरा मन राम गुण गावे तब को नाचे पाम पसारे। कब को हाथ पसारे हाथ पाम पसारत बिलम तिल लागे। तब लग मेरा मन राम समारे कब को लोगन को पते आवे। लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो। ता जय जय करे सब कोई आसा महला चौथा। सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए। ज्ञान रतन बलिया घट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाच हो हर हर त्याए ऐसे संत मिले है मेरे भाई। हम जन के तो वह पाए रहाओ हर हर नाम जप हो मन मेरे। अन दिन हर लिव लाए जो इच्छो हो सोई फल पाव हो। फिर भूख ना लागे आए आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए। से संत भले तुद पावे है जिनकी पत पावे है थाए। नानक आख ना राजे हर गुण ज्यों आखे त्यों सुख पाए। भगत भंडार दिए हरे अपने गुण गाहक वणज लै जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवां के काफी महला चौथा। आया मन तुरा हो हम मैं रोई है गुरमुख नाम त्याए अस्थिर हुई है। गुरपुरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया। रहाओ पूर्व लिखे देहे से आए माया चलन अज के कल तुरहु फुरमाया। बिरथा जन्म तिना जिनी नाम वसारिया जुए खेलन जग के इहो मन हारिया। जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सच्चे सच सच समाया। आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम त्याया। गुर प्रसादी भुज सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया। दर सच्चे सतियार महल बुलाया रहाओ अंतर नाम निदान गुरमुख पाईऐ। अन दिन नाम त्याए हर गुण गाईऐ अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाईऐ। हम मैं गर्भ गर्भ आप खुआईऐ नानक आपे आप खुआईऐ। गुरमत मन परगास सच्चा पाईऐ राग असावरी कर सोलवा के दो महला चौथा। सोधंग एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम अन दिन हर नाम कीर्तन करो। सतगुर मोको हर नाम बताया हम हर बिन खिन पल रह ना सको। रहाउ हमरे सरवण सिमरन हर कीर्तन हम हर बिन रह ना सको। हम एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों रह हर सेवा बिन। किन्हू प्रीत लाई दूजा भाव रिद धार किन्हू प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान। असावरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बताव होरी माई। हम हर बिन खिन पल रह ना सकूं जैसे कर हर बेल रिझाई रहाओ। हमरा मन बैराग बरकत भयो हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह ना सके तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई। राख शरण जगदी सुर प्यारी मोहे शरदा पूर हर गुसाई। जन नानक कै मन आनंद होत है हर दर्शन निमक दिखाई।

समानी तुरिया गुण मिल साध पछानी सहज गुफा में आसन बांधिया जोत स्वरूप अनाहद वाजिया महा आनंद गुर शब्द विचार प्रिय सो राती धन सुहागण नार जन नानक बोले ब्रह्म विचार जो सुने कमावे सो उतरे पार जन्म ना मरे ना आवे ना जाई हर सेती ओह रह समाई आसा महला पंजवा निज भगती सीलवंती नार रूप अनूप पूरी आचार जित ग्रह वसै सो ग्रह सो बावंता गुरमुख।

वख वख परमावे घर की नायक घर वास ना देवे जतन करूं पुरजाई फरेवे रहाव तुरकी भेजी।

परदेश झाग सौदे कौ आया, वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्लै आनी, देख रतन

माना, कर मस्तक धार राखियो कर अपना, क्या जान है एह लोग अजाना रहाव, सुहाग हमारो अब हुन सोहयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो, आंगन मेरा सुबा चंद, निसबासर प्रिय संग आनंद, वस्त्र हमारे रंग चलूल, सगल आभरण शोभा कंठ फूल, प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान, दुष्ट दूत की चूकी कान, साधु कुचियां सद

फिर सुहागन संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उन्मुख कर परना

जानते मन निर्मल हर हर गुण गाय पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलियो सहज सुपाय रहाओ तावत रहे एक एक बूझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकड़े।

परमेश्वर बिसरिया अपना कीता पावे निंदक रहाव। जे कोई उसका संगी होवे नाले लए सदावे अनहुंदा अजगर भार उठाए।

पंजवा पंच पदे प्रथमे तेरी नीकी जात द्वितीया तेरी मनिए पांत तृतीया तेरा सुंदर थान बिगड़ रूप मन मह अभमान सोहनी स्वरूप सुजान विचक्षण

ना मोआ होए तिस निश्चल रहना। जीवत मोए मोए से जीवे हर हर नाम अवखद मुख पाया। गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाओ। काची मटकी बिनस बनासा जिस छूटे त्रिकुटी किस निज घर वासा। ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला तरन पड़े तिस लगे ना काला। प्रमत फिरे तिन किछु ना पाया से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया। जियो पिंड सब हर का माल नानक गुरमिल भये निहाल। आसा महला पंजवा पुत्री तेरी बिद कर थाटी जान सत कर हुई।

चौपदी एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन न रहे कैसे मिलू प्यारी एक पल दिन समो को कबहु ना बिहावे दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मोको पिरह मिलावे रहाउ चार पहर चहु जुगह समानी रैन पई तब अंत ना जानी पंच दूत मिल पिरो विछोड़ी ब्रह्म ब्रह्म रोवे हाथ पछोड़ी।

निदान अमृत सार सदे ही परपूरा रहाउ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राई सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवां कर कृपा हर प्रगति आया मिल सतगुर धन पूरा पाया। ऐसा हर धन संची है भाई पाए न जल जल नहीं डूबै। संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाउ तोट न आवे न खुट न जाई। खाए खर्च मन रहया अगाए सो सच साह जिस कर हर धन संचाना। इस धन ते सब जग वरसाना इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना। जन नानक अंतवार नाम गहना। आसा महला पंजवा जैसे किरसान बोवे किरसानी काची पाकी बाड परानी। जो जन्मे सो जानहु मुआ गोविंद भगत अस्थर है किया रहाउ। दिन ते सर पर पौसी रात रैन गई फिर हुए प्रभात। माया मोहे सोए रहे अपागे गुर प्रसाद को विरला जागे। कहो नानक गुण गाई है नीत मुख उजल हुए निर्मल चीत। आसा महला पंजवा नौ निद तेरा।

त्यों कर प्रतपाला आसा महला पंजवां जी प्राण धन हर को नाम ईहा ऊहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल।

प्रभ अवनासी घट घट चीन आसा महला पंजवा आनंद बनोद परे पुर तारिया अपना कारज आप सुआरिया पूर समगरी पूरे ठाकुर की भरपुर धार।

रहाउ तृप्त अगावन साक्य नाय अठ सठ मज्जन संत तुराय सब मैं जानू करता एक साध संगत मिल बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभमान नानक को गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास भई मत पूरी तांते बिनसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर अंध

हर रस पीवै अलमस्त मतवारा, आन रसा सब हो शेरे रहाऊ। हर रस की कीमत कही ना जाई, हर रस साध

बाद एक ऊत कत छोड़ ना जाए नानक गीता हर रस माहे आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटकै दुर्मते अपनी धारी होए नमाणी सेव कमावे है ता प्रीतम होवे मन प्यारी सुन सुंदर साधु बचन उधारी।

तुम्हारी जो यह मंत्र कमावे नानक सो पौ जल पार उतारी। आसा महला पंजवा दो पदे पई प्राप्त मालुख देवरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पवजल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाऊ जप तप संयम धर्म ना कमाया।

ओ चित कछु ना लागे, चरण कमल सरनाई, संत प्रसाद भई कृपाला, होए आप सहाय, गुण निदान नित गावे नानक, सहसा दुख मटाई, आसा महला पंजवां, औखद खायो हर को नाउ, सुख पाए दुख बिन सिया थाउ, ताप गया बचन गुर पूरे, आनंद पया सब मिटे वसूरे, रहाउ जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन त्याया, आसा महला पंजवां, पांचत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मै क्यों

संग मेली सुख सहज आनंद सोहेली साध संग गुण गाए अतोली हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा काम क्रोध माया मद मत सर ए खेलत सब जुए हारे सत संतोख दया धर्म सच एह अपने ग्रह भीतर वारे जन्म मरण चूके सब भारे मिलत संग भयो मन निर्मल।

राज मिलख जोबन ग्रह सूबा रूपवंत जो आनी बहुत दर्ब हस्ती अर कोड़े लाल लाख बै आनी आगे दरगह काम ना आवे छोड़ चले अब मानी काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर त्याय रहा।

ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, अपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने, नांगा आया नांगो जासी।

0: कर कर डूबे खप खप मोए गवारा।
1: गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा।
2: राग आसा कर पंजवा महला पंजवा।

मल धोवै पराई अपना कीता पावै इहां सुख नहीं दरगाह ढोई जमपुर जाहे पचावै निंदक अहला जन्म गवाया।

तरोई गोविंद भजन की मत है होरा वर्मी मारी साप ना मरी नाम ना सुनी डोरा रहाउ माया की किरत छोड़ गवाई भगती सार ना जाने वेद शास्त्र को

आया कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाली आसा महला पंजवा उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचे आप निवारी पंच जना ले वसगत राखे मन में है इकंकारी तेरा जन नृत करे गुन गावे रबाब पखावज ताल कुंगुरु अनहद शब्द।

नावे कर संग साधु चरण पखारे संत धूर तन लावे मन तन अर्प धरे गुर आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पेखे लाए श्रद्धा तड़का जन्म मरण दुख भागे।

आया रसक रसक बिगसानारी आसा महला पंजवा बंधन काट बसारे औगन अपना बिरद समारिया होए कृपाल मात पित न्याई बारक ज्यों प्रतपारिया गुरसिख राखे गुरु गोपाल काड लिए महापव जलते अपनी नदर निहाल रहाओ जां कै सिमरन जमते छुटिया हलत पलत सुख पाइय सास ग्रास जपो जप रसना नीत नीत।

मुक्त पए अंधकूप महा कोरते बाहा पकड़ गुर काढ़ लिए निरपव पए सगल पव मिटिया राखे राखनहारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार्य

कृपा जिसको बिपना को भाखै ओहो सुख ओहा वडियाई। जो प्रभु जी मन पाणी तू दाना तू सद मेहरवाना नाम मिलै रंग माणी।

तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समरथ वर्ण ना साको ताकि उपमा जात ना कहोरी। काजर कोठ मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनियोरी। महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई। प्रेम भगत नानक सुख पाया

ज्ञान प्रीतम पानी तारंग गुलाल कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल सोनरी सखी ए हमारी का।

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया, आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर उडलिया, सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया, आसा महला पंजवां, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहां मह फलिया, ऐसा करहू बीचार ज्ञानी, जाते पाईए पद निर्बानी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे रहाव, सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पतियां जनाई, सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना

तेरै ओलै। भ्रम के परदे सतगुरु खोले रहाउ, हुक्म बूझ रंग रस माणी। सतगुर सेवा महानिर्वाणी, जिन तू जाता सो गिरस्त उदासी।

अवतार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, गिरस्त मह चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार, प्रभ कृपा ते मन वस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर की

चित आवै सो नाम जपै जो जन तुद पावै रहाउ। तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत टह दुख डेरा। हुक्म बूझै सोई परवान साच शब्द जाका निशान। गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया भणत नानक मेरा मन सुख पाया। आसा महला पंजवां जहां पठाव हो तह तह जाई।

नंदा दुख रोग मन सगले लथा रहा कार्य काम बाट काट ज पीजे गुर प्रसाद हर अमृत पीजे दिन सरैन हर कीर्तन गाइए सो जन जम की वाट ना पाइए आठ पहर जिस विसरह नाही गत होए नानक तिस लग पा।

उठत बैठत सोवत त्याय मार्ग चलत हरे हर गाइय श्रवण सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन हुए।

सूत परोई कट कट अंतर रव्या सोई ओपत परलोखिन में करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण कराम ने अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी। आसा महला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दलब देह जीती नहीं हारे किल बिख बनासे दुख दर्द दूर पये पनीत संतन की धूर रहाव प्रभ के संत उदाहरण जोग तिस भेटे।

हे मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाउ। बिनस्यो मन का मूर्ख तीठा प्रभु का पाणा लागा मीठा। गुरपूरे के चरण गहे कोट जन्म के पाप लहे। रतन जन्म एहो सफल पया कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवा सतगुरे अपना सद सदा संहारे। गुर के चरण केस संग चारे जागरे मन जागन हारे। बिना

मुख हर हर बोले, सो जन इत उत कतह ना डोले, कहो नानक जो राचे नाई, हर माला तां कै संग जाई, आसा महला पंजवां, जिसका सब किस तिसका होए, तिस जन लेप ना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किछ करै सोई भल।

कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा, जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख

रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मूका फिर पछताना, त्रिहु गुण में वरत संसारा, नरक सुर्ग फिर

ना जानी, भोर भया बहोर पछतानी, प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहूरी, प्रभ मिलबे की लालसा, ताते आलस कहां करोरी रहाओ, कर्म है अमृत आन सारे खिसर गयो।

प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद भली बनी, जा कै ग्रह सब किछ है पूरन, सो भेटिया निरभय धनी रहाओ, नाम दृढ़ाया साध कृपाल, मिट गई भूख महा बिकराल, ठाकुर

मान्यवा ठाकर सिंह जाकी बन आई भोजन पूर्ण रहे अगाई कछु न थोरा हर भगतन को खात खर्चत बिलचत देवन को रहाओ जाका तनी अगम गुसाई।

देख चलत मन भये दलासा, नानक दास तेरा परवासा। आसा महला पंजवा, अनदिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई। सोचत साचत रहन बयानी, अनकरंग माया के चितवत। कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव, द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया। काल कै फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया। सो थान मूड निश्चल कर पाया।

ना उस बंधन ना हम बांधे, ना उस धंधा ना हम तांधे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सद केला, ना उस सोच ना

सब हुमा गर्भ मोह तज हूं रेन, उनके संग देखो प्रभ नैन। निमख निमख एही आराधो दिन सरहन, ए सेवा साधो भये कृपाल गोपाल गोबिंद। साध संग नानक बख्शिंद, आसा महला पंजवा। प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना।

सगल उधार है, प्रभु की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग भूले।

संबाहा निकसिया फूक ता हुए गयो स्वाहा ऊचे मंदर महल अर रानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत अर तिया मोहे

घाट घाट ग्रह बन बन जो है मन तन लागे होए कै मीठी गुर प्रसाद में खोटी डीठी अग्रक उसके वडे ठगाऊ छोडह नाही बाप ना माऊ मेली अपने उनले बांधे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरे मन भया आनंद पौ चूका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया कर सगला मैं सुखी बसाया आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने।

सगल सूख जपे कै नाम, सगल धर्म हर के गुण गाम। महापवित्र साधका संग, जिस भेट त लागे प्रभ रंग। गुर प्रसाद होए आनंद पावे, जिस सिमरत मन होए परगासा। ताकी गात मित कह।

गुर लाए, नानक आए पए सरनाए। आसा महला पंजवा, आठ पहर उदक इशनानी, सद ही भोग लगाए सुगयानी, बिरथा काहू छोड़े नाही।

थे लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे ता कै अनहद तूरा, आसा महला पंजवा दुपदा एक, साधु संग सखायो नाम, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, बुझ गई तृष्णा हर जसै अगानी, जप जप जीवा सारग पानी, करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जिवे हर भरे भंडार, तोट न आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै।

सुख सहज मेरा धन सुहागा, कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा, आसा महला पंजवां, माथे त्रिकुटी दृष्ट क्रूर, बोले कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर, ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया, हम गुर राखे मेरे पाई रहाव, पाए ठगौली सब जग जोहया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीरथ पवे सब तरना, से उबरे जे

वहां पकड़ हम राखा आसा मोहल्ला पंजवा सर्ब दुख जब बिसरह स्वामी इहा उहा कामना प्राणी संत तृपता से हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किस दिया तिस चितवत।

नाम जपत मन तन सब हरिया, कलमल दुख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई, रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे अपद्र है मन ते बैर, गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वसया हर का नाम, नानक तिसी ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गावले तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जां की सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है, रहाओ जां का दान नुखूटे नाही, पली भांत सब सहज समाही, जां की बख्श न मेटे कोई, मन वासाई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जां कै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गही निरभउ पद पाई, सास सास सो गुण निद गाई है, दूर ना होई कतहूं जाई है, नदर करे ता हर हर पाई है, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगे हर धन रास, आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाव, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुरपूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की शरणाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी

गुरबाणी सखी आनंद गावे, साचे साहिब कह मन भावे, वदी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली, मन चिंदिया सतगुर।

जियो पिंड सब तिसदा सब किश है तेरा मान माने तू धनी तेरा परवासा बिन साचे अन टेक है सो जानहु काचा रहाउ तेरा हुक्म अपार है कोई अंत ना पाए जिस गुर पूरा भेट सी सो चले रजाए चतुराई सियाणपां कितै काम ना आई है।

लाख भगत आराध है जपते पियो पियो कमन जुगत मलावो निर्गुण बिखई जियो तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सबना के नाथ तेरी श्रेष्ठ सब रहाओ सदा सहाई संत पेख है सदा हजूर नाम बिहू नड़िया से मरन वसूर वसूर दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण विसरिया जिन्ना नाम तनाड़ा हाल कौन जैसे पास हरियाओ

संग भेटिया सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे जिन

हर कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवां जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रैन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोए सर्व रहया परपूर सच्चा सा

सगल रोग राखन हार अपार राखै अगन माहे शीतल हर हर नाम सिमरत तपत जाए सुख सहज आनंद घना नानक जन धूरा कार्य सगले सिद्ध भए।

आनंद घना मिथ्या मोह संसार झूठा विनसना चरण कमल संग नेहो किने विरले लाया धन सुहावा मुख जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई आसा महला पंजवा आवहो मीत इकत्तर होए रस कास सब पुंच है अमृत नाम हर हर जप है।

कर तो निद हर पावो सगली दासी ठाकुर सब कहती मेरा जिसह सिंगारे नानका इस सुख बसेरा आसा मोहल्ला पंजवा संतां की होए दासरी।

हर नाम मजीठै रंगरी त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ परता कह सुमानिया एहो शिंगार बनाएरी दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाएरी गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बछाएरी आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेटै हर रायरी तिसही चज शिंगार सब साई रूप अपार री।

अपने पाए विश्रामा हुए बिखादी दुखिया ए गुरते हुटे हम शूटे अब उनाते हुए हम ते शूटे रहाओ मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेव को नानक खसमै बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद घना हर कीर्तन गाओ ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने सद सद बल जाओ गुरु विटो हों वारिया जिस मिल सच सुआओ रहाओ सगुन अप सगुन तिस को लग है जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभ भावे पुन दान जप तप जेते सब ऊपर नाम हर हर रसना जो जपे तिस पूर्ण काम पै बिन से भ्रम मोह गए को दिसै ना बिया नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया आसा घर नौवां महला पंजवां एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद चितवौ चितव सर्व सुख पावौ आज्ञा पावौ के ना पावौ एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो हौ मांगो आनल जावो सगल शत्रपत एको ठाकुर कौन समसर लावो रहाओ उठो बैसो रह पे ना साको दर्शन खोज खजावो ब्रह्मादक सनकादक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको महल दुल पावो अगम अगम अगाध बोध कीमत परे ना पावो ताकि शरण सत पुरख की सत गुर पुरख त्यावो भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आवो।

नाम दृढ़ गुर मन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्श पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवा महला पंजवा जिसनो तू अस्थर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समगरी सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ाने दिन दोए चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की उठ जासी मोहत चसाहा रे मन लेखे चल है लेखे बैस है लेखे लेंदा साहा सदा कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उटाहा आसा महला पंजवा अपुष्ट बात ते पई सीधरी दूत दुष्ट सजनई अंधकार मह रतन परगासेउ मलीन बुद्ध हसनई जो कृपा गोविंद पई सुख संपत हर नाम फल पाए सतगुरु मिली रहाओ मोहि किरपन को कोई ना जानत सगल भवन प्रगटई संग बैठनो कहीं ना पावत हुन सगल चरण सेवी आड़ आड़ को पिरत ढूंढते मन सगल त्रिशन बुझ गई एक बोल पी खवतो नाही साध संगत सीत लई एक जी गुण कवन वखान अगम अगम अगमई दास दास दास को करियो जन नानक हर सरनई आसा महला पंजवा रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला तोटे को बेग ताया सस्त वखर

गंधण वहन सुन है उर जावे है, नाम लैत अलकाया, निंद चिंद को बहुत अमाहयो, बूजी उल्टाया, पारतान पारतान पारती निंदा, अखाद खाहे हरकाया, साच तर्म स्यो रुच नहीं आवे, सत सुनत शोहाया, दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, भगत टेक हर नाया, नानक आहे सरन प्रभ आयो, राख लाज अपनाया, आसा महला पंजवा, मिथ्या संग संग लपटाई, मोह माया कर बांधे, जह जानो सो चीत ना आवे, अहम बुद्ध भय आंदे, मन बैरागी क्यों ना अरादे, काच कोठरी माहे तू बसता, संग सगल बिखे की ब्यादे रहाओ, मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, पलखिन सीजे अर जादे, जैसे मीठे साध लुभाए, झूठ धंद दुर्गम दे, काम क्रोध अर लोभ मोह, एह इंद्री रस लपटा दे, दीप वारी पुरख बधाते, बहुर बहुर जन माते, जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, तो गुरमेल सब सुख लादे, कहो नानक दिन रैन त्यावो, मार काढ़ी सगले अपादे, इउं जपियो भाई पुरख बधाते।

आद कारण कोट दिन से दुख पावे है, करी मोह तरंग मान है, फिर बहुर बहुर पछतावे है। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ। पलक दृष्ट देख भूलो, आक नीम को तूमर, जैसा संग बिसियर स्यों है रे, तैसो ही एहो पारग्रहो। बैरी कारण पाप करता, बस्त रही अमाना, छोड़ जाहे तिन ही स्यों संगी, साजन स्यों बैराना। सगल संसार एह विद व्याप्यो, सो उबरेओ जिस गुर पूरा, कहो नानक पाव सागर तरेओ। पये पनीत शरीरा, आसा महला पंजवा, दोपदे लूक कमानो, सोई तुम पेखेओ। मूड मुग्ध मुकरानी, आप कमाने कौले बांदे, फिर पाछे पछतानी। प्रभ मेरे सब विद आगे जानी, भ्रम के मूसे तू राखत परदा, पाछे जी की मानी रहाओ। जित जित लाए तित तित ला।

तिसकी सोए सुनी मन हरिया तिस नानक परसने आवे आसा घर ग्यारवा महला पंजवा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद नटुआ भेख दिखावे बहु बिद जैसा है ओहो तैसारी अनक जोन भ्रम्यो भ्रम पीतर।

आद संग मिल हर गुण गाय एहो जन्म पदार्थ जीतारी रहाओ त्रै गुण माया ब्रह्म की कीनी कहो हो कमन बिद तरिया रे कुमन केर अगाह गाखरी गुर शब्दी पार उतरिया रे खोजत खोजत खोज बिचारे तत नानक एहो जाना रे सिमरत नाम निदान निर्मोलक मन मानक पतियाना रे आसा महला पंजवां धुपदे गुर प्रसाद मेरे मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एहो मन त्रिपताना बहुर न कतहु तामो रे हमरा ठाकुर सब ते उच्चा रैन दिन सति

कहां के मर्दन खट दर्शन कर तलीरे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचों ही मोहे शलीरे जिन मिल मारे।

वड्डी कौम वस भागह नाही मुहकम फौज हठली रे कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे आसा महला पंजवां नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना

पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमुख न मन ते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग

महा पौजल लंगी है, सदा हर गुण गाओ, जन्म मरण निवारी है, दुख ना जम पुर होए, नाम निदान सोई पाए, कृपा करे प्रभ सोए, एक टेक आधार एको, एक का मन जोर, नानक जपिए मिल साध संगत, हर बिन अवर ना होर, आसा महला पंजवा, जियो मन तन प्राण प्रभ के, दिए सब रस भोग, दीन बंदप जी दाता, सरन राखण जोग, मेरे मन त्याए हर हर नाम, हलत पलत सहाय संगे,

आठ लाभ गोविंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिय नीत सास सास त्याय।

किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवां अगम अगोचर दर्स तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप किरपाल किरपा प्रभ धारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव मल मूत मूड जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब श्रेष्ठ धरता।

द्वापर भणिया कलयुग उत्तम जुगा माहे एह कर करे सो एह कर पाए कोई ना पकड़िए किसे थाए हर जियो सोई करह

प्रसाद, सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे, रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी, ते पनीत संगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते, तिनके कुल उधारे, कोई ना जाने कोई ना माने, से परगट हर द्वारे, कमन उपमा देओ कमन वडाई, नानक खिन खिन वारे, आसा महला पंजवा, बावर सोए रहे, रहाव, मोह कटांब बिखैर आसमाते, मिथ्या गहन गहे, मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास, मन मुख सत कहे, अमृत नाम पदार्थ संगे, तिल मर्म ना लहे।